0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: तक का टाइम है
4: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
5: तेरे को शर्म नहीं आई माँ के कंगन गिरवी रखते
3: अगर
5: हुए?
3: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
6: और मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
7: रुको रुको बेटा।
6: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
7: क्या हुआ बेटा?
6: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया, बाबा जी मैं हार गया।
7: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
6: श्याम जी?
7: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: पर बाबा, बाबा जी, बाबा जी। भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जाना आपको, यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: वाह।

0: भाईजी कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू से हम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: भाई जी
1: देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
0: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
1: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

0: करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: SME, इनोवेशन, लेबर, एनवायरनमेंट एंड जेंडर।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
2: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Centre has announced 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. The package was announced by Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan in Kolkata yesterday after chairing a high-level review meeting with West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Mr. Chauhan announced that the centre has approved more than 8,500 crore rupees for rural development in West Bengal. We have more from a correspondent.
1: The meeting reviewed 19 major infrastructure projects worth over 82,000 crore rupees in the roads, railways, metro, petroleum and natural gas, coal and labour sectors. Directions were issued to resolve issues related to land acquisition, rehabilitation, forest clearances and interdepartmental coordination to ensure the timely completion of projects. The Union Minister also proposed setting up a state-level project monitoring group to accelerate implementation. The Minister also announced steps to strengthen agriculture through crop diversification, expansion of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Kishan Credit Card coverage, and promotion of natural farming, digital agri-tech and nutrition enhancement programs. He said the centre and the state will work together to accelerate West Bengal's development. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Union Minister of Coal.
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

सुप्रभात, नमस्कारम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। 8:23 हो गए हैं, आप आनंद के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, 15 जुलाई की तारीख है, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं, आपका रेडियो वाला दोस्त आनंद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, आपने ट्यूनिंग कर लिया है आपका अपना देसी रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका फेवरेट प्रोग्राम ये है बिंदास मॉर्निंग, और आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। 8:23 हो रहे हैं और आज का थॉट ऑफ द डे कहते हैं, सोच और पानी साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी, अगर आपकी सोच जरा सी भी गड़बड़ होगी तो लाइफ भी ये ना तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पानी और सोच दोनों ही साफ सुथरी होनी चाहिए। श्रोताओं, एक और नई सुबह, एक और ताजगी से भरा ये ब्यूटीफुल सा दिन हमें मिल गया है, जहां पर हम आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आप भी हमारे साथ ढेर सारी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, अब अगले 2 घंटे आप मेरे साथ बने रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां ढेर सारी जानकारियां होंगी, ढेर सारे गाने होंगे और बहुत सारी मस्ती होगी, फन होगा और ढेर सारा कमाल धमाल भी होगा। श्रोताओं, आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, फटाफट से जरा अपने प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक पहुंचाओ 9837896896 पे, फटाक से शुरू हो जाओ, अपने सुंदर सुंदर मैसेजेस मुझ तक पहुंचा दो, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, वेंसडे की मॉर्निंग की, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ, बहुत ही प्यारा ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है। इसी गाने को सुनते हुए जो है करेंगे आज की सफर की बेहतरीन शुरुआत। जुड़ चुके हैं आप आरजी आनंद के साथ, तो फटाफट से काम पे लग जाओ, मुझे व्हाट्सएप करके अपने हालचाल बताओ जी, कैसे जा रही है आपकी सुबह की मॉर्निंग 9837896896 पे। चलो, स्कूल छोड़ के आ गए आप बच्चों को, वेरी नाइस। अब आप ऑफिस के लिए तैयारी करिए और मैं यहाँ से बढ़िया गाने निकालता हूँ।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: क्या मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
9: बिंदास मॉर्निंग।
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

कि सुबह लिखते हैं आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपकी आवाज सुन के बहुत ही आनंद आ जाता है, अरे वाह क्या बात है। इसके अलावा जुल्फी भाई का मैसेज पहुंच गया है, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह गाने बहुत ही अच्छे लेकर आते हैं आप, कहाँ से लेकर आते हो? यार हमें भी नहीं पता है, बस हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आए सुबह सुबह। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है यहाँ पर, प्रियंका जी का, लिखती हैं खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपके जो हालात हैं वो भी कमजोर पड़ जाएं, आप अपने आप को इतना आगे लेकर जाओ कि आप जिंदगी में जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, आनंद कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी। और ये लिख रही है कि अभी तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं लेकिन आपके गाने सुनते सुनते हमें बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपको ऐसे ही आनंद आता रहना चाहिए। आज 15 जुलाई हो गया है। देखो भाई आज की तारीख क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास है? हर दिन का इतिहास बहुत स्पेशल होता है, हर दिन की तारीख बहुत ही स्पेशल होती है। और हमारी भी कोशिश होती है कि सुबह सुबह हम आपको वो सारी स्पेशल चीज़ें फटाफट रेडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएँ, आप तक बताई जाएँ। और अभी हम बताएंगे बिल्कुल आपको, ऑफकोर्स जब लौट कर आएंगे तो। एंड अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है 9837 896 896, ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर को आपने सेव करना है। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें तुरंत मैसेज करिए, अपने हालचाल हम तक पहुंचाइए और जरा बताइए हमें कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह।

देखिए मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं और अब हम चाह रहे हैं कि आपके मैसेज भी हम तक आ जाएं। गाने अच्छे हम निकाल रहे हैं आपके लिए। अगला गाना आने वाला बहुत ही प्यारा, जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ऑसम। अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक जी की आवाज, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। और ऐसे अच्छे गाने आप सुनते रहते हैं आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। इंतजार कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप का, जल्दी से मैसेज करो। और बाकी सुनते रहो आरजी आनंद को, कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। अभी लौट कर आते हैं आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे और करेंगे ना ढेर सारी बात। लेकिन अभी आने वाला गाना, आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को सुन रहा हूँ, जी बहुत प्यारा गाना है। चलिए साथ में एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप आरजे आनंद के साथ। ढेर सारे संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं आपके, उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। और बिल्कुल ये संदेश को जो है हम लगातार शामिल करते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और अभी आपके लिए यहां पर मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है आपको बताने वाला हूँ, जिससे सुनकर आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और मैं अभी एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए प्ले कर रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और जो आपने प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाना, उसके बाद आते हैं लौट के इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

क्या बात है यार, गाना बहुत ही खूबसूरत था और ऐसे खूबसूरत गाने आप लगातार सुनते जाएंगे हमारे साथ। और बाकी आइए चलिए बात कर लेते हैं जरा समय की। तो समय हुआ है 8:52। देखिए तेजी से समय निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समय के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मुझे पता है आप भी रेडी सेडी हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप जो है फुल और एनर्जी को मेंटेन रखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी 15 जुलाई की तारीख है और आपको बताते हैं ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 15 जुलाई वर्ष का 196वां जो है लीप वर्ष में ये आता है। और अभी आपको बताते हैं जो हमारे सन 2026 के यानी कि इस साल के जो दिन बचे हैं वो 169। ठीक है, तो अभी जो है आपको जो भी आपने तैयारी की हुई है कि भैया सन 2026 में ये करना है वो करना है, तो अभी आपके पास 169 डेज हैं, इसमें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए आगे बताते चलें आपको आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास रहा है आज इतिहास के पन्नों में, क्या स्पेशल है। तो देखिए मैं सबसे पहले तो यही चीज़ बताना चाहूँगा जो आज के दिन को बेहद ही खूबसूरत बना रही है, वो कुछ ऐसे नाम हैं जो आज के दिन को बिल्कुल सच में खूबसूरत बना रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है जमशेद जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी और काफ़ी जाने माने एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में डेफिनेटली हर कोई जानता है। 1883 में इनका जन्म हुआ था। वहीं बात करें अगर हम एमटी वासुदेव जी की, तो 1933 में एमटी वासुदेव नायर जी का जन्म हुआ, जो मलयालम में लिखने वाले प्रसिद्ध पॉपुलर संगीतकार थे। इनका भी आज के दिन जो है जन्म हुआ था। श्रोताओं देखिए आज के दिन हम बताते चलें एक और एक ऐसा नाम जुड़ जाता है जो आज के दिन को थोड़ा सा और स्पेशल बना देता है, स्पेशली रंगमंच की दुनिया को और भी खूबसूरत बना देता है। आज के दिन जन्म हुआ था बादल सरकार जी का 1925 में, जो बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर एक्टर और साथ ही साथ नाटककार, निर्देशक और रंगमंच की दुनिया में एक जाना माना नाम रहे। देखिए लिसनर्स, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं आपसे कि हमारा जो मेन मोटो होता है आपको डेली ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव जो होती हैं वो बताने का, कि ताकि आप अवेयर रह सकें, आपको पता चल सके क्या कुछ खास रहा है। आपको बता दें आज के दिन 1926 में मुंबई में पहली बार मोटर बस सेवा की जो है वो शुरुआत हुई थी आज के दिन। हाँ जी, सन 1926 में आज के दिन बॉम्बे में पहली बार मोटर बस सेवा की शुरुआत जो की गई थी वो आज के दिन यानी 15 जुलाई को की गई थी। और आपको बता दें आज ही के दिन जो है दुनिया भर में युवाओं को रोजगार, कौशल और उद्यमिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है। अब युवाओं का दिन है तो ऑफकोर्स हम आज के यूथ की बात तो डेफिनेटली करेंगे। तो श्रोताओं ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके साथ साझा करी आज की सुबह। बाकी अगर आप भी हमारे साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है 9837896896 के माध्यम से आप भी अपनी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड ढेर सारे संदेश हमारे पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रियांशी जी जुड़ चुकी हैं एंड हमारे पास हरथला से मैसेज पहुँच गया है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? हेलो तारिक जी, गुड मॉर्निंग। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है। हाय नमस्ते आनंद, हनुमान मूर्ति से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रतीक है। गुड मॉर्निंग प्रतीक जी, आपका तो नाम ही इतना बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है। हाय गुड मॉर्निंग, स्नेहा बात कर रही हूँ गायत्री नगर से। गुड मॉर्निंग जी, बसंत बिहार से हमारे पास मैसेज पहुंचा है आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। देखिए तमाम सारे श्रोता साथी लगातार हमें सुनते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें संदेश पहुँचा सके, आप में से कई लोग हैं जो नहीं मैसेज कर पाते हैं, इस बात का हमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन बस आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का दिल से थैंक यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत ट्रैक और निकाल रहे हैं आपके रेडियो सेट पे, इसको सुनते हैं साथ में। और आप भी भाई साहब, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बस सिर्फ सुनिए मत, सोचिए मत, मैसेज करिए, हमें भी इंतजार रहेगा आपके और मैसेजेस का। लौट कर आते हैं तो उसके बाद आपको कुछ बात बताते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पे अब हम चर्चा करेंगे, हमारे आसपास क्या चल रहा है इस पे हम एक नज़र डालेंगे, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक नज़र डालते हैं इस आने वाले गाने पर, जो कि ये भी बहुत खूबसूरत ट्रैक है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इस गाने को सुन रहा हूँ। कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं ना जिनको हम मतलब कभी कभी सुनते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आता है सुनने में।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: सुबह के वैसे अब स्टेशन की घड़ी में कितना वक्त हो रहा है भाई, मुरादाबाद स्टेशन क्लॉक में 9:02 हो रहे हैं जी। देखिए समय का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल हम आपको फिर भी बताने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। देखिए मेरा लास्ट आवर शुरू हो गया है, 9:03 हो गए हैं और 2 सेकंड ये सेकंड आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम भी आपके साथ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये है वेंसडे की सुबह, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे RJ आनंद को। व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, सब बढ़िया चल रहा है? चलो जी बढ़िया ही चलना चाहिए, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आप लोगों ने सच में यार बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैसेज कर दिए और इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप करते हो, गाने आपको पसंद आते हैं, बातें आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, क्या बात है यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और आपको भी दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब आपकी सेहत की बात कर लेते हैं इमिडिएटली। देखिए दोस्तों, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि देखो भाई आजकल जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मिलावट की आ रही है, लेकिन हम अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों दूध हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ पूरी तरह दूध स्पेशली अगर मैं बात करूँ दूध की शुद्धता की, तो उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर दूध में मिलावट हो तो उससे पेट खराब होना, पाचन से संबंधित

0: जो भी समस्याएं हैं वो आ सकती हैं, और भी ढेर सारा जो हेल्थ में प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकता है, बहुत सारी और भी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए हमेशा जो एक विश्वसनीय आपका प्रोडक्ट है जिस पर आप बिलीव करते हैं, वही चीज़ आप खरीदें, क्योंकि आजकल मिलावट वाला सीन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें आप जो है कोई भी चीज़ को इधर उधर से ना लें, और अगर आपके आसपास आप दूध वहाँ से ले रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि यहाँ जेन्युइन मिलता है तो बिल्कुल वहाँ से लीजिए, लेकिन यार इधर उधर से दूध बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि आजकल मिलावट का किस्सा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिससे बाद में हम ले तो लेते हैं, हम कहीं से कुछ भी ले लेते हैं, बाद में उसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है यार। अगर आप डेली जाने का प्लान कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन अगर आप लाल किला जाने का प्लान कर रहे हो तो आज 15 जुलाई से जो है अगली जो 15 अगस्त आने वाली, तब तक लाल किला जो है अभी पूरी तरह मतलब बंद कर दिया गया है, यानी कि आज से वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है कि भैया आप कोई लाल किला के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले उसके अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन होंगी। आपको पता है आने वाला जो अगस्त का महीना है वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है, 15 अगस्त को जो है बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, नो डाउट इतना बड़ा पर्व होता है, तो उसको जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए फिलहाल अगर आप डेली जा रहे हो तो अच्छी बातें जाइए, लेकिन लाल किले के अंदर अब आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे आज से। फिलहाल मुरादाबाद में क्या चीजें अच्छी चल रही हैं डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि वो सारी कड़क अपडेट आपको कहाँ मिलती है, आनंद के साथ इसी स्टेशन पर मिलती है, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी, फिलहाल अभी मेरे पास कुछ और स्पेशल चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं इसी स्टेशन पर, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज पता है क्या है, अभी नहीं बता रहा यार, बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद जब लौट करूंगा तो बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूथ के बारे में बात करी थी ना, मैं आपको जब अभी इतिहास बता रहा था तो मैंने आपको बताया था आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज इतिहास के पन्नों में, तो मैंने आपको युवाओं के लिए बताया था कि आज का दिन यूथ के लिए बहुत ही स्पेशल है, आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस है ना। तो युवाओं के रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं, युवाओं के आजकल हम कहते हैं ना कि युवाओं के हक की मांग करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आज की यूथ को एक मैसेज देना, अगर आप आज कि युवाओं को कोई एक मैसेज देना चाहे, कोई एक संदेश देना चाहे आज के युवाओं को, तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या एक एडवाइस देंगे आज की यूथ को, अगर आपको कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे आज, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं 9837896896 पे। आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, ये हर साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं आज की यूथ को, तो मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे। डेफिनेटली आप अपने दिल की बात, अपने दिल की थॉट मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और वो थॉट मैं पहुंचाऊंगा तमाम लोगों तक। आने वाला गाना खेल खेल में,
1: ये तू माइना
0: होली होली ट्रैक, इस मूवी का गाना गुरु रंधावा, चलो साथ में होली होली डांस करते हैं।

क्या बात है यार, शहर की लड़की शहर के लड़के भी आजकल जो है धाकड़ हो रहे हैं भाई, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाय वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल, मेरा नाम आनंद है। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:13, वेंसडे की सुबह, आनंद को सुन रहे हैं आप। और भाई साहब देखिए, अलग अलग शहरों से अलग अलग खबरें निकल के आती रहती है, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा और आज क्या सेलिब्रेट होता है, हर दिन नेशनल इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, आज सोशल मीडिया गिवाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे मैसेज करके बताएं आज की यूथ को आप एक एडवाइस अगर देना चाहें तो क्या एडवाइस देंगे, अगर कोई सलाह आपको देनी है, कोई सजेशन देना है आज की यूथ को तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आज नेशनल क्लीन ब्यूटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड और कौन से स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है यार। एंड आज और क्या और कुछ मुझे इतना खास दिख नहीं रहा है आज, बाकी तो सब चल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे डेज होते ही हैं जिनके बारे में शायद बात करना जरूरी भी होता है और जरूरी भी नहीं होता, लेकिन अभी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी थोड़े से बहुत चक्के रह जाएंगे, चल क्या रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है। बहुत सी आपको बता दें, अभी फिलहाल अपने ही एक मुरादाबाद से जुड़ी खबर है जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ी देर में करते हैं यार। उससे पहले मैं एक जगह की आपको ये बताता हूँ न्यूज, देखिए अगर बिना एयरफोन के गाना बजाया तो देना पड़ेगा 2500 रुपए का फाइन। एक्चुअली कहाँ का सीन है, चेन्नई मेट्रो का एक नया रूल आया है, आपको बता दें भाई साहब, ये चेन्नई की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडियन, हाँ जी, वहां पर क्या है ना, चेन्नई मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नया रूल बेसिकली बनाया गया कि अगर अब आप मेट्रो में या स्टेशन पर बिना एयरफोन के तेज आवाज में गाना बजाते हैं या वीडियो चलाते हैं या स्पीकर पर अगर आप बात करते हैं तो भैया इस तरह से करने पर आपको 2500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि आपको ये फाइन देना पड़ सकता है। पहले वहां पर ये 500 का था लेकिन अब इसको 2500 का कर दिया है। ओ भाई सारा जो मेरा चक्रा है, मैं क्या बोलता जाए, खैर अच्छी बात है यार, मुझे लगता है कि इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी फिर, है ना, अच्छी बात है। आपको बताते चलें, यूपी में एक बार फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। भैया कब आएगा ये मॉनसून, हम पूछना चाहते हैं, रोज मॉनसून आ जाता है लेकिन बारिश होती नहीं है। अभी फिलहाल एक नई खबर निकल के आई है मौसम विभाग की तरफ से, इसको फटाफट आप तक पहुंचाता हूं। जी हां, मौसम विभाग की तरफ से भाई साहब एक रिपोर्ट आई है 17 से लेकर 19 जुलाई से बाहर निकल आ रहा है, हाँ जी, तो आपको बता दें 17 से 19 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव होगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, रांची, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और प्रयागराज समेत कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अब ये मुरादाबाद में कब होगी पता नहीं आ रहा। चलिए, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं गाइस, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो अपने शहर के बारे में ऑफकोर्स आपको बतानी है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इमीडिएटली लौट कर आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है, क्या सिनारियो है अपने शहर का, डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हैं अगर कुछ अच्छी चीज चल रही है तो आपके आसपास, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे फटाक से व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपना बढ़िया सा जो भी आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आनंद तक पहुंचनी चाहिए, तो आपका स्वागत है, पहुंचाइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं जी।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोन,
4: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
7: बिल्कुल जी, दिल से कहिए जियो बिंदास। और बाकी अभी मैं फटाफट आता हूँ, और आपने जो ये प्यारे प्यारे वॉइस नोट और जो प्यारे प्यारे मैसेज पहुँचाए हैं वो डेफिनेटली अभी शामिल करने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो के सोई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को। आई विल बी राइट बैक। ठीक है जी, हाँ हाँ आपसे बात कर रहा हूँ भाई।

0: परम सुंदरी से अभी आपने एंजॉय कर लिया, बहुत ही प्यारा गाना। और सच बताऊं तो यार, ये गाना अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक लगता है मेरे को, बड़ी अच्छी फील एंड वाइब देता है, एकदम ढिंचैक वाला। वेलकम बैक, 9:25 हो गए स्टेशन क्लॉक में आनंद के साथ वेंसडे की सुबह। आज 15 जुलाई हो गई यार, देखो कुछ करना है तो पाजी आज ही कर लो, कल का मत सोचो। हाँ मतलब आज का दिन ही है जो भी है बढ़िया वाला। अरे पहले आज की प्लानिंग करो यार, आगे बढ़ती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ काम का दबाव ही आपको जो है ना स्ट्रेस नहीं देता, आपकी डाइट भी आपका स्ट्रेस बढ़ा सकती है। एब्सोल्युटली। अब आप कहेंगे वो कैसे आनंद, तो भैया आपको बता दें कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक एक रिसर्च हुई जिसमें बताया गया है कि ज्यादा कैफीन वाली चीजें, ज्यादा मीठी चीजें जैसे जंक फूड हो गया और बाकी जो ये फूड जो बंद वाले डब्बे पैक फूड्स आते हैं, एनर्जेटिक ड्रिंक्स आते हैं, अगर आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा सकती है, जिससे आपकी बेचैनी एंजाइटी ज्यादा बढ़ सकती है, आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, और आपका जो ये मानसिक स्वास्थ्य, अगर आप इसको बेहतर रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो भैया आप संतुलित आहार को जो है अपनी डाइट में ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप ताजे ताजे फल और सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, आप जो है साबुत अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मार्केट में अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स आ रहे हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए ना, आप अच्छे फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये जंक फूड छड्डो यार, इन सबको मत ही लो, ये कुछ नहीं, थोड़ी देर का टेस्ट है लेकिन बाद में दिक्कतें अनेक हैं। भैया अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े फिट एंड फाइन और हेल्दी रहें, तो उसके लिए क्या करना है जेन्यूरीटा, आपको पानी पीते रहना है, पानी भी बहुत जरूरी है भाई साहब, आपसे भी कह रहे हैं। हाँ, आपने जो बॉटल अपनी गाड़ी में रखी है ना, इस बॉटल का इस्तेमाल करते रहिएगा, बीच बीच में पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी जानकारियां जो है ना, और छोटी छोटी हेल्दी आदतें ही आपका तनाव कम करती हैं और आपका स्ट्रेस भी कम करती हैं। स्ट्रेस तनाव एक ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, आप चाहते हैं कि आप जो है अंदर से आपको हैप्पीनेस फील हो, सेटिस्फैक्शन फील हो, तो उसके लिए आपको नेचुरल चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, अगर आप ये नेचुरल चीजों पर फोकस करेंगे और घर के बने खाने को अगर आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम ये एक अपडेट आई तो हमें लगा फटाफट आपको बता देनी चाहिए, और अभी कुछ वॉइस नोट आए हैं वो भी आप तक सुनवा देने चाहिए फटाफट से, ये कौन क्या पहुंचाते हैं जरा सुन लेते हैं इनके दिल का हाल। बहुत देर से इनके मैसेज आ रहे हैं बाबा, तो अभी आइए पढ़ लेते हैं इनके मैसेज। लेकिन सच में यार आप लोग सच में प्यार मैसेज करते हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आगे बढ़ते हैं जी, कहिए सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार राधे राधे। हाँ जी,
1: आज के युवाओं को मेरा तो बस यही संदेश है, वे अपनी ऊर्जा, जिज्ञासा और साहस को सही दिशा दें।
0: क्या बात है?
1: अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, असफलताओं से सीखें और अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर और अनुशासित प्रयास करते रहें, क्योंकि महान विचारधारक स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
0: क्या बात है।
1: नमस्कार राधे राधे, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत बागबड़ा से, और यही कहना चाहूंगा स्वस्थ रहें।
0: देखिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बीच में आपका फोन आ गया है लेकिन जोरदार ताली, और आपने कहा है उठो भागो तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और मेरा लक्ष्य है फिलहाल सुबह का ब्रेकफास्ट, तो मैं जब तक रुकूंगा नहीं जब तक मैं ब्रेकफास्ट करना लूँ, तो मैं भी बिल्कुल भागूंगा यहाँ से, लेकिन अभी नहीं, 10 बजे के बाद, आप टेंशन मत लो यार। तो अभी फिलहाल मेरा लक्ष्य तो वही होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको भी ये चीज़ यहाँ से कहना चाहूंगा गाइज, स्टेशन से, अपने रेडियो स्टेशन से, कि आप भी सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना हम जल्दबाजी में अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, बट ये हमारी लाइफ का सबसे और हमारी मॉर्निंग का सबसे बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेकफास्ट। अगर हम इसी को अवॉइड कर देंगे तो बॉस पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और एनर्जी को हम कहीं ना कहीं पीछे कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एनर्जी को अगर मेंटेन करना है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर शामिल करें अपनी डाइट में। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। छवि का मैसेज आया, लिखती है आनंद, बस आज की यूथ को यही कहना चाहती हूँ कि भैया सोशल मीडिया पे कम और रियल लाइफ में ज्यादा फोकस करो युवाओं। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही नेक विचार हैं आपके मैडम जी। आदित्य का मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये लिखते हैं सर गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन मैसेज कर दिया मैंने आपको। अरे यार थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखते हैं सोशल मीडिया पर आज के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, जरा कम खुद को एक्टिव रखें एंड अपने भविष्य की स्क्रीन पर ज्यादा टाइम दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एप्स

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: क्या बात है, बादशाह और अरिजीत सिंह की आवाज का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अलग है। हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन। हाँ जी, हेलो हेलो, सब बढ़िया चल रहा है ना? वेंसडे की सुबह है, 15 जुलाई की तारीख। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमने बात करी थी कि हमारी जो घर की मम्मियाँ होती हैं, जो हमारे घर में दीदी होती हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, किचन में जो छिलके होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के हों, सब्जियों के हों, वो इधर उधर फेंक देते हैं। चाहे वो चाय बनाने के बाद जो उसकी पत्ती होती है उसको भी इधर उधर फेंक देते हैं ना, बट उसको आप कैसे यूज करके एक बहुत ही कमाल की चीज कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन गोल्ड। अब बेसिकली कचरा नहीं है, ये आपके लिए ग्रीन गोल्ड है। कल इस पे बात करी थी मैंने, और इस पे मैंने आपको ये भी कहा था कि कल हम किसी खास स्पेशल को अपने साथ कनेक्ट करेंगे जो आपको इसके बारे में और डिटेल्स देंगे, क्या है ये कमाल की चीज़, और ये मुरादाबाद में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी जनता तक ये चीज़ पहुंचे। ये बताने के लिए हमारे साथ कौन जुड़े हैं फोन लाइन पे, अब आइए जरा उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर।
1: जी नमस्ते, हरित प्रणाम, कैसे हैं सर?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आपको भी हरित प्रणाम। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को सर बताएं, हमारे तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं रेडियो पर, अपने बारे में बताएं।
1: सभी को हरित प्रणाम
0: जी।
1: और मैं पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, संस्थापक महासचिव प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
0: ओके सर, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जो ये अभी हम बता रहे थे ग्रीन गोल्ड के बारे में, थोड़ा मुझे जानना है।
1: अच्छा सर, ग्रीन गोल्ड, जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में सब्जियां आती हैं, आते हैं
0: बिल्कुल,
1: और चाय भी आती है।
0: एब्सोल्युटली,
1: मोस्टली आजकल हम देखते हैं तो घर में पहले तो हमारी संस्कृति रही है कि किसी का भी स्वागत पानी के द्वारा होता है,
0: हाँ,
1: और फिर बाद में चाय ऑफर की।

0: कम से कम दो डस्टबिन में आपका कूड़ा लिया जा रहा है और वो है वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका। तो इसी में गीला कचरा होता है जो हम अपने घर से अभी बात कर रहे थे, किचन वेस्ट भी कह सकते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: क्यों ना हम उसे अपने घर पे ही अपने फूलों के लिए, अपने पेड़ों के लिए जो है ग्रीन गोल्ड में बदल दें।
1: वही
0: ग्रीन गोल्ड है सर, इसकी हम होम कंपोस्टिंग कर लें अपने घर पे। इसके तरीका बताऊं सर मैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही तो जानना है सर हमें, वही
0: तो
1: जानना है।
0: ग्रीन गोल्ड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पुरानी बाल्टी है, आपके पास कोई टब है, आपके पास जो है पुराना कोई गमला है, या आपके पास खाली जमीन है या पार्क है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर जमीन है तो मिट्टी उसमें रहेगी, अगर कोई पात्र आपके पास है जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है या टब है या कोई गमला है, तो पहले आप नीचे उसमें हल्की सी मिट्टी की लेयर बना लें जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है वो उसमें पैदा हो जाए, और उसके बाद जो आपका किचन वेस्ट है, जो एक दिन का दो दिन का जो भी किचन वेस्ट है आपका, वो उसमें ऊपर से डाल दें, फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर बना दें और फिर ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें।
1: ठीक है,
0: और ये प्रोसेस आप करते रहे, ये
1: ओके।
0: प्रोसेस करते करते जी सर
1: जी जी प्लीज आप बोलिए सर, प्लीज प्लीज।
0: ये प्रोसेस आप करते रहें और जब आपका दोबारा से फिर दो चार दिन का इकट्ठा हो जाए फिर आप यही प्रोसेस करें, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी स्मेल आएगी जो अभी हम बात कर रहे थे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, गुड़ और मट्ठे का घोल लेंगे, गुड़ और मट्ठे का घोल जो है एक जगह करके आप उसमें लिक्विड जो है वो हल्का हल्का डाल देंगे जिससे कि जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है, डिकम्पोज होने की जो प्रोसेस है वो तेजी से होने लगे, और आप देखेंगे कि 20-25 दिन बाद जो आपका किचन वेस्ट था वो आपका हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा।
1: ओके।
0: और ब्राउन होने के बाद फिर आप उसमें अगर अपना कुछ मटेरियल डालते हैं तो ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, या तो ग्लव्स के द्वारा या आप किसी कोई करछली वगैरह लेकर या किसी डंडी से भी आप ऊपर का मटेरियल नीचे और नीचे का मटेरियल ऊपर कर देंगे, तो जो आपने ऊपर का मटेरियल डाला हुआ है वो भी कुछ समय बाद ब्राउन होने लगेगा।
1: ओके।
0: वही प्रोसेस उसमें आप फिर करेंगे, मिट्टी हल्की सी डाल देंगे और फिर आप ऊपर से वो मटेरियल डाल देंगे। ऐसे देखेंगे आप 40-45 दिन में जो आपने अपना किचन वेस्ट डाला हुआ था तो उसमें क्या होगा सर, वो छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा और छोटे छोटे आपको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देंगे कुछ। वो क्या है कि आपकी प्रोसेस को तेज करते हैं और आपको बताते हैं कि अब आपकी कंपोस्टिंग जो है वो तैयार होने वाली है। तो लगभग कुछ जगह हो सकता है कि 60-70 दिन में हो जाए, कुछ जगह 50-60 दिन में हो जाए। अगर आप स्मेल के लिए चाहें और तेजी से बनाना चाहें तो कुछ कल्चर भी इसमें आ रहे हैं, बायो कल्चर, और आप उसमें खाने का सोडा जो होता है बेकिंग पाउडर वो भी मिला सकते हैं, और कुछ समय बाद देखेंगे जब आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल आपको खाद, जैसे बर्मी कंपोस्ट हम लाते हैं इधर उधर से, तो पैसा भी आप देके आते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एक अच्छा तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है मतलब ना।
0: बिल्कुल सर, तो ये आपकी खाद बनके तैयार हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कचरा हमारी खाद।
1: क्या बात
0: है, आपके अपने घर के कचरे की खाद होगी, तो आपको पता है कि हमारा कचरा कैसा था। तो हम जो अभी चाय की बात कर रहे थे सर, तो चाय की पत्ती को उसमें धो के मिलाना होगा
1: ओके,
0: ताकि उसमें चीटी वगैरह ना आए, मिठास ना रहे।
1: ओके।
0: और अगर कोई अंडे वगैरह का भी प्रयोग करते हैं तो अंडे के छिलके भी उसमें मिला सकते हैं।
1: क्या बात है सर, थैंक यू सो मच नेपाल जी, आपने तमाम अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा
0: हो रहा है। अगर आप
1: सर एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि सर समय थोड़ा सा कम है, नहीं तो मैं आपकी बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम जल्दी जी जी जी
0: केले के छिलके और प्याज के छिलके का बायो एंजाइम भी, बायो फर्टिलाइजर भी हम तैयार कर सकते हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, इसके बारे में तो डेफिनेटली हम आपसे और जानेंगे, और जानकारी के लिए, मोर डिटेल्स के लिए हम चाहेंगे कि हम आपको स्टूडियो बुलाएं और आपसे और जानकारी लें।
0: ओके सर,
1: है ना सर। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा नेपाल जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके और अच्छी जानकारी आपने दी।
0: ये तो आप सबका प्यार आशीर्वाद है।
1: अरे जी जी,
0: सभी लोगों का सहयोग रहता है, सभी को पुनः हरित प्रणाम।
1: थैंक यू सर, नमस्कार सर, बाय बाय सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े आप नेपाल जी, तमाम अच्छी जानकारियां उन्होंने हमारे साथ साझा करी आज की सुबह, कैसे आप ग्रीन गोल्ड घर में कर सकते हैं, मतलब आप ऑर्गेनिक खाद खुद के घर में बना सकते हैं खुद के गीले कचरे से, एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग। फिलहाल आने वाला गाना करण औजला राइट हियर इन द हाउस, इसको सुन

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: चलिए गाइस, फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चुटकी सॉन्ग में यहाँ पर आपके लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 9:48 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में, एंड आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कौन सा गाना है। मैसेज करना है आपने मेरे को 9837896896 पे उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना एक चुटकी वाला सही जवाब। कौन सा ट्रैक है ये आपको मेरे को मैसेज करके बताना है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो इमीडिएटली आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। अगेन रिपीट कर रहा हूं आज का सवाल, चलो व्हाट्सएप करो मुझे फटाफट से। आई एम श्योर आप पहचान जाओगे इस गाने को, नो डाउट आप बहुत टैलेंटेड हो यार, तो फटाफट से अब मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का।

क्या बात है यार साहिब, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने इस गाने को सुना। बहुत ही अच्छा गाना है यार, बहुत ही मजेदार गाना है। अभी फिलहाल स्टेशन घड़ी में जो समय हो रहा है वो मुझे आपको बताना है, 9:52 हो गया जी। चलिए, वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है और आज का दिन क्यों खास है ये तो मैंने आपके साथ डेफिनेटली शेयर किया है, आज के दिन का पूरा डेटा। और मैंने आज आपको कहा था कि आज हम विश्व युवा कौशल दिवस मना रहे हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं आज के हमारे स्पेशल यूथ को तो आप उसमें मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड एक हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर अजीम का, इन्होंने लिखा है, कौशल ही सफलता की असली पहचान है, सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए, युवाओं की प्रतिभा और हुनर की ही जो है आज सबसे बड़ी पहचान है। तो उज्जवल भविष्य की हमारे युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका उज्जवल भविष्य ही सबसे बड़ी ताकत है। हां जी बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू अजीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? हाय, माय नेम इज शुभ, आज गुप्त नवरात्रे हो गए हैं शुरू तो सभी को जय माता दी। अरे वाह क्या बात है, आपको भी जय माता दी। एक मैसेज आ गया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? एक पेड़ माँ के नाम, डेफिनेटली मैं आनंद आपके रेडियो से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं, वृक्षारोपण जरूर करें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों मुझे अच्छा लगा, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतना प्यारा प्यारा यू नो आप लोग लिखते हैं ना, सच में बड़ा आनंद आता है। वैसे आज राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी मनाया जाता है एक्चुअली, हाँ जी आज 15 जुलाई को, जो केवल सुंदरता नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें और जीवन को नया आकार देती है। उन सभी सर्जन को भाई बिग शाउट आउट जो यू नो ये एक इतना चैलेंजिंग यू नो वर्क करते हैं। चलिए थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। और आज तो मैंने आपसे बहुत ही अच्छा सवाल भी पूछा है, उससे पहले आपको बता दूं 15 जुलाई को वैसे हर साल सोशल मीडिया गिविंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की हेल्प करना, उनको यू नो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें डिलीवर करना, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड ऑफकोर्स बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से काफ़ी उन लोगों तक पहुँचते हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं और उन तक तमाम वो हेल्प वो मदद भी पहुँचती है जो लोग एक्चुअली चाहते हैं। तो सोशल मीडिया का अपने आप में बहुत ही प्यारा दिन है। यस, सोशल मीडिया गिविंग डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए तमाम सारे दिवस जो सेलिब्रेट किए जाते हैं धीरे धीरे हम आपको बताते हैं, बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। तो वैसे ही आज का दिन है और बाकी हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जनाब तो या फिर जनाबे आली, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा, मेरे एक सवाल का जवाब देना। बेसिकली हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं जिसका नाम है एक चुटकी सॉन्ग, और अभी एक चुटकी सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। कौन सा गाना है यही आपको आइडेंटिफाई करके मुझे व्हाट्सएप करके ही बताना है। हाँ जी, अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब, और हाँ यार प्लीज अपने शहर का नाम जरूर लिख देना, आप कहाँ से मैसेज कर रहे हो, बिकॉज ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है यार। मेरे को अच्छा लगता है आप कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हो ना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा गाना है यही आपको मेरे को बताना है। अगर आप बताएंगे मुझे सही जवाब तो मेरे को खुशी होगी, तो फटाफट आप मेरे को मैसेज करो है ना। बाकी आप लोगों ने जो आज यूथ के लिए अच्छे अच्छे मैसेज दिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच, आप लोगों के मैसेजेस बहुत ही माइंड ब्लोइंग होते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाते रहिए और अपनी दिल की बात मुझ तक करते रहिए। फिलहाल मेरे सवाल के जवाब भी दे दो यार, इंतजार कर रहा हूँ मैं। दगाबाजी नहीं चलेगी बॉस, ये बिंदास मॉर्निंग है, आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत ही अच्छा, फोकस सड़क पर रखिए, अपने कानों को रेडियो पर रखिए, ऐसे ही रेडियो सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
4: और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, सुबह के 10 बज चुके हैं।

क्या बात है यार, सच में एपी ढिल्लो श्रेया घोषाल की आवाज बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन था गाने का। सच बता रहा हूँ, ऐसे गाने सुन के मजा आ जाता है यार। आज सुन रहे आरजे आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग है, और ऐसे ही जो है ये सिलसिला लगातार जारी रहता है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी, 4 मिनट। थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आप लोग सच में बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हो। एंड मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, ढेर सारे मैसेज आ गए हैं, सो मेनी मैसेज, थैंक यू। एंड एब्सोल्युटली सही जवाब आए हैं सारे, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जो रॉन्ग आंसर दे, मतलब सारे लोग इतने धाकड़ हैं और सभी ने एकदम से सही जवाब पहचान लिया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लोगों ने जो है एकदम सही जवाब दिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहता हूँ अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कीजिए, डू फॉलो मी। मेरा इंस्टा आईडी आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद के नाम से, रेडियो वाला आनंद, जैसे आप इंस्टाग्राम में डालोगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा। फेसबुक पे आनंद राज के नाम से मिलता हूँ, और हमारा ऑफिशियल आईडी एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहां पर भी हमारी खुराफातीज आपको दिख जाती है, उधर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। अभी हमने मोटू पतलू का एक वीडियो डाला है, सो प्लीज डू चेक इट आउट।

बहुत ही मजा आएगा आपको, इट इज सो फनी एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, आपको देख के मजा आएगा बिकॉज अभी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो हमने सोचा हम भी कुछ ऐसा ही यू नो कुछ यूनिक सा करते हैं, तो हमने वो सोशल मीडिया पे शेयर किया, सो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट, आपको मजा आएगा। FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलेगा, मेरे को अगर फॉलो करना चाहते हो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे जो मैसेज किए हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड एब्सोल्युटली सब लोगों ने, मैंने बताया ना सब लोगों ने सही जवाब दिए यार, और थोड़ी देर पहले मैंने पूछा क्या था वैसे जिसका सब लोगों ने जवाब दिया, मैंने ये पूछा था बताओ कौन सा गाना है, यस यही आपको बताना था एंड माइंड ब्लोइंग यार, जोरदार तालियां। सबसे पहले मेरे पास श्रुति सक्सेना जी ने से जवाब दिया है, सो कंग्रेचुलेशन श्रुति जी, आज आप बनती है हमारे शो की सुपरस्टार, थैंक यू सो मच, हमने आपसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी तो नहीं बन पाई, वेल आज की सुबह आप बनती है हमारे शो की सुपरस्टार एंड एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, यस जसवीर जसी बहुत ही प्यारा गाना है यार, मांच कोड़ी नजर आए थे गाने में, ओए होए रिक्रिएशन था गाने का बहुत ही बढ़िया।

0: सच में यार गाना बहुत ही अच्छा है और बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिए, तो आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां। फटाफट से आप लोगों के नाम मैं सोच रहा हूँ जल्दी से पढ़ लेता हूँ, जैसे कि हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो डेफिनेटली हमारे शो में हमेशा कनेक्ट होते हैं, और उन्हीं में से एक प्यारी सी गोल्डन लिसनर है हमारी अलका जी, जिन्होंने वॉइस नोट किया है।
1: राधे राधे आनंद जी, जो आपने म्यूजिक चलाया उसका राइट आंसर है, दिल ले गई कुड़ी गुजरात, दिल ले गई कुड़ी। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। जो आज आप रिसाइकिल कूड़े को जो रिसाइकिल करके खाद बनाने का वो बताया, हाँ, वो भी बहुत अच्छा था
0: जी जी
1: प्रोग्राम,
0: मुझे अच्छा लगा। आपको ये अच्छा लगा सुनकर? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया। आप लोग भी आवाज शिवाज पहुँचाया करो यार। कश्मीर से मेराजुद्दीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ सही जवाब के साथ। सही जवाब पहुंचाए थे मेरे पास यहाँ पर बनारस से मोहसिन जी ने। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मोहसिन जी, आप आफ्टर लॉन्ग टाइम जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हालचाल है? अलीशा मेरे साथ जुड़ी थी सही जवाब के साथ, थैंक यू अलीशा। हमारे साथ ये प्रीति जुड़ चुकी है सही जवाब के साथ। गायत्री नगर से मैसेज पहुंच रहा है मेरे पास पिंकी जी का, गुड मॉर्निंग, हाय आनंद, राधे राधे, कैसे हालचाल है? सुबह सुबह इतनी जानकारियां देते हो, चुन चुन के गाने प्ले करते हो, सच में बहुत मजा आता है, और एक बार दिल से वेरी गुड मॉर्निंग। नीतू शर्मा जुड़ चुकी है लाइन पार ढक्का से सही जवाब के साथ साथ में। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमारे साथ। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है विकी सागर जी के, उन्होंने मोटू पतलू का वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर दिया, भाई मुझे मारो। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है? सुबह की चाय की चुस्की और रेडियो पर आपकी प्यारी बातें बहुत ही मजा देती हैं, एक अलग ही सुकून होता है और आपका शो पूरा दिन का मूड एकदम फ्रेश कर देता है और बहुत ही पॉजिटिव बना देता है। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच। सबीना खान रहमत नगर से मेरे साथ जुड़िए सही जवाब के साथ। हाय गुड मॉर्निंग दुर्गेश जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू, सही जवाब पहुंचा रहे हैं। यशपाल यमुनानगर हरियाणा से, ये अगला मैसेज आ रहा है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू जी का। डीके अरोड़ा चंदन नगर से जुड़े, टीना कुंदनपुर से जुड़ी थी सही जवाब के साथ। लक्ष्मी जी सूर्यनगर से जुड़ी, राजेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में लिखते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? राजा कश्यप जी गुड मॉर्निंग, बबली अंजान गीता कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह राधे राधे। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और लक्ष्मी जी का मैसेज आ गया ये, बट माता मंदिर से, अरे वाह क्या बात है। बीबी राधिका जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हाल है? बहुत बढ़िया। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी लिखते हैं हाय गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? साथ में रईस दूला अंसारी, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग आनंद, आपका शो तो बड़ा लाजवाब है, थैंक यू जी। सुहानी शिवपुरी से जुड़ी है, रिहाना रानी नांगल से, भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरा जुबान जो है ना अभी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर ले। आनंद सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, हाय मॉर्निंग मॉर्निंग आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी, थैंक यू सो मच। लिखते हैं वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्राना करो, वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 10:09 हो गए, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर शहीद शारिक अली जी की एंट्री हो गई है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, शुक्रिया। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? अलीशा मुरादाबाद से जुड़ी है, अलीशा थैंक यू जुड़े ज्वाइन करने के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब कल मिलते हैं थर्सडे की सुबह, ढेर सारा रखिए अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, और गर्मियां जो है ऐसा लग रहा है वापस कम बैक कर रही है, तो प्लीज पानी का इंटेक जो है ज्यादा रखिए यार, पानी बहुत ज्यादा पीते रहिए, बहुत जरूरी है। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए, हाय आनंद कैसे हैं आप, आपके लिए एक शायरी है, अरे वाह बहुत बढ़िया, लिखते हैं गुलाब जैसे हो तुम, गुलाब जैसे लगते हो, जरा सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगते हो, हाय हाय हाय, थैंक यू मुस्कान, लवली एंड ब्यूटीफुल लाइन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मजामा जी, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप बहुत ही अच्छा शो करते हैं, थैंक यू। साथ में रईस अहमद जुड़ गए हैं हमारे साथ, पिंकी जुड़ चुकी हैं, एक और स्वाति का मैसेज आ गया, नेहा स्वाति जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है? ये एक और संदेश पहुंचा है सूरज जी का, थैंक यू सो मच। ऑल द पार्टिसिपेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपके लिए जोरदार तालियां यहां पर। चलिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ढेर सारी बातों के लिए, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए आरजे आनंद कहता है आपसे बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल होगी आपसे मुलाकात।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: चक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
5: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ईश्वर।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद तो यही है कि सब बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों देखिए, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवाएं भी चल रही हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर काम है तो जाना पड़ेगा ना। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ये छोटी मोटी गर्मियों का सामना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस गर्मी से भी ज्यादा तो हमारा स्ट्रगल होता है। दोस्तों मैं आपके साथ आपकी खुशी, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और वक्त हुआ है 10:22। मुझे पता है कि आपकी उंगलियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, फटाफट से मैसेज टाइप कर रही हैं। तो हमें इंतजार है आपके ब्यूटीफुल मैसेजों का। आप जल्दी जल्दी से अपनी बातें हम तक पहुंचाइएगा। वेनेसडे की सुबह है, बहुत ही खूबसूरत सी दिन है। वेनेसडे का मैंने आपको बताया बुधवार का, और तारीख है आज 15 जुलाई की। और दोस्तों मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत सारी बातें, एंड आज बहुत कुछ स्पेशल है, सब आपको यहाँ पर खुशी बताएगी। बस आपको बने रहना है, सुनते रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने शो की शुरुआत एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। और आज का थॉट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट उससे पहले एक ट्रैक जो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए प्ले करने वाली हूँ, फ्रॉम द मूवी धुरंधर से, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। एंड आज की सुबह तो ये गाना बनता है, तो सुनिएगा, बस मैं वापस आती हूँ अभी।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करे 9012069764।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने धुरंधर से प्यारा सा गाना सुना। खुशी फिर से हाजिर हो गई है आप सभी का फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना किसी और के पुश का इंतजार मत कीजिए। खुद के लिए ही अपनी प्रेरणा बनिए, क्योंकि जिंदगी में ना दोस्तों अगर आगे बढ़ना है ना, तो किसी का इंतजार मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई आएगा मुझे मोटिवेट करेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम आप खुद हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं ना, तभी सक्सेस आपकी और कदम बढ़ाने लगती है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अपनी मंजिल तक आपको कोई और नहीं, आपका हौसला ही पहुंचाएगा, कोई और नहीं पहुंचा सकता। तो अपना हौसला बरकरार रखिए और लाइफ में जो भी आप चाहते हैं ना, सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कंटिन्यू, क्योंकि एक दिन दो दिन आप सोचें कि चलिए कर लेते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है ना दोस्तों, हम कोई भी चीज़ को ना बड़े पैशन के साथ करते हैं, बड़ा मतलब दिल लगाकर हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होने लगती है ना, हमारा जो मन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी और आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाता चलता है। और अभी हम भी शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हुआ है यहाँ पर 10:31 और आपके खूबसूरत मैसेज भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाया है, बहुत सारे मैसेज आए हैं एंड एमपी से, झारखंड से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास मैसेज आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतने इतने दूर दूर तक हमारे श्रोता हमें सुनते हैं। पहला मैसेज तो हमारे पास यहाँ पर आया है मधुबनी बिहार से, मोहम्मद शाबर परवाना जी का, और ये कहते हैं, खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है झारखंड से, ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी कहते हैं, आरजी खुशी जी आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया। उसके अलावा एक और मैसेज मिला है और ये हमारे पास संदेश आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी का। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचा है यहाँ पर, ये मिला है नेपा नगर एमपी से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का, और कहते हैं, मैम आपको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना स्वीट गुड मॉर्निंग आप पहुंचाएंगे ना, तो सच में मतलब अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे आप मैसेज पहुंचाते हैं एवरी मॉर्निंग। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें मिला है लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी जी का, कहते हैं, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारा मैसेज शामिल किया, मोस्ट वेलकम सर, ये तो खुशी की जिम्मेदारी है और आप सबका प्यार है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है निसार सलमानी जी का, नौशाद सलमानी जी का, ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं उत्तराखंड से, धनूरी तीलीवाला से। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, अलीशा जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, कैसी हैं आप? मैम बहुत अच्छी हूँ डियर, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर जनकपुरी सहारनपुर से, जोन रोजी पलवली जी का, ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा और भी संदेश हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको भी मैं शामिल करूँगी आकर, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना। और आज क्या कुछ स्पेशल है मैं सब आपको बताने वाली हूँ, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मुझे पता है आप बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन काम के साथ साथ अच्छे जब गाने सुनते हैं ना, तो माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है, फिर काम में भी हमारा मन लग जाता है। तो मैं यहाँ पर हूँ ना आपका मन लगाने के लिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एंड मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में ना आप ऊपर वाले का नाम लीजिए और बाकी मेहनत कीजिए, बिलीव इन कर्मा, अच्छे कर्म कीजिए। और अगर मुश्किलें आई हैं ना तो खुशियां भी आएंगी, बस धैर्य बनाकर रखिए।

तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, परेशानियों का मुकाबला करना है। कोई परेशानी आपसे बड़ी है क्या, ये बताओ मुझे। हाँ, इतने हिम्मत वाले हैं आप सब। हर परेशानी का सामना करने की हिम्मत है आपके अंदर और आप कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। इतनी प्यारी प्यारी बातें मैंने आप सभी के लिए कही है, तो मुस्कुराहट तो बनती है ना। इतनी प्यारी सी चेहरा है, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ओहो हो हो, देखो कितने सोने लग रहे हो तुसी। ऐसे ही खुश रहा करो आप, ओके। और अभी हमारे पास यहाँ पर और भी मैसेज आए हैं, तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें प्रीति पहुँचाती है विकास नगर से, कहती हैं कि आपके आने का इंतज़ार हमें होता है, लेकिन आप हमें तो आप ज़्यादा ही इंतज़ार करा देती हैं। मैम प्लीज़ आप इतना इंतज़ार मत कराया कीजिए। देखिए ये बात ना आप मुझसे मत कहिए, ये बात आप आरजे आनंद जी से कहिए, क्योंकि वो आपको छोड़ के जाने का उनका मन ही नहीं करता है। मैं दस बजे से पहले ही अपने स्टूडियो आ जाती हूँ 9:30। मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी सीट छोड़ दीजिए, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं नहीं, मुझे और बातें करनी है अपने श्रोताओं से, थोड़ा सा और उनको मतलब एंटरटेनमेंट करना है, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ अभी। मैं उनको बहुत बोलती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते हैं। एवरीवन क्या करूँ, आप सब इस तरह से बांध कर रखते हैं ना हमें कि आरजेस का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी कैसी हैं आप? मेरा नाम नीतू है और ये नीतू जी लाइन पार से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। और सच में आपको सुनकर बहुत ही खुशी होती है, सच में इतनी मीठी बातें करती हो आप, ऐसा लगता है बहुत ही ओहो हाय रब्बा, आज तो मैंने चाय में शक्कर ही नहीं डाली थी, पता चला नीतू जी ने इतनी तारीफें कर दी हैं तो शक्कर डालना मैं भूल ही गई थी। अच्छा, मुझे तभी मैं सोचूं कि चाय बिना शक्कर के इतनी मीठी क्यों लग रही है, क्योंकि नीतू जी ने इतनी मीठी मीठी बातें, इतनी मीठी मीठी तारीफें हमारी जो कर दी हैं, थैंक यू सो मच। वैसे नीतू जी एक मुझे बात बताइए, आपने हमें कल मैसेज क्यों नहीं किया था? हमारी शिकायत है आपसे, तो मुझे जल्दी से बताइएगा कि कल आपने मैसेज क्यों नहीं किया था, वाई कहाँ थे आप? और उसके अलावा इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तो ये भी हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे। लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा मैम। और भी हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, उनको भी मैं शामिल करूँगी। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से दुर्गेश सैनी जी का, बबलू सैनी जी का सॉरी। और ये कहते हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, कैसी हैं आप? जी आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, और बाकी प्रभु की कृपा तो हमेशा सभी पर बनी हुई है, एंड मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो हम ठीक हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वॉइस नोट आया है और ये बहुत ही प्यारा सा है, आप जानते ही हैं, एक मधुर सी आवाज हमें एवरी डे सुनने को मिलती है, नाम है उनका भूपी शर्मा जी, तो उनकी आवाज भी हम प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर और ट्रैक हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये मैसेज यहाँ पर एक और हमारे पास आया है, और ये ऋतिक का मैसेज हमारे पास आया है न्यू मुरादाबाद से, कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग, इतने सारे गुड मॉर्निंग, मैं सबको संभाल कर रख लूँगी। और ये प्यारा सा गाना हम सुनते हैं फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से, और इस बेहतरीन ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजिए नीतू सिंह जी ने लाइन पार से, तो चलिए सुनते हैं एवरीवन, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट होंगी।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, ये कुड़ी तो गुजरात की नहीं है, यूपी की है। और अभी आपने सुना बहुत ही बेहतरीन ट्रैक, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, बहुत प्यारा गाना। मैंने कहा चलो सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। और वक्त भी बता देते हैं, 10:54 हो चुके हैं, 10:54 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। मुझे पता है आप कामों में व्यस्त हैं, कुछ तो आराम से फोन चला रहे हैं और कुछ अभी ऑन द वे कार में जा रहे हैं, हौले हौले से मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट हमेशा रखिए अपने चेहरे पर। और दोस्तों, आज 15 जुलाई है, आज मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है, क्योंकि डिग्री तो बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन जो आपको सबसे अलग बनाती है वो है आपकी स्किल्स। जी हाँ, आज AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, इसीलिए सीखना कभी मत छोड़िए। चाहे आपका पैशन हो, सिंगिंग हो, कोडिंग हो, या फिर नर्सिंग्स हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर कोई भी हुनर, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए।

क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जितना बेहतर बनाओगे उतना ज्यादा आप चमकते जाओगे।

0: रिमेम्बर योर स्किल इज योर रियल आइडेंटिटी. जी हाँ, वही आपकी पहचान है. जितना खुद को अपडेट करोगे उतने ही नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी. तो आज का बस एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है. डूज जस्ट कलेक्ट डिग्रीज, बिल्ड स्किल्स, फॉलो योर पैशन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. तो आपको क्या करना है, नई नई स्किल्स जो भी आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, जो भी आपका पैशन है उसको सीखिए एंड मेहनत कीजिए लगन जुनून के साथ, पैशन के साथ. जो भी आपका पैशन है बस आप मेहनत करिएगा, सफलता तो आपको मिलनी ही है. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़, अगर आप किसी चीज़ पर भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी स्किल्स आप सीख रहे हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जाती है. लाइफ में कभी ना कभी वो काम ज़रूर आती है. तो चमकते रहिए, मेहनत करते रहिए, शाइन तो आप अपने आप करने लगेंगे, चमकने लगेंगे जब आप उस पैशन को कंटिन्यू रखेंगे. एंड आपको पता है दोस्तों, जो हमारा पैशन होता है ना, उसके लिए जो हमारा पैशन होता है, जब हम उस पैशन पे अपने काम करते हैं तो वो हमें काम नहीं लगता है, वो हम खुशी खुशी करते हैं, दिल से करते हैं. और कब हमें उस अपने पैशन में, उस काम में कब 10 घंटे 12 घंटे हम दे देते हैं, हमें भी नहीं मालूम होता है वो, क्योंकि उसमें हमारा पैशन है. तो मैं कहती हूँ, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके स्किल्स हैं, आप उनको इम्प्रूव कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए. और जो भी आपके सपने हैं सब सच हो जाएंगे. बाकी मैं कितना ज़्यादा बोल लेती हूँ ना कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि खुशी तुम ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर लेती हो. बट हाँ, जो रियलिटी है वो है. और मैंने कहा था ना दोस्तों कि मेरे पास एक वॉइस नोट भी आया है, तो उसको भी हम क्विकली प्ले करते हैं प्यारी सी आवाज में. क्या पहुंचाते हैं आज की सुबह से?
1: कभी हमारी सुंदरता उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते. रिश्ते हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए समय, साथ और सम्मान पर निर्भर करते हैं. जिंदगी में हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है. बस उसे पहचानने वाला ही सफल हो जाता है. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. नमस्कार, राधे राधे. आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर. जाते रहो, गुनगुनाते रहो और भेजते रहो अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वॉइस नोट. नंबर 98-378-96-896. खुशी जी एक गाना सुना दीजिए. हाय रे मेरी मोटो हरियाणवी तड़का.
0: अरे वाह, क्या बात है, सुबह सुबह हरियाणवी गाना. चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का. लेकिन हमारे पास और भी मैसेज आए हैं तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सभी श्रोता बहुत ध्यान से सुनते हैं कि अब तो मेरा मैसेज मैम पढ़ेंगे, अब तो मेरा मैसेज यहाँ पर ऑन ईयर पढ़ा जाएगा. तो चलिए दोस्तों, आपका इंतज़ार फाइनली कम्प्लीट करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? आपके आते ही सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है. आपकी वॉइस में एक अलग ही बात है और आपका बोलने का जो अंदाज है बहुत ही प्यारा है मैम. हाय रुबा, सच्ची? ओहो, मैं तो शर्मा गई. ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं शबीना खान जी रहमत नगर मुरादाबाद से. थैंक यू सो मच डियर, इतना प्यारा मैसेज पहुंचाने के लिए. उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, ललिता जी भी हैं एंड लक्ष्मी कश्यप जी हैं. गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. तो चलिए दोस्तों, और मैसेज यहाँ पर बैक टू बैक आ ही रहे हैं आपके, उनको भी हम शामिल करेंगे. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपको न्यूज़ मुझे देनी है, तो बस उसके लिए आप बने रहिए, चिपके रहिए ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए. और कुछ अभी एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आएगी एंड आपको जो न्यूज़ देनी है वो भी आपको बताएगी. बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जज रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: छोटे
8: अपनी

0: किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उकी बहु किसे ता पटा कोना, जिसका
1: सोचता हूँ कि मैं

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी है आपके साथ और आप सोच रहे होंगे कि ओहो खुशी जी तो आ नहीं रही हैं, बहुत इंतजार कराते हैं। हाँ दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। और दोस्तों, आज दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिन्हें प्यार से बिहारी बाबू और शॉटगन कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, आज 15 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपनी दमदार आवाज़, अलग अंदाज और खामोश जैसे सदाबहार डायलॉग से हिंदी सिनेमा और भारतीय राजनीति दोनों में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे आपसे, सब कुछ बताएंगे। धीरे धीरे थोड़ा इंतजार करो यारो। देखिए, प्यार तो हम आप सबसे बहुत ज्यादा करते हैं, तभी हम चले आते हैं एवरी मॉर्निंग आप सभी से बातचीत करने के लिए, आप सभी के दिल का हाल जानने के लिए। और आप सब भी हमारे हालचाल जानते हैं, ये भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, पता है आपको, अगर इंसान का मतलब माइंड ठीक ना हो ना, वो रेडियो ऑन कर ले, उसका दिमाग जो है ना वो एकदम ठीक हो जाता है। कैसे? जब रेडियो पर प्यारी प्यारी बातें होती हैं ना, और जब कोई प्यार से हमारे दिल का हाल जान लेता है, हमारे बारे में पूछ लेता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यकीन मानिए एवरीवन, चाहे वो कोई अजनबी क्यों ना हो। अभी देखिए, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आप किसी सामने वाले पर्सन को नहीं जानते हैं, ना ही वो आपको जानते हैं, लेकिन प्यारी सी एक चेहरे पर स्माइल उनकी होती है, और जब वो मुस्कुराकर बोलते हैं कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई अपना सा है। और हमारे पास यहाँ पर और मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। ये मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा गौरव जी का मैसेज हमारे पास आया है नवीन नगर मुरादाबाद से, गौरव टेलर जी का, और ये कहते हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आपको हमारा कार्यक्रम, हमारी आवाज आपको पसंद आती है। और इन्होंने बहुत ही प्यारा थॉट आज की मॉर्निंग हमारे साथ शेयर किया है, कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये वो भाव होते हैं जो पराए को भी अपना बना देते हैं। क्या बात है सर, अमेजिंग थॉट आपका है आज की मॉर्निंग, एग्जैक्टली राइट सर। जब कोई हमारी बिना वजह हेल्प करता है, या फिर हम ही किसी की हेल्प करते हैं, तो दिल से बहुत खुशी होती है, और जब सामने से वो प्यारे से मुस्कुराहट आती है ना, और जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, यकीन मानिए दोस्तों, वो सबसे खूबसूरत होती हैं। और वो रिश्ता फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अपने से भी ज़्यादा बढ़कर लगता है जब कोई हमारे तकलीफ में हमारा साथ देता है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हाय दी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? दरक्षा फातिमा का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से, और इन्होंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आज की सुबह। साथ में रुकैया फातिमा है, अफरोज फातिमा है, लाइबा है, एंड खुशी भी है। ओ हो, खुशी को आप नहीं भूलती हैं, ये अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद लाइन पार से, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, नमस्कार। उसके अलावा और भी मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, एंड मैं जल्दी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं आप दोनों बहन भाई बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, थैंक यू सो मच। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम राधे राधे, मनीष चौहान जी का मैसेज हमारे पास आया है, राम गंगा बिहार से पहुंचा है मैसेज, ओके गुड मॉर्निंग ये बोलते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। चलिए दोस्तों, अभी एक और ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक हमें पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले कुछ गाने हैं जो आपके
सुबह को बनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत। एंड ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, तो सुनिएगा एंड मुस्कुराइएगा भी। मुस्कुराने में ना कोई भी कंजूसी मत करना, ठीक है, वरना फिर मैं आपके घर आ जाऊँगी, देख लेना, और इतना हंसाऊँगी ना कि आपका पेट भी दर्द करने लगेगा। फिर आप बोलेंगे, खुशी जी अब तो बस कर दो, इतना हंसा दिया है आपने। चलो अभी सुनो ये गाना।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, हम तुम देखिए, अब हम आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप हमें सुन रहे हैं, तो हुए ना हम तुम। और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। आपके साथ आपकी दोस्त खुशी यहाँ पर है, जो आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ, आपकी मॉर्निंग को बनाती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ आए और दुख दूर हो जाए, सभी हमेशा स्वस्थ रहें। अभी मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, वक्त हुआ है 11:35। दोस्तों, माँ सिर्फ हमें जन्म ही नहीं देती है, बल्कि संस्कार, प्यार और जीवन जीने की सीख भी देती है। और ठीक उसी तरह हमारी धरती माँ हमें शुद्ध हवा, पानी और हरियाली का अनमोल उपहार देती है। तो आज एक खूबसूरत सा संकल्प लें, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ के सम्मान में और प्रकृति के संरक्षण के लिए एक पौधा जरूर लगाइए। क्योंकि माँ का सम्मान और प्रकृति का संरक्षण दोनों हमारी संस्कृति के मूल संस्कार हैं। तो एक पेड़ जरूर आप लगाइए और बच्चों को भी ये नेक काम में उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, उनसे भी ये काम करवाइए। एक पौधा जरूर लगवाइए, उनको प्रकृति से जोड़िए और उनकी विशेषताएं उनको बताइए बच्चों को। क्योंकि जो बड़े बच्चों को सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं, देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और उनको भी प्रकृति से जोड़ना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट भी आप लगा सकते हैं। मुझे पता है कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको बड़ा शौक होता है खुद भी सजने संवरने का, घर को भी पूरे डिसिप्लिन में रखने का। और किचन हो या फिर वो हमारा छोटी सी प्यारी सी बालकनी हो, सबको डेकोरेट करके रखती हैं। कहीं मनी प्लांट लगा है तो कहीं गुलाब का पौधा लगा है, तो कहीं पर आपने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ पौधे प्लांट लगाए हुए हैं। मुझे मालूम है एलोवेरा भी आपने लगाया हुआ है। ओहो, और जब आप अपनी बालकनी में जाते हैं, अपने छत पर जाते हैं, जब वो फूल खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हैं आपकी तरफ, तो आपका भी जो दिन है वो खूबसूरत हो जाता है। अच्छा लगता है ना दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह जब चारों तरफ हम हरियाली देखते हैं। और दोस्तों, अभी ना एक आपसे हम डायलॉग भी पूछ लेते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े फिल्मी हैं, फिल्मों के शौकीन हैं, तो एक डायलॉग है जो मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि डायलॉग कौन सी फिल्म का है। तो फटाफट से कान रेडियो के पास ले आइए और ये डायलॉग सुनकर मुझे बताइए कि कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। बस सिंपल सा आपको काम करना है, आपको मुझे बताना है कि जो डायलॉग मैं प्ले कर रही हूँ वो कौन सी फिल्म का है। इतना छोटा सा काम आपके लिए आज की सुबह, मुझे यकीन है कि आप इसका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारा सा सिलसिला।
1: नहीं नहीं बनी जहाँ से मंगल ना निकल सके।
2: तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता कभी अंदर फंस गए तो क्या होगा?
1: अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहाँ से मंगल ना निकल सके।
2: तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता कभी अंदर फंस गए तो क्या?
0: मुझे पता है कि आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। श्रोताओं, आप मुझे बताएं कि ये जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन से फिल्म का है। फटाफट से अपना जवाब सही पहुंचाइए अपने नाम के साथ और किस जगह से आप, किस सिटी से आप बात कर रहे हैं, ये भी अपना शहर का नाम या फिर गांव का नाम, जहां से भी आप बलिस से बात कर रहे हैं, सिटी से बात कर रहे हैं या फिर मुरादाबाद की कौन सी कोने से आप बात कर रहे हैं, फटाफट से बताइए अपने नाम के साथ सही जवाब। मैं इंतज़ार कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। एंड ये कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सर ने कोई गाने की रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, बोल रहे हैं कि आप कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा। थैंक यू सर अपने मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है भूपी शर्मा जी का, नगर पंचायत बागवाड़ा से, कहते हैं नमस्कार खुशी जी, प्रोग्राम में आनंद आ रहा है। ख्वाहिश ये है, हो इनकी जो लाइनें हैं बड़ी प्यारी सी हैं, कि ख्वाहिश ये बेशक कि तारीफ हर कोई करे, ख्वाहिश ये बेशक कि तारीफ हर कोई करे, मगर कोशिश ये जरूर है कि कोई बुराई ना करे। राधे राधे, राधे राधे, आपकी जो थॉट होते हैं ना, विचार होते हैं, बड़े ही खूबसूरत होते हैं। मतलब इतनी इतनी बातों में गहराइयां होती है ना कि जो इंसान समझ ले वो उसकी नैया पार हो जानी है। इतने प्यारे प्यारे आपके थॉट होते हैं, अच्छा लगता है कि आप इतने प्यारे प्यारे विचार हम तक साझा करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है यहाँ पर नीतू जी का लाइन पार से, और नीतू जी से मैंने मालूम किया था कि मैम आपने हमें मैसेज कल क्यों नहीं भेजा था, तो उन्होंने अपनी कल की बातें हम तक बयां की हैं। बोलती हैं कि आपने बोला था ना खुशी जी, मैंने कल क्यों नहीं मैसेज किया था, सॉरी मैं कल आपका शो सुन

0: लेकिन हाँ, रेगुलर जब आप जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है जानकर। तो चलिए दोस्तों, सुनवाती हूँ एक और प्यारा से गाना, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। जो मैंने डायलॉग प्ले किया है, आपको मुझे बताना है दोस्तों कि वो डायलॉग कौन सी फिल्म का है। बस इतना सिंपल सा आपको काम करना है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा सुनवा दे डायलॉग? ओके ठीक है, टेंशन ना लो जी, मैं सुनवा देती हूँ आपको। ओहो हो, इतनी छोटी सी बात, चलो सुनो ये डायलॉग दोबारा से और बताओ मुझे कि कौन सी फिल्म का है।
1: डर नहीं लगता कभी अंदर फंस गए तो क्या होगा?
2: अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहाँ से मंगल ना निकल सके।
1: भैया डर नहीं लगता कभी अंदर?
0: तो देखिए, जवाब पहुँचाते वक्त आप डरिए मत, क्योंकि दोस्तों आप जवाब सही दें या गलत उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ आप कोशिश कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इंसान कोशिश करता है ना, तो उसे सफलता भी जरूर मिलती है। और अगर हम सोचें अपने मन में ही ये ठान लेते हैं कि ना ना ना ना हम जवाब नहीं देंगे, क्या पता गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए, अगर आप गलती करेंगे तो ही सीखेंगे ना, और आप गलती भी नहीं करोगे ना सही जवाब दोगे तो फिर कैसे सीख पाओगे, नहीं सीख पाएंगे ना। इसीलिए गलती भी करो, गलती से सीखो भी और आगे भी बढ़ो। वैसे फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, अभी गाना सुनो, उसके बाद बातचीत करते हैं आपसे रिटर्न आकर। और जो जो श्रोता हमारे सही सही जवाब पहुंचा रहे हैं ना, उनके लिए दिल से थैंक यू।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

दोस्तों आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा के दमदार अभी, जी हाँ मैं बता देती हूँ, दमदार एंड अभिनेता, बेहतरीन संवाद एंड अदायगी के मालिक और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी का आज उनका जन्मदिन है। 15 जुलाई 1946 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII से अभिनय की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत फिल्मों में खलनायक के रूप में की थी, लेकिन अपनी दमदार आवाज, शानदार अभिनय और अलग अंदाज की बदौलत जल्द ही बॉलीवुड के लोकप्रिय हीरो बन गए। कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, नसीब, शान, क्रांति और खुदगर्ज एंड काला पत्थर जैसी कई यादगार फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनका मशहूर डायलॉग खामोश आज भी लोगों की जुबान पर है। और दोस्तों फिल्मों में सफलता के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और सांसद तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की। FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों मैंने आपसे एक डायलॉग पूछा था, मतलब मैंने प्ले किया था, आपको बताना था कि वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है। तो दोस्तों मैं क्या तारीफ करूँ आपकी, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आज के हमारे प्यारे से सवाल का आप सभी ने जवाब सही दिया है, लेकिन कुछ श्रोताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, बट कोई बात नहीं है। लाइफ में कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो आप सभी श्रोताओं ने कमाल के जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही। फ्रॉम द मूवी काला पत्थर, आपके फिल्मी ज्ञान को तो दिल से सलाम करते हैं हम। दोस्तों ऐसे ही बस आप मुस्कुराते रहिए और इसी प्यार से हमारे साथ हर पल बने रहिए। और बाकी तो हम अपने श्रोताओं के नाम भी ले लेते हैं भाई, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाए हैं, सही आंसर हमें पहुंचाया है। तो चलिए क्विकली शामिल कर लेते हैं, हमारे दोस्तों ने अपना सही जवाब हमें पहुँचा दिया है आज की सुबह। और हमारे पास सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाया था यहाँ पर, जरा देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर पहुंचाया है गौरव टेलर जी ने, नवीन नगर मुरादाबाद से काला पत्थर एग्जैक्टली राइट आंसर है सो। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने थोड़ा सा आंसर गड़बड़ कर दिया है, बट कोई बात नहीं है। दोस्तों हमारे पास भोपी शर्मा जी का भी मैसेज आया है एंड डीके अरोड़ा जी का भी मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, फ्रॉम द मूवी काला पत्थर से। ये डायलॉग हमने प्ले किया था शत्रुघ्न सिन्हा जी पर, ये उन्होंने ये डायलॉग बोला था, बहुत ही यू नो खूबसूरत था। साथ में उनके एक और मित्र भी थे। तो दोस्तों फिलहाल आपके लिए हम क्लैपिंग करना चाहेंगे, आपने इतने प्यारे प्यारे जवाब पहुंचाए हैं, दिल से शुक्रिया। ये तालियां आप सभी के लिए, आपने तो कमाल कर दिया श्रोताओं, मुझे विश्वास था पर इतने प्यारे प्यारे सही जवाब आएंगे, OMG, पता नहीं था मुझे, बट थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर अलीशा ने भी राइट आंसर पहुँचाया है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, फ्रॉम द मूवी। बता देती हूँ मैं आपको क्यों इतना, मतलब मैं आपको वेट करा देती हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा ही। नसीब मूवी का आप गाना सुनने वाले हैं जो 1981 में आई थी, बहुत ही खूबसूरत सी ये फिल्म भी रही है और गाना भी बहुत प्यारा है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। और सच में ऐसा होता है ना लाइफ में, देखिए हर पल हमारी जो लाइफ है जिंदगी में इम्तिहान ही चलता है, हर कदम कदम पर हम
इम्तिहान ही देते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं ना। जो इम्तिहान को पास कर लेता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड घबरा जाता है तो वो पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी हो या फिर परीक्षा, दोनों में आपको तैयार रहना पड़ेगा और मेहनत करनी होगी। हार बिल्कुल नहीं माननी है, आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, मुझे तो यकीन है। आप भी खुद पर यकीन कीजिए और अभी फ़िलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा।

0: बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के
1: उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार।

0: नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिक करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला,
1: तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है, या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पियेंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खास कर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए, साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है, ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले, कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे, बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए?

0: क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे रीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।

0: करना है।
1: दृष्टि चक्र वह कैसे?
0: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण जाँच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
1: दोस्तों यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सिहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
0: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे, तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
1: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
2: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
1: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
2: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
2: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
0: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
2: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
0: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
2: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
0: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
2: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
0: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
2: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
0: आर्जरीना, IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
0: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
2: किस तरह का भोजन करें?
1: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
2: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए, परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
2: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
0: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
2: अच्छा।
0: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर

0: आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
0: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
0: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
1: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
0: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
0: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगी परी आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार वुमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
3: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
0: ठीक है मैम।
3: इसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
0: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
3: बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
0: ओके, ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
3: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
0: ठीक है।
3: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
0: ठीक है।
3: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
0: ज्यादा है।
3: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
0: ओके।
3: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है, और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
0: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
3: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
3: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
0: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
3: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
3: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है,
0: राइट,
3: हीम प्रोटीन होता है,
0: राइट,
3: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
0: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
3: बिल्कुल करना
0: सारे
3: चाहिए। और जितने सेब हैं,
0: हाँ जी, जो फ्रूट्स
3: हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
0: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
3: बिल्कुल सही
0: है। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर अनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
0: हाँ जी,
3: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
0: ओके,
3: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
0: ओके,
3: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
0: कम हो जाता है।
3: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
0: ओह माय गॉड,
3: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
0: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
3: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
0: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें?
3: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
0: That's very nice ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you ma'am. हमारे साथ आने के लिए guys, आप हिम्मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि ये समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तब आपका एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की वाली विकास परक सोच की खासियत है विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगे, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयो काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
2: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारी श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
2: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में ना।
2: बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख
0: डिजिटल
2: की तरफ बढ़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाती है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालो, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं, वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है। अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप

0: जानकारी खोजें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें। अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूँगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
1: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
2: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
1: एब्सोल्युटली, तो श्रोताओं हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत, प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर लें कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट, मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए तो?
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल है।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता।
5: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत बिहार पश्चिम बंगाल उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

0: ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आग्रह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं महिला मंच शो, जहाँ हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। सो मोस्टली देखा जाता है कि घर पर हमारी प्यारी महिला ही रहती है और कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है, क्या नहीं, और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन OTP, ATM, PIN, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती है। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुँचानी है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और रीना जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारियां दे रही हैं बैक टू बैक। शो का नाम है महिला मंच और दोस्तों जनगणना क्यों जरूरी है? अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो विकास की योजना कैसे बनेगी? जनगणना सरकार को ये समझाने में मदद करती है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ स्कूल। आपकी एक सही जानकारी देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। लेकिन सावधान रहें, कई बार सरकारी कर्मचारी आपसे बैंक OTP या फिर ATM पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सही जानकारी दें लेकिन अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने खुशी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। अगर लोग गलत एज, गलत संख्या, गलत जानकारी, तो सरकारी रिकॉर्ड भी गलत बनेगा और जब रिकॉर्ड गलत होगा तो योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और OTP जैसी चीजें कभी शेयर मत करिए। जागरूक बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। और श्रोताओं, एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही होती हैं और वो घबरा जाती है जब उनसे कोई पूछने के लिए आते हैं जनगणना के समय में, तो आपने घबराना नहीं है, बस सही जानकारी देनी है। कभी कभी होता है ना कि हम भाई सच नहीं बोलेंगे, हम गलत बोल देते हैं, और जब आप गलत बोलते हैं तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो गलत ही साबित हो जाती है, तो फिर जो आपको योजनाएं मिलने वाली होती है उसमें भी दिक्कत आती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो उसी के बाद हमें फिर से चक्कर लगाने पर जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए।
1: कि सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब आप सही जानकारी देंगे तब आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है दोस्तों। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक खाते और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा के लिए होता है। इसे किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सरकारी कर्मचारी कभी OTP नहीं मांगते। अगर कोई जनगणना के नाम पर OTP मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है,
0: क्योंकि जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे पहचान पत्र कब दिखाना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी जानकारी लेने आए तो पहले उसका पहचान पत्र जरूर देखें। बिना पहचान पत्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज हाथ में मत दीजिए। सही अधिकारी हमेशा अपनी पहचान बताते हैं। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले। जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक बनाए और इस चीज में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि जो आपसे जनगणना के लिए आ रहा है वो भी आपको बताएगा कि हम सरकार की तरफ से, उसके गले में आई कार्ड जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना है।
1: बैंक डिटेल क्यों नहीं बतानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ फ्रॉड इंसान भी आ जाते हैं और वो ऐसे ही डिटेल्स कुछ पूछ लेते हैं जो पर्सनली होती है, जो हम हर किसी से हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, जनगणना में आपकी बैंक जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन या मोबाइल बैंक पासवर्ड पूछे तो समझ जाइए कि वे धोखेबाज हो सकता है। सरकारी प्रक्रिया में आपकी निजी बैंक जानकारी जरूर नहीं होती, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। तो श्रोताओं, अभी आपसे मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और करेंगे आपसे और भी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे पिटारे में है। शो का नाम है महिला मंच, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।

0: जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो लाइक घर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर बुजुर्ग लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समझाइए कि ओटीपी, एटीएम पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
0: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बताते। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। सो अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाए। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। ओटीपी और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहे कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर ओटीपी या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
0: और साथ ही साथ आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसीलिए जब भी आप कोई लिंक सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करें। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
1: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, घर बैठे आपको जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं होती है, बस जागरूक रहने की जरूरत होती है। सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
0: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए, तो आपने जो डिटेल्स है वो शेयर करिए। और आपको भी पता है कि OTP, आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है। सो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने एंजॉय किया आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जनगणना और शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं साथियों। जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहां नए स्कूल की जरूरत है, यानी आपकी जानकारी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सही जानकारी देना देश की तरक्की में योगदान देना है।
1: सही जानकारी देश की तरक्की। सोचिए अगर आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में खुशी बहुत सी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इनफैक्ट ना कोई फीस लगता है वहाँ पर, ड्रेसेस और बच्चे के अकाउंट में पैसे भी आते रहते हैं
0: और बुक्स भी मिलती है।
1: हाँ, जूते, मतलब हर चीज अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आप सही जानकारी देंगे तभी और भी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे जनगणना और स्वास्थ्य। जनगणना से यही पता चलता है कि किस इलाके में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जरूरत ज्यादा है, इसी आधार पर नई सुविधाएं शुरू की जाती है। इसीलिए आपकी सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि देखा जाए हम पानी के वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं किसी इलाके में नल नहीं है तो आप उससे इसके बारे में भी खुलकर बताएं। कहीं आसपास आपके जो नाले हैं वो बहुत गंदे हैं, काफी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन डिटेल आपने सही जानकारी देनी है।
0: मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी रीना, जैसे आपने बोला कि साफ सफाई के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना अस्पताल के बारे में, कुछ गाँव ऐसे भी हैं अभी जहाँ पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती हैं। जब तक वो शहर पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए साथियों अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके गाँव में भी अस्पताल होंगे और जब

अस्पताल होंगे तो जो मरीज को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट होते हैं, वो जल्दी से उनको इलाज भी मिलेगा, और जब इलाज सही समय पर मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, रीना जी बात कर रही थी स्वास्थ्य और गणना के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल फ्रॉड के बारे में। मोबाइल फ्रॉड से सावधान रहें। अगर साथियों कोई मोबाइल पर लिंक भेजकर जानकारी मांगे तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। फर्जी लिंक आपके फोन और बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो साथियों अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच, जहां पर महिलाओं की बातें भी होती हैं, बुजुर्गों की बातें भी होती हैं, और छोटे बच्चों की बातें भी होती हैं, और हम जैसे युवाओं की बातें भी होती हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और गाने
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
6: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
6: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
7: मुरादाबाद
5: से संपर्क कीजिए।
6: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हेलो फरमाइश। बातें भी होंगी ढेर सारे, और बातों के साथ साथ आपके फेवरेट गाने भी हम यहाँ पर प्ले करेंगे, तो बिल्कुल मस्ती करने के लिए तैयार हो जाइए। ढेर सारे गाने तो हम सुनवाएंगे ही, लेकिन कुछ बातें भी करेंगे, आपका हाल भी जानेंगे। और हाल चाल जानने के लिए आपको मुझे कॉल तो करना होगा ना एवरीवन, तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिएगा। आप मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और सुनिएगा एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। अभी आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और ये प्यारा सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2 से, अमेजिंग ट्रैक है, आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनती हूँ, बस लौट कर आती हूँ।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कितना ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना ना दोस्तों। दिलजीत दोसांझ जी साथ में सचेत परंपरा की बड़ी प्यारी सी आवाज़ फ्रॉम द मूवी बॉर्डर टू से ही प्यारा ट्रैक अभी आपने सुना। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। और दोस्तों, मैं ना आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, आपके घर में, हमारे घर में, हम सबके घर में ना एक ऐसा शख्स होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ आज कि कौन है वो शख्स जो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनके बारे में आज सच सच बताइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम शमी हसन है।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं शमी हसन जी?
1: जी मैम, लाकड़ी से बात कर रहे हैं।
0: लाकड़ी फाजिलपुर से?
1: जी
0: जी। बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: जी हम कारपेंटर का काम करते हैं।
0: कारपेंटर का काम करते हैं। ओके सर, तो बताइएगा कैसा लगता है आपको एफएम मुरादाबाद सुनना?
1: बहुत पसंद लगता है।
0: अच्छा, काम के साथ साथ रेडियो भी चलता रहता है, मनोरंजन भी आपका होता रहता है? जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ शमी हसन जी, आप मुझे बताइए आपके घर में कौन ऐसा शख्स है जो बहुत ज्यादा बातें करता है? हाँ, कौन है आपके फैमिली मेंबर्स में जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स में कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा बातें करते हो? कौन करते हैं?
1: मीडियम ही करते हैं।
0: मीडियम तो देखिए सभी बात करते हैं, मैंने कहा जो ज्यादा बोलता है, कौन है वो बताइए? आप खुद तो नहीं है? ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ भी बोल रहे हो, ना भी बोल रहे हो, सही सही बताओ, कौन बात करता है आपके घर में सबसे ज्यादा? आप बोलते हो, सिस्टर बोलती है, ब्रदर बोलते हैं आपके? अच्छा, तो फिर इतना शर्मा क्यों रही है बताने में? आपको बताना चाहिए कि हाँ जी खुशी जी, मैं सबसे ज्यादा अपने घर में बातें करता हूँ। ओके, चलो ये तो हम मजाक कर रहे हैं आपसे, आप सीरियसली मत लीजिएगा। वैसे बताइए सर, आज क्या सुनना चाहते हैं आप? आज आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना? हेलो। ओके सर, थैंक यू कॉल करने के लिए। एवरीवन, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मुझे कॉल करें तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड का ख्याल रखें, बैकग्राउंड से आपकी बहुत आवाज़ें आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना, एंड एवरीवन, आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाती, क्लियर नहीं आ पाती है, तो कई बार बात करने में भी वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए आप जब भी कॉल करें तो अपने बैकग्राउंड की थोड़ा सा दूर हो जाएं, ताकि आपके बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस ना आए, सिर्फ आपकी आवाज़ आए और आरजी खुशी की आवाज़ आए और सुनने वाले तमाम श्रोता आपकी बातों को अच्छे से सुन पाएं। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आप मुझे फ़ोन लगाइए, मैं कॉल रिसीव करने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और एक प्यारा सा गाना मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, और इस गाने को सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी प्रेम रोकसी। और खुशी यहाँ पर फिर से हाजिर हो गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो ये मौका आपको मिला है, अभी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एवरीवन, बहुत सारी बातें भी करेंगे आज। मैंने सोचा कि थोड़ा सा फनी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अपने श्रोताओं से, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, लाइफ में ना हमेशा सीरियस रहना नहीं चाहिए, कभी कभी ना हैप्पीनेस फनी चीज़ें करती रहना चाहिए ताकि चेहरे पर ना मुस्कुराहट बनी रहे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हर घर में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो बताइएगा आपके परिवार में सबसे ज़्यादा कौन बोलता है। ओहो हो, किसका नाम लेने वाले हैं आप, वो तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे ना। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: शुभ नाम दिनेश चौहान, जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिनेश चौहान जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: बड़े हैं मैडम, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है।
1: मौसम तो अभी मैडम ऐसा है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब 4-5 दिन से धूप निकल रही है।
0: अच्छा, 4-5 दिन से गर्मी है।
1: हाँ, गर्मी भी है और धूप भी है मैडम।
0: अच्छा, दोनों ही चीजें हैं। तो ये बताइएगा दिनेश जी, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको?
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैडम मेरे को। सबसे ज्यादा कार्यक्रम वो अच्छा लगा था, एक दिन कुमकुम और आनंद सर ने बात किया था, महिला के बारे में कुछ बात चल रही थी, खान पान के बारे में, मैं सब सुन रहा था, तो अच्छा लगा था मुझे।
0: ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया और बहुत नीट होती है हमें, क्योंकि हमें और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और चीजें आगे बेहतर करें।
1: हाँ सही बात है मैडम।
0: तो दिनेश जी, हमारा आज का बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि हर फैमिली में कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करता है, तो आपकी फैमिली में कौन है जो सबसे ज्यादा बातें करता है?
1: हमारे फैमिली में तो ज्यादा बात मैं करता हूँ मैडम, अच्छा लगता है।
0: ओके, तो कुल मिलाकर आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा बातूनी जो है वो है आप, राइट?
1: सही बात है मैडम।
0: तो घर वाले क्या बोलते हैं कि कभी कभी चुप भी हो जाया करो, कितना बोलते हो पूरा दिन? हाँ,
1: मैं तो ज्यादा करके मैं तो काम के बारे में बोलता हूँ, या तो घर में साफ सुथरा रखना चाहिए, खाना जल्दी खिलाना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा बोलता हूँ।
0: अच्छा, ये चीजें आप ज्यादा बातें करते हैं।
1: सही बात है मैडम।
0: हाँ नहीं, अच्छी बात है, बातें करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बात करने से ना मन भी हल्का होता है, और मन में ना कोई सवाल नहीं होना चाहिए, जो भी है डायरेक्टली बोलना चाहिए, राइट?
1: सही बात है मैडम।
0: तो बताइए दिनेश जी, आज आप क्या सुनेंगे?
1: मैडम मैं आज आपका पसंद का कोई भी गीत सुनना चाहूंगा।
0: अच्छा ठीक है दिनेश जी, हम आपको अपने पसंद का एक प्यारा सा गाना सुनवाते हैं। वैसे आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, अच्छा लगता है जब आप हमें कॉल करते हैं सर।
1: सही बात है मैडम, अच्छा लगता है ना जब कार्यक्रम भी अच्छा होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिनेश जी सुनवाते हैं एक अपनी पसंद का प्यारा से गाना, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, ये तो दिनेश चौहान जी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे महाराष्ट्र से, अब आपकी बारी है, चाहे आप मुरादाबाद से हो, चाहे आप गुजरात से हो, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त जल्दी से कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। बिल्कुल जी श्रोताओं, आप सबसे प्यारे हैं, और जब आप सभी के साथ हम कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपका जो प्यार है ना वो इतना उमड़ता है, वो आपकी कॉल से पता चल जाता है हमें। आप बहुत प्यारे हैं श्रोताओं, ये प्यारा गाना आप सभी के लिए है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और वक्त हम आपको बता देते हैं राइट नाउ, समय हुआ है 3:36। जी हाँ दोस्तों, और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। जनाब हम पहले भी कह चुके हैं कि आप सबसे ज्यादा प्यारे हैं और अच्छा लगता है जब आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस ब्यूटीफुल सेशन में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अभी राइट नाउ कॉल कर सकते हैं मुझे। नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, 9837896896। और कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, मैं संजीव गौतम बात कर रहा हूँ।
0: संजीव गौतम जी,
1: बताइएगा
0: सर क्या करते हैं आप।
1: हेलो जी मैम,
0: मैंने आपसे मालूम किया है कि सर आप क्या करते हैं।
1: मैम मैं पेंटिंग का काम करता हूँ।
0: ओके, तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर।
1: मैम मेरा सॉन्ग है जिंदगी बेवफा है।
0: हाँ,
1: ये मेरे को सुनना है।
0: ओके,
1: और मैम मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे कुछ फ्रेंड है, क्या मैं उनका नाम ले सकता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल बताइए
1: जी। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है खलील अहमद।
0: हाँ,
1: और एक मेरे है सामी अहमद।
0: ओके,
1: दोनों ही मेरे साथ में वर्क करते हैं। तो मैम ये गाना जो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा,
0: हाँ,
1: उन लोगों को जो दिन जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।
0: ओके तो ठीक है, गाना आपको सुनवा देते हैं सर, कॉल करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, संजीव जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं एक गाना, जिंदगी बेवफा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हम किस नजरिए से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। और अगर एक शख्स गलत हो जाए तो जरूरी नहीं है कि पूरी लाइफ हमारी ऐसी ही हो। एक इंसान की वजह से अपनी पूरी लाइफ को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए गलती जिंदगी में होती है और गलती से हमें सीखना है, ना कि पूरी लाइफ को वही पुरानी बातों को सोचकर बैठकर अपनी लाइफ आने वाले टाइम को क्यों ख़राब करना। यार जिंदगी का हर पल बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती है, तो उसका यूटिलाइज़ करो, हैप्पी रहो। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़कर जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ एक बार मिली है, तो पुरानी बातों को क्यों दिल पर लगाना। बाकी सबका अपना नज़रिया है, अपने थॉट हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप एवरीवन मुझे कॉल कर सकते हैं।

0: For admission, call 9639004077.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना तलविंदर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में, पल पल जीना मोहाल। एंड वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 3:48 हो चुके हैं स्टूडियो की।

में दोस्तों जरा सोचिए, क्या कोई 5.5 मीटर लंबी रेशमी साड़ी इतनी छोटी हो सकती है कि एक माचिस के डिब्बे में समा जाए। सुनने में भले ही ये किसी जादू जैसा लगे, लेकिन ये सच है एवरीवन। तेलंगाना के हुनरमंद बुनकर नल्ला विजय कुमार जी ने अपनी अद्भुत कला से सिर्फ 200 ग्राम वजन की ऐसी सिल्क साड़ी तैयार की है जिसे तय करके ना आसानी से माचिस के डिब्बी में रखा जा सकता है। दोस्तों इस खूबसूरत साड़ी को उन्होंने श्री शैलम स्थित श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में देवी ब्रह्मरंभा को भेंट किया। एंड खास बात यह है कि इस अनोखी कलाकृति को तैयार करने में विजय कुमार और उनके परिवार को 7 दिन का समय लगा। बाकी दोस्तों भारत के बुनकरों का हुनर और हमारी समृद्धि परंपरा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। ऐसे कलाकारों को हमारा दिल से सलाम है। हुनर वही जो दुनिया को हैरान कर दे, और भारत के कारीगरी बार बार यही साबित करते हैं। दोस्तों और साड़ी पहनने का किसको शौक नहीं होता है, हम कोई भी ड्रेस पहने लेकिन साड़ी की बात अलग ही होती है। और अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के साथ साथ लाइक एंटरटेनमेंट के साथ साथ जानकारियां मिलें बीच बीच में, तो वो भी खूबसूरत लगती हैं। और इस वक्त हमारे बहुत सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, तो दोस्तों इस फोन इन कार्यक्रम में ना आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बस आपको क्या करना है, जो फोन आपके हाथ में है, अभी आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं अपने, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। नंबर हमारा है 9837896896। अब खुशी इतने प्यार से कह रही है तो प्लीज कॉल कर लीजिए ना। हेलो फरमाइश। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, लगता है सर कॉल लगाकर कहीं और व्यस्त हो गए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ मुझसे ही बात करें, ताकि आप इतनी मेहनत से कॉल लगाएं और वो कॉल आपकी यूं ही मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कॉल लगाने में और सभी सबरे से इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कॉल लगाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िलहाल ये गाना सुनो, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। एंड इस गाने के बाद मैं लौट कर आती हूँ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और मुस्कुराने के साथ साथ अभी आप क्या कर रहे हैं, आराम से बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं। कुछ हमारे श्रोता कार में हैं जो घर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ अभी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चाय बनाएं या नहीं बनाएं। चलो आप डिसाइड करो, इतने में ये गाना सुनवाती हूँ। और हाँ, कॉल भी कीजिएगा, ठीक है?

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना क्रिश किशोर मनल की आवाज में। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में जुड़े हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश भी यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप नंबर ट्राई कर रहे हैं और आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, बहुत बिजी नंबर आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, बस आप प्रयास करते रहिए, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट कॉलर आप मेरे शो के बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम ट्राई करेंगे ना, तभी हमारी जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी। लेकिन जब आप ट्राई करना छोड़ देंगे तो कैसे कॉल लग पाएगा। हाँ, तो कॉल कीजिएगा। लेकिन उन श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट है जिनका कॉल मंडे लग चुका है, ट्यूसडे लग चुका है, कि प्लीज़ वो दोबारा कॉल ना करें, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका दें। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जिन्होंने मंडे में कॉल किया है, ट्यूसडे में कॉल किया है, वो उनके कॉल्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? शमशाद अंसारी जी बिलारी से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: और मैम, ठीक हैं आप?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आप कैसे हैं सब?
1: हाँ, बहुत बढ़िया
0: हैं। ओके जी, अच्छे ही रहने चाहिए सर। बताइएगा आप कहाँ पर हैं अभी? आपके पास से गाड़ियों की साउंड आ रही है, लगता है कि मार्केट में है शायद।
1: जी, मार्केट में।
0: ओके, बताइएगा आप क्या सुनेंगे सर आज?
1: गुलशन गुलशन प्यार की बातें हैं सॉन्ग है ये, फिल्म का नाम है दो लड़कियां।
0: ओके सर, सुनवाते हैं गीत आपको। शुक्रिया आपने कॉल किया।
1: हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज हैं।
0: हाँ जी,
1: जावेद अंसारी बिलारी से, और एक हमारे अजीज हैं इरशाद अंसारी मंजूरी कॉलोनी से मुरादाबाद।
0: ओके सर, ठीक है, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये ट्रैक। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। तो जब दोस्तों के नाम लेते हैं ना, अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अब आप सोचोगे खुशी जी आज कितनी रिक्वेस्ट हमसे कर रही हैं। दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे जब भी कॉल करें तो सिर्फ आप दो ही दोस्तों के नाम लें, ताकि जो टाइम है उसको मैनेज कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर से कनेक्ट कर पाएं, बातचीत कर पाएं। क्योंकि कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबी बातचीत हो जाती है और श्रोता बहुत सारे मिस कर देते हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि वो कॉल नहीं लगा पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम बातों में ज़्यादा कॉलर को लें और एंटरटेनमेंट भी हो जाए, दोनों चीज़ें इजीली हो जाएं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: कोई मिल गया,
6: कोई मिल गया।
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और एवरीवन। टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 4:07 हो चुके हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, और आगरा के ताज महल में इस भावना की एक बेहद खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। जी हाँ साथियों, एक विदेशी महिला पर्यटक साड़ी पहनकर ताजमहल घूमने आई थी, लेकिन उन्हें साड़ी संभालने में परेशानी होने लगी। ये देखकर वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आई। उन्होंने बड़े प्यार और धैर्य से पर्यटक की साड़ी ठीक कराई एंड ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सके। इस छोटी सी मददगार कदम ने न सिर्फ पर्यटक का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने महिला पुलिस की इस संवेदनशील और मानवीय पहल की खूब सराहना की। वाकई दोस्तों, वर्दी सिर्फ कानून की पहचान नहीं होती बल्कि इंसानियत की भी मिसाल होती है। ऐसे पुलिसकर्मी को दिल से सलाम। और कहते हैं ना साथियों कि छोटी सी मदद, बड़ी सी मुस्कान, यही है इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान। तो चलिए अभी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से, कौन कहाँ से कनेक्ट हुई है उन्हीं से बात कर जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: बेदर्द जमाना क्या जाने क्या दर्द की कसरत होती है।
0: वाह वाह वाह।
1: जमाना क्या जाने क्या दर्द की कसरत होती है, दिल देखे हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है।
0: बहुत ही खूबसूरत लाइनें बोली है मोहतरमा, अपने नाम तो बता दीजिए।
1: हाय दी, कैसी हो?
0: आपकी दी तो बहुत अच्छी है, आप बताओ कैसी हो?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ दी, और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया अफरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा आपके परिवार में सब खैरियत से हैं?
1: हाँ जी, मेरे यहाँ पे सब ठीक है, आप बताओ स्टूडियो में सभी कैसे हैं?
0: ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है हमें संडे के बाद, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी,
0: क्योंकि संडे में हमारी बातचीत हुई थी, आई रिमेम्बर, नाइट वाले शो में, राइट?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो बताइएगा आज क्या सुनने का इरादा है आपका?
1: दीदी आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पसंद का सॉन्ग सुनूंगी।
0: बताइए।
1: उन्होंने कुछ लाइनें भेजी है मेरे लिए।
0: ओहो।
1: तो वो चाहती है कि लाइनें तो उनकी है लेकिन आवाज मेरी होनी चाहिए।
0: इरशाद इरशाद, हम भी सुने, सुनाइए।
1: तो अर्ज किया है, लाखों की हंसी तुम्हारे नाम कर देंगे, लाखों की हंसी तुम्हारे नाम कर देंगे, हर खुशी तुम पे कुर्बान कर देंगे। जिस दिन वो कमी मेरे प्यार में अफरोज बता देना, जिस दिन वो कमी मेरे प्यार में अफरोज बता देना, इस जिंदगी को आखिरी सलाम कह देंगे।
0: अरे बाप रे, बहुत खतरनाक शायरी थी आपकी तो। लेकिन बहुत प्यारी लाइन है यार, बहुत प्यार है उसमें, गहराइयां हैं।
1: हाँ दी, लेकिन क्या है ना दी, मतलब वो मेरे लिए बहुत जरूरी है और बहुत कीमती नायाब है।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट यार, दोस्ती में ना ये चीजें, पता है आपको अफरोज, दोस्ती में ना हर एक छोटी चीज बहुत खूबसूरत लगती है।
1: बिल्कुल, पता है ऐसा भी होता है दोस्ती में नाराजगी भी हो जाती है कभी कभी।
0: हाँ नाराजगी हो जाती है, लेकिन वो नाराजगी भी बहुत प्यारी होती है जब हम प्यार से मनाते हैं और वो मानते नहीं है।
1: लेकिन हम नाराजगी भी उसी से होती है ना, जिस कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से नाराजगी होती है।
0: हाँ बिल्कुल, होना, मुझे ऐसा लगता है कि नाराज भी होना चाहिए, अगर हमेशा प्यार रहेगा ना तो रिश्ता थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो थोड़ी सी अनबन भी होनी चाहिए, लेकिन मान भी जाना चाहिए फिर।
1: हाँ
0: अच्छा ये बताओ आज कौन सा गाना सुनोगी आप?
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनूंगी नायबा की पसंद का, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
0: ओके, इस बात का खुदा गवाह। हाँ चलो सुनवाते हैं गाना आपको। हाँ,
1: बेनाम सी मोहब्बत दिल में दबा रखी है, बेनाम सी मोहब्बत दिल में दबा रखी है, तेरी चाहत सपनों में सजा रखी है, ये दुनिया बदले पर तुम ना बदलना लायबा, ये दुनिया बदले पर तुम ना बदलना लायबा, हमने ये उम्मीद सिर्फ तुमसे लगा रखी है।
0: बहुत खूब।
1: और भी मेरी जितनी भी सिस्टर सुन रही है मुझे, मैं ये सॉन्ग उनको सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ, और खास करिए नायबा मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए।
0: ठीक है डियर, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय। ठीक है तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, लौट कर आते हैं, बस आप मुझे कॉल लगाइएगा।
2: निकाह कबूल है।
3: सुभान अल्लाह।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने ये टाइटल ट्रैक सुना, खुदा गवाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था और आवाज़ थी कविता कृष्णमूर्ति, साथ में मोहम्मद अजीज जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा गाना। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: जी बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं। आप सब बढ़िया हैं, आपके परिवार में?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं। क्या नाम है आपका?
1: जी मैं अकल सिंह कैनी बोल रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, चम्बल रोड, बस्तौर से।
0: जी बताइएगा सर, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी आज फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, और गाने के बोल हैं, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा जी सारी दुनिया के लिए।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है
1: जी।
0: तो जी गाना आपको सुनवाते हैं सर?
1: जी मैं कुछ नाम ले दूं अपने परिवार के?
0: हाँ जी, सिर्फ दो ही नाम ले सकते हैं आप सर।
1: चलो दो ही नाम ले सकता हूँ।
0: जी बताइए।
1: मीना मुन्नी पवित्रा।
0: अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और

0: ये अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री, साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: दोस्तों अभी आपने खूबसूरत सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में, लता मंगेशकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, बहुत ही प्यारा गाना। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक के बाद अभी बात करते हैं अपनी कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। अगर एवरीवन आपका भी मन है गाना सुनने का, अपना फेवरेट या फिर किसी को डेडिकेट करने का, तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, गुड इवनिंग शबीना खान जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ओके, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं शबीना?
1: मैं रहमतनगर मुरादाबाद से बात कर रही हूँ
0: जी। बताइएगा शबीना, कैसे हैं आपके फैमिली में सब लोग?
1: मैम सब ठीक है।
0: और आप क्या कर रहे थे इस वक्त?
1: मैंने सोचा मतलब कॉल लगा लेती हूँ आपको, तो मैं इस वक्त छत पर हूँ। बहुत अच्छा मतलब हवा चल रही है इस वक्त।
0: अच्छा, हवाएं चल रही हैं
1: जी।
0: ओके, तो हवाओं का आनंद ले रही हूँ और हमें भी फोन मिला रही थी, अब तो डबल खुशी हो गई है
1: जी। मैम लाइट बहुत मतलब परेशान करती है, ऐसे मतलब बार बार भगा रहा है लाइट। ऊपर आ जाती हूँ तो इस वक्त आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी हवा मतलब चल रही है छत पर।
0: ओके, अच्छा लग रहा है, तो बताइएगा आज आपने
1: कॉल लग गई तो और भी अच्छा लग रहा
0: है। मतलब शबीना आपको लगा था, उम्मीद थी कि कॉल लग जाएगा?
1: नहीं मतलब मैं सोचा तो था कि लग जाएगा, जैसे मैं जब भी लगाया तो लगा तो है मेरा मतलब कॉल, ज्यादा टाइम नहीं लगा।
0: ओके, और आज भी वैसा ही हुआ, एक रिंग गई होगी शायद, तभी मैंने कॉल रिसीव कर लिया, राइट?
1: जी मैम, मतलब काफी बार मतलब देर तो लगी, मतलब लग गया।
0: ओके, तो बताइए शबीना आज आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: जी मैम, मन मूवी का सॉन्ग सुनवा दीजिएगा मैम आप। खुशी और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है।
0: ओके शबीना, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए ठंडी ठंडी हवाओं को आनंद लीजिए एवरीवन। एंड दिस इज शबीना, ने भी बताया है कि बाहर अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो नेचुरल हवा का लुत्फ उठाइए, बाकी ये गाना सुनते जाइए फ्रॉम द मूवी मन से।

0: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, खुशियाँ और गम दोनों लाइफ में। हाँ जी,
1: गुड मॉर्निंग।
0: अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं बोला है? गुड मॉर्निंग बोला है मैंने। ओके, जब जागो तभी सवेरा। गुड इवनिंग एवरीवन। 4:32 हो गए हैं। एक्चुअली जब रीना आती है ना यहाँ पर, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों बहुत डिस्कशन करते हैं, बातचीत होती रहती है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम बातचीत करते हैं ना, तो हमारा माइंड कहीं और हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी मेरा जो माइंड सेट है वो सिर्फ हेलो फरमाइश पर है। और अभी मैं बात करती हूँ अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
2: मैं जसवीर बोल रहा हूँ, गुरुदास सिंह मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
2: हम बढ़िया हैं, आपके आपके वहाँ सब कैसे हैं परिवार में?
0: हाँ जी, बहुत अच्छे हैं सर, प्रभु राम जी की कृपा है। आप बताइएगा, क्या सुनेंगे आप सर?
2: आकाशवाणी में सब ठीक है।
0: हाँ जी, हाँ जी, एफएम मुरादाबाद में सब बहुत अच्छे हैं सर।
2: हम गाना सुनना चाहते हैं, क्रांति फिल्म का दिल वाले दिल वाले।
0: ओके सर, ठीक है, ये गाना आपको सुनवा देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये गाना, बहुत ही प्यारा, फ्रॉम द मूवी क्रांति से। और आपको भी पता है ना दोस्तों, आज दमदार अभिनेता का बर्थडे है। जी हाँ, आप जानते हैं जिनको, किस नाम से जानते हैं? ओहो, आप भूल गए, मैंने सुबह बताया था आपको। चलो आकर बताती हूँ, फिलहाल ही गाना सुनो बस। एंड इस गाने में भी वो एक्टर नजर आए हैं, आप गेस कर सकते हैं

0: ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन, भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली।

0: ओए हे जी, क्या बात है। तुसी बड़ा ठुमक रहे हो जी। हाँ जी, थिरक रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें। थोड़ा सा थिरकना भी जरूरी है। ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुना, मीट ब्रदर्स, साथ में सुखवीर जी और नेहा कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी भी फरमाइश। यहाँ पर यह है आपकी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और दोस्तों, टाइम भी मैं बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 4:42। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, जय श्री कृष्णा।
1: तालुको पालीताना जिलो भावनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैं मजा में हूँ दीदी।
0: अच्छा ही रहना चाहिए सर। बताइएगा, आपके गुजरात का मौसम

हम आपको गाना सुनवा देते हैं, आपने कॉल किया, धन्यवाद सर। तो चलिएगा ये गाना सुनते हैं। हमें कॉल आया था मधुबाई चौहान जी का गुजरात से, और गुजराती लैंग्वेज, गुजराती खान पीन बहुत ही यमी यमी होता है दोस्तों। गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तुम्हें केम छो मजा मा बहुत अच्छा लगता है। और ये प्यारा से गाना भी सुनते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना। कुछ पुराने गाने बड़े ही खूबसूरत होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं और हमारी पुरानी यादों में फिर से वापस हमें ले जाते हैं। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: गुड इवनिंग मैम।
0: हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा। क्या नाम है आपका?
1: मैं रिहाना बोल रही हूँ नांगल से।
0: जी बताइए रिहाना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं और अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं का इंतजार करते हैं कि जल्दी से हमें कॉल करें और हम उनसे ढेर सारी बातें करें।
1: जी मैम।
0: तो आप बताइएगा आज क्या सुनेंगी आप?
1: मैम गाना सुनाना, कुछ कहता है ये सावन।
0: कुछ कहता है ये सावन।
1: जी मैम।
0: ओके चलिए गाना आपको सुनवाते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम डियर, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। एवरी मॉर्निंग ये मैसेज तो करती हैं लेकिन आज कॉल भी किया है। तो दोस्तों आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं जल्दी से, नंबर है 9837868 9 6 98 378 96 896। यह है हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर जिस पे आपको मुझे कॉल करना है। आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपका कॉल रिसीव करूँगी जल्दी से।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक अभी आपने सुना, फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था और लता मंगेशकर जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज में प्यारा गाना आपने सुना, साथ में मोहम्मद रफी साहब जी दे रहे थे साथ। और अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। एवरीवन, अगर आपका कॉल नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप कल भी लगा सकते हैं, आप परसों भी लगा सकते हैं, अभी 3 दिन आपके पास हैं। जी हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप 3 दिन तक कॉल हमें लगा सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं लगा है तो 3 दिन है, प्रयास कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपका कॉल ज़रूर लगेगा। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: ईदगाह गेट मुरादाबाद से शबीर वतन तारी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं।
0: जी अच्छा ही रहना चाहिए, बताइएगा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: फिल्म का नाम है सुहाग रात पुरानी। गीत के बोल हैं, खुश रहो हर खुशी तुम्हारे लिए है, आवाज मुकेश की।
0: जी तो ये गीत आपको सुनवा देते हैं सर, आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: कुछ हमारे दोस्त हैं, उनका नाम पढ़ूं?
0: जी जी जी बताइएगा सर, सिर्फ 2 ही नाम आप ले सकते हैं।
1: हाँ जी, डॉक्टर
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपकी पसंद का, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। और दोस्तों अभी मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, और बस मैं ये कहूँगी कि हर पल को अच्छे से जीना है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से क्या होता है ना, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, माइंड पर ज़्यादा प्रेशर होगा, तो कैसे स्वास्थ्य आपका ठीक होगा? हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, ज़िंदगी बहुत प्यारी है। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: गीत के साथ ही हमारा आज का ये युवा वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: जय सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
8: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
7: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
8: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
7: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
8: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
9: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
10: मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
11: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
10: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त ने उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। बिल्कुल सही बात है कि इश्क छुपता नहीं है छुपाने से कभी भी। अभिजीत सिंह की आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत ये गाना एंजॉय किया श्रोताओं। बेवफा मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है और गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। यानी कि समय की बात करूँ तो 5:13 हो चुके हैं और अब हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। आखिरकार आज का स्पेशल डे क्या है, बाहर क्या चल रहा है, और गर्मी ने तो भैया मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है ना। गर्मी इतनी ज़्यादा, मतलब जितनी बरसात होती है उतनी ठंड, हल्की सी ठंडी हवाएं चलने लग जाती। भगवान जी कहते हैं अच्छा बेटा रुक जाओ, 2 दिन तुमने अच्छे से एंजॉय कर लिया ना, लेकिन अब तुम गर्मी को सहन करो। क्योंकि देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी कि सहन बिल्कुल भी नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इंसान जब बाहर जाता है तो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम घर में रहते हैं और घर में से जब बाहर जाते हैं तो हमें धूप का, असली जो धूप है उसका हमें पता चलता है। फिलहाल श्रोताओं यहीं 2 घंटे आप सभी के साथ रहने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है जी, अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रहना है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:25 हो चुके श्रोताओं। और आज देखिए ट्रैफिक के साथ साथ यानी कि जब रास्ते स्मूथ हो जाते हैं ना तो सच बताओ सफर यूं ही कट जाता है, पता ही नहीं चलता। सो आज लोकल फॉर वोकल के बारे में बात करने वाले हैं यानी कि मुरादाबाद के बारे में कि आखिरकार और जो सफर है और भी आसान होने वाली है। जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे ना कि और कैसे आसान हो सकती है। अरे जी बिल्कुल हो सकती है, एकदम फैंटास्टिक वाला जो कि दिवाली के मौके पर बहुत ही बढ़िया तोहफा मिलने वाला है मुरादाबाद वालों को। तो फिलहाल तो एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते फिर बताएंगे आप सभी को। ठीक है जी, बस बन रही है आज जरीना के साथ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।

कहते हैं सफर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर रास्ते आसान हो तो मंजिल तक पहुंचने का मजा ही कुछ और होता है। और अब मुरादाबाद के लिए, यानी कि जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहद खुशखबरी है जी। हाँ जी, इस दिवाली तक मुरादाबाद को मिलने वाला है यानी कि तीसरा फ्रोलेन यानी कि पागवाड़ा रतनपुर कला और डिग्रीपुर कुंदर की मार्ग का यानी कि करीब 85% काम पूरा हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में सफर होगा और भी आसान, ट्रैफिक होगा कम और विकास की रफ्तार होगी दुगनी। कहते हैं ना, जब सड़कें बेहतर होती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं, तरक्की भी तेज हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली मुरादाबाद को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी का और भी खूबसूरत तोहफा मिलने वाला है। जी बिल्कुल, रास्ते अब होने वाले और भी स्मूथ। जी बिल्कुल, जब और भी फ्लोर मिल जाएंगे यानी कि, तो हाईवे यानी कि देखिए भैया कनेक्ट होने वाले हैं अपने मुरादाबाद को, और भी रास्ते जो है जो बहुत ट्रैफिक कभी कभी लग जाते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब रास्ते नए खुल जाते हैं ना तो मार्ग भी नए स्टार्टिंग हो जाती है और हर किसी को भैया चाहिए कि हाँ मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं। तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, बस दिवाली के मौके का इंतजार करिए। और यूं ही आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। आगे जाने वाले कि आज यानी कि है तारीख यानी कि 15 जुलाई और ये कहा जा रहा है कि भैया 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि भी आज से शुरू हो गए हैं, यानी कि इस गुप्त नवरात्रि पर गुप्त पूजा की जाती है, जो कि आप कहते हैं कि इस नवरात्रि पर जो भी आप माता रानी से मांगते हो वो विशेष आपके जरूर पूरे होते हैं, लेकिन इसमें अगर श्रद्धा हो तो भगवान तो ऑलरेडी आपसे खुश हो जाते हैं जी। चलिए और भी बात करेंगे यानी कि आज का कौन कौन सा डे है यानी कि 15 जुलाई को मनाया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दिल्ली आप घूमने जाने वाले हैं, अगर आप कौन सी जगह घूमने जाने वाले हैं जहां आप मौका आपको नहीं मिल पाएगा उसके बारे में बताएंगे, बस अगर आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहेंगे तभी जान पाएंगे। चलिए फिलहाल अगले गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

Anjung.

0: के दिल कर चू चै चू चै चै के दिल कर चू चै चू चै चौ
1: जमाई आ सोनिया ओए होए हेलो जी। जिंदगी में सिर्फ अपने सपने देखना काफी नहीं होता, उसे पूरा करने का हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि डिग्री आपको पहचान दिला सकती है लेकिन स्किल आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। हाय, दिस साइड आरजेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। समय की बात करूं तो 5:43 हो चुके हैं श्रोताओं, यानी कि 5:43 हो चुके हैं और आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज है 15 जुलाई, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। ये दिन याद दिलाती है कि हर युवा के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस उसे पहचानने, निखारने और सही दिशा देने की जरूरत होती है। तो अगर आप

0: समय कब?
1: वो कभी नहीं आता है। तो इसीलिए जो करना है आज करना है, आज से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके तो देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, नहीं रिजल्ट आ पाएगा। अंदर से यही होएगा फील कि यार कुछ नहीं करना है, थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप थक हार के बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हार तो मतलब समझ लो कि जिंदगी में है ही नहीं। क्या होता है हार, इसको हटाओ यार और जो करना है करो। क्योंकि देखिए कल को अगर आपको बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज अरे ओम फो नहीं कर पाएंगे जी। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं श्रोताओ। गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। ओह मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ओ माय गॉड। हां जी, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 से। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। यानी कि हर शहर की पहचान होती है, कहीं स्वाद पहचाना जा सकता है तो कहीं

जी, यानी कि हर कहीं का स्वाद पहचाना जाता है, कहीं संस्कृति, लेकिन हमारा मुरादाबाद अपने हुनर के दुनिया का दिल जीत लेता है। यानी कि जब किसी विदेशी घर की सेल्फी पर चमकता हुआ पीतल सेल्फी सजाता है, तो समझ लीजिए उसे सिर्फ धातु की चमक नहीं, बल्कि मुरादाबाद के कारीगरों के पसीने, मेहनत और सालों के अनुभव की चमक भी शामिल होती है। यही वजह है कि मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहा जाता है। यहाँ का पीतल उद्योग ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। हजारों करोड़ों का कारोबार, लाखों लोगों को रोजगार और हर हथौड़े की आवाज में छिपी होती है एक कारीगरी की कहानी। तो अगली बार जब आपके घर में कोई खूबसूरत पीतल की चीज दिखे, तो उसे सिर्फ एक सजावट का सामान मत समझिए, क्योंकि उसे मुरादाबाद की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों के हाथों की गर्माहट और भारत की शान बनाती है। तो हमारा मुरादाबाद तो भैया पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पीतल की भाई सोनो शाकर, यानी कि पीतल की जो भी धातुएं बनाई जाती है, वो हर देश विदेश तक चमकती है। तो हमारा पीतल नगरी तो वैसी पीतल नगरी है जी, यानी कि चमकता हुआ शहर, चमचमाता हुआ शहर। और आप यूं ही आज रीना के साथ कनेक्ट रही FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, फिलहाल मिलते हैं एक बहुत ही शानदार गाने के बाद, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। फिलहाल आपने क्या करना है जी, कहीं नहीं जाना है। चलिए,

0: 27,527,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजघर सवार डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

में की रात है। ओए होए, हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाली इवनिंग है जी। आरजेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे, यानी कि कहते हैं जब जागो तब सवेरा। और आप आरजेरीना के साथ कनेक्ट है। देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:12 हो चुके हैं श्रोताओं। और हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है भैया कि संडे को या फिर कभी थोड़ा सा ऑफिस से छुट्टी मिले, मौका मिले तो हम घूमने चले जाएंगे। बच्चों को बहुत शौक होता है कि लाल किले हमें घूमने, लाल किला जाना है, घूम कर आना है वहां पर। लेकिन ये अगर आप सोच रहे घूमने के लिए तो आज की तारीख नोट कर लीजिए, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक लाल किला बंद रहेगा। सो आप अगर सोच रहे हैं भैया लाल किला जाएंगे हम घूमने के लिए, वहां बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं, तो ये 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जब ओपन होएगा तब आप जाइएगा, एंजॉय करिएगा, बच्चों के साथ घूमिएगा। जो दिल्ली से मुझे सुन रहे हैं या फिर और जगह से सुन रहे हैं और लाल किला जाने वाले, प्लानिंग बन रही है कि भैया इस संडे हम चलने वाले हैं घूमने के लिए, तो मत जाइए। आज की तारीख नोट कर लीजिए, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक लाल किला बंद रहने वाला है श्रोता। और कहीं घूमने की प्लानिंग बनाइए फिलहाल तो। चलिए जी, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार गाना है भैया, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोता और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कुछ मैसेज आ गए हैं, बबली अनजान, गीता कश्यप, ललिता जी एंड लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल है। क्या बात है जी। फिलहाल अजीत जी का अगर अजीत जी मैसेज करते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि जी मजा आ गया, आपने जो पीतल नगरी के बारे में बताया है, पीतल के उद्योग बनते हैं, साथ ही साथ यानी कि जो हाईवे फ्लोर फिर से कनेक्ट होने जा रहे हैं, दिवाली के मौके पर हमें तोहफा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेती रीना मैडम, आपकी जो बातें है ना बड़ा फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सच बताऊं। मतलब आपके शो का मैं इंतजार करता रहता हूं क्योंकि आपकी बातें ऐसी होती है ना, सुनकर जो भी टेंशन होता है बिंदास हो जाता है। क्या बात है जी, आप मुझे लगता है कि ऑफिस से प्रेशर लेके तो नहीं आते आप सर, थोड़ा सा ओहो दिमाग कूल रखना होता है जी। ठीक है, देखिए ऑफिस की बातें ऑफिस तक, घर की बातें घर तक, और एंजॉय करिए, एक लाइफ है उसको एंजॉय करिए, हर दिन को एंजॉय करिए। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, पायल जी का कहना है कि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, लाइन पर से कनेक्ट होती हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका शो और गाने जो बैकग्राउंड में आप बजाती हो ना कभी कभी मैडम, उसे रिपीट कर दिया करो प्लीज, बहुत अच्छे रहते हैं वो। ओके जी, ओके डन। अगले पूजा जी का मैसेज आता है, गुड इवनिंग पहुंचाती, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, लैला में लैला। शाहरुख खान, सनी लियोन और पनवी पांडे, ओहो

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो, गुड वाली इवनिंग है मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओ, दिस साइड आर्जेरीना फिर मुरादाबाद 89.6 और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके हैं श्रोताओ। और कहते हैं ना, एक गिलास दूध सिर्फ यानी कि हम सेहत का दूसरा नाम मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर उसी दूध में मिलावट घुल जाए तो क्या वो ताकत देगी या हमें बीमार करेगी। दोस्तों, दूध जितना सफेद दिखता है उतना ही साफ होना भी जरूरी है ना। सिर्फ रंग देखकर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मिलावट हमेशा नजर नहीं आती लेकिन उसका असर शरीर पर जरूर दिखाई देती है। इसीलिए दूध हमेशा भरोसेमंद डेयरी या विक्रेता से ही खरीदे। अगर स्वाद दूध के अगर स्वाद में आपको गंध यानी कि रंग में जरा सा भी शक लगे तो उसे इस्तेमाल करने से बचे। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके पूरे परिवार की सेहत की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। याद रखिए, शुद्ध दूध सिर्फ स्वाद नहीं, स्वस्थ जीवन की पहचान। जागरूक बनिए, मिलावट को ना कहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई और समझौता नहीं होता। देखिए, अब रोजमर्रा की यानी कि हमारे दूध, जिसके बिना सुबह की शुरुआत नहीं होती है, शाम को नींद नहीं आती है उसके बिना। अब उसी में कोई भी, आज के टाइम में कोई भी भैया खाना ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा फ्रूट्स ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। इसीलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होता है भैया। इसीलिए जो भी आप खरीद रहे हैं जरा सोच समझ के खरीदिए, चमक धमक पर बिल्कुल मत जाइए कि ये बड़ा साफ है, बड़ा क्लीन दिख रहा है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा। वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो असर दिखाएगा ना, उस वो सीधा आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। इसीलिए जरा सोच समझकर कोई भी चीज आप बाहर की लेते हैं तो उस पर भरोसेमंद इंसान से खरीदिए, क्योंकि दूध के बिना, देखिए अब भैया बहुतों को रात को नींद नहीं आती दूध के बिना। सच में जब तक दूध ना मिले नींद कतई नहीं आती है। अगर आप उनमें से हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, जागरूक बनिए। अगर आप जागरूक बनेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिलहाल आप मैसेज करके बता सकते हैं अगर आप दूध पीकर रात को सोने के दीवाने हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी अगर दूध में अगर ये चीजें आप मिलाते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। अगर आप रात को दूध पीकर सोने के शौकीन हैं तो जरूर मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और कहीं नहीं जाएंगे जी, थे नहीं गा। बहुत ही शानदार गाने के बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए जी, साथ ही साथ विक्की सागर जी का मैसेज आ गया है, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग।

0: वी मिस यू कैटरीना।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय हाय हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ और इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 31 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख 15 जुलाई और यानी कि क्या है जी 17 जुलाई को एक बहुत ही बड़ी बेहद राहत वाली हमें खबर मिलने वाली है। यानी कि क्या है वो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जुलाई को दूसरे यानी कि स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यानी कि नई प्रीमियर ट्रेन का नाम यानी कि संत रविदास एक्सप्रेस रखा जाएगा, जो कि यूपी की धार्मिक नगरी वाराणसी से पंजाब यानी कि अमृतसर को जाएगी जी। यानी कि इसकी हरी झंडी दिखाने वाले 17 जुलाई को, जिसका वंदे भारत है उसमें स्लीपर वाला है जी, आराम से आप सो कर जा सकते हो। देखिए अगर आप देखिए वंदे भारत में अगर आपने सफर नहीं की तो माय गॉड बिल्कुल करना चाहिए जी, बहुत मतलब इतना मजा आता है ना सच में आपको। देखिए टिकट तो महंगे हुए हैं जी, लेकिन फैसिलिटीज ओ माय गॉड बहुत ही शानदार वाला है। अब फिलहाल वो जो अब स्लीपर वाला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप आराम से लेट कर जाएंगे लेकिन पैसे उतने ही लगेंगे भैया डबल वाले। हाँ जी, मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं नहीं सर, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी मेरे की तरह कंफ्यूज हो गए क्या? गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? अच्छी जानकारी के साथ साथ सॉन्ग भी अच्छे प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच जी। एंड अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनके कहने की मजा ही आ गया जी, अब यानी कि वंदे भारत स्लीपर वाला स्टार्ट हो जाएगा जो कि वाराणसी से अमृतसर को जाएगी। और मुझे वंदे भारत में ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत पसंद है आपको, पैसे ज्यादा है मुझे लगता है कि चलिए इधर भेज दीजिएगा। चलिए जी, फिलहाल इसके बाद लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क सवाल। कड़क सवाल अगर सुनना चाहते हैं तो कान की जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ रेडियो की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी जी, बिल्कुल सुनने की शक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ानी पड़ेगी। चलिए जी, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं। समय की बात करूं तो 6:34, अगर आपने चाय नहीं पिया है, चाय की तलब हो रही तो बिल्कुल अदरक वाली चाय बना के पीजिए। फिलहाल गर्मी चाय कितनी भी हो, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गर्मी ओ माय गॉड वाला है।

तो जी हरियाणवी गाने सुनने के बाद तो भैया डांस करने का मन कर जाता है, बिल्कुल बिना डांस करे तो रह ही नहीं सकते आप। डिसाइड आरजेडी ने एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 6:39 हो चुके हैं और आप सभी के बीच लेकर आ गई हूँ मैं क्या कड़क सवाल। हां जी, क्या होने वाले कड़क सवाल का कड़क आंसर सुनिए जरा आखिरकार। ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ जी कान की बत्ती खोल लीजिए, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हां जी, तो आज के कड़क सवाल ये है कि एक गुफा 32 चोर, दोनों ऊपर नीचे शोर, बताओ क्या है आंसर इसका। ध्यान से सुनिए वंस अगेन, एक बार और रिपीट करते हैं जी, हम आराम से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, हौले हौले बोलेंगे जी। एक गुफा 32 चोर, दोनों ऊपर नीचे शोर, यानी कि ऊपर नीचे शेर है भैया। बताओ ये क्या है इसका आंसर। कड़क सवाल का कड़क आंसर क्या होने वाला है सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896। देखिए भैया आंसर तो आ चुके हैं लेकिन कोई गलत लग रहा है कोई सही लग रहा है, देखिए आप तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है जी, बिल्कुल सही आंसर देना है, सही आंसर के साथ आपने कनेक्ट हो जाना है जी। अगर आप कहते तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, आखिरकार गुफा भी उसमें बताई गई है, सोचिए जरा, सोचने वाली बात है कि एक गुफा 32 चोर, दोनों ऊपर नीचे शोर, बताओ क्या है इसका आंसर। चलिए जी आप सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए हर गाना आप सभी के बीच हरियाणवी ट्रैक सुनते हैं जी। ओ हट जाता वो, जो पहले के ताऊ जी थे भैया वो डांस नहीं करने देते थे लेकिन अब ताऊ जी भी पूरे बवाल हो चुके हैं। चलिए जी फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, अपने आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहो जी। समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके श्रोताओं, और आज यानी कि आप सभी ने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भैया, दोबारा नहीं मिलने वाली है, इसीलिए एंजॉय करिए, हर एक पल को एंजॉय करिए। और आज देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और मूवी है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपने देखी होगी तो वेल डन, नहीं देखी होगी तो दोबारा देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस मूवी को 15 साल पूरे हो चुके हैं, सो इसी की याद प्यार भरी। भैया देखिए, कोई भी मूवी अगर जब सक्सेस हो जाती है और 15 साल पूरे कर जाती है तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना जी। बिल्कुल, फिलहाल अभी तो हम मैसेज के सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और एक बार और देखिए, आपके पास अभी गोल्डन चांस है सोचने के लिए और मैसेज करने के लिए। सो आज का कड़क सवाल ये है कि देखिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, आंसर अपने आप निकल जाएगा जी। तो एक गुफा 32 चोर, दोनों ऊपर नीचे शोर, बताओ आखिरकार है कौन।

0: पकड़ के लाओ उसको।
1: चलिए जी, फिलहाल एक गुफा से उसको 32 चोर है, और 32 चोर कैसे हो सकते भैया, एक गुफा में भी 32 चोर ऊपर नीचे करते हैं लड़ाई। कौन है वो, सोचिए। अभी आपके पास वक्त और समय है, फिलहाल गाना सुनते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसके बाद आप सभी के मैसेज शामिल करने वाले श्रोताओं।

बिल्कुल जी, दो पल भी मिले वो भी हमारे लिए बहुत होता है, लेकिन बस उसको एंजॉय करना करिएगा। आई डिसाइड आरजेडी एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। 6:53 हो चुके श्रोताओं, और आज का कड़क सवाल यही है कि एक गुफा के 32 चोर दोनों ऊपर नीचे करे शोर, आखिर का कौन है भैया ये? चलो इसको पकड़ कर लाते हैं जरा। हाँ जी, प्रिंसेस जी का मैसेज आता है हमारे पास। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। बिल्कुल जी, आप आइए स्टूडियो, बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि लड़कियों की बातें कभी खत्म नहीं होती है। और इनका कहना है कि राइट आंसर है माउथ। ओ माय गॉड, और एक और सेलिब्रेशन का दिन है भैया इनके घर में, क्योंकि इनका कहना है कि भैया भगवान की कृपा से इनके घर में बेटा हुआ है, और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बहुत सारा हमारी रेडियो की टीम की तरफ से। सेलिब्रेशन तो बनता है जी, अब आ जाइएगा हमारे स्टूडियो, एंजॉय करेंगे, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि पार्टी तो अब आपसे लेनी लेनी है। आपने बोला था कि हम आएंगे आपके स्टूडियो विद द फैमिली के साथ, तो अब आपको हमारा स्टूडियो तो आना ही पड़ेगा। चलिए जी, कांग्रेचुलेशन, भगवान की कृपा से आपको बेटा हुआ है, तो थैंक यू। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो, हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्तिशो में, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया है जी, गाने बिंदास प्ले कर रही हूँ। ओके जी, थैंक यू। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है भैया चाय पी लीजिए, मौसम भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है भैया, अभी तो धूप निकली थी बहुत तेज। और इनका भी कहना है की माउथ है राइट आंसर। ओ माय गॉड, झुमके पर जिया ललचे, फिलहाल जिया नहीं ललचाते, गाने पर ठुमका लगाते हैं। और ये हमारे पास राइट आंसर आता है, विक्की सागर जी का कहना है कि हरियाणवी गाने सुनकर आनंद आ गया है। हरियाणा जी का जब भी शो आता है आनंद ही आनंद आ जाता है, तो हरियाणवी गाने आप प्ले करती हो जी, थैंक यू सो मच। और इनका कहना है कि 32 दांत की गुफा, यानी कि राइट आंसर होता है दांत। ओके, ये हमारे साथ कनेक्ट होती है बबली अनजान, गीता कश्यप, ललिता जी, इनका कहना है लक्ष्मी कश्यप जी, इनका कहना है कि राइट आंसर होता है 32 दांत। ओके, 32 दांत, ठीक है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो,

0: राइट आंसर होता है मुंह, यानी कि माउथ, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, मुंह ही गुफा है। ओके जी, 32 दांत का छोड़ है, क्या बात है जी। राधिका जी कनेक्ट होती है, लेकिन लगता है आज आप राइट है या रॉन्ग है, आई डोंट नो। अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर है दांत। फिलहाल भैया और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, मैसेज भी बहुत जरूरी है जो कि अक्सर मैं भूल जाती हूँ। ये हमारे साथ सृष्टि कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि टीथ यानी कि दांत।
1: जी तेरी कलमियां लिखेगी तो प्यारे काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पे रुमाल टच।
0: खुशी हमारे साथ लाइन पार से कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि राइट आंसर है दांत। ओके हाय मैम, आई एम अंकित फ्रॉम मुरादाबाद, आपका ओल्ड लिसनर। बिल्कुल जी, हमें पता है आप हमारे ओल्ड लिसनर है। और बताइए आपके हाल चाल क्या है, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कैसे हैं? जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम के बाद आप सभी से कनेक्ट हो रहे हैं। और राइट आंसर इनका कहने की माउथ। ओके लेकिन अगर मैं आपको बात राइट आंसर यानी कि हमारे साथ राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए थे उनका अगर मैं नाम बताऊं तो आज के इवनिंग मस्ती शो में राइट आंसर के साथ सबसे पहले हमारे साथ कनेक्ट हुए थे यानी कि विक्की सागर जी। तो विक्की सागर जी आप बनते हैं आज विनर, तो आप ढोकला खा लीजिएगा और आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ढोकला क्यों बोला है। चलिए जी, फिलहाल रीना लेतिया से जाने की इजाजत। फिलहाल आप सभी ने बहुत प्यारा मैसेज किया है, राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए, कुछ कंफ्यूज भी हुए क्योंकि देखिए हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर 32 दांत होते हैं, गुफा भी होती है, गुफाओं के अंदर क्या है, दांत है ना जी। तो राइट आंसर दांत हुआ। तो इसी के साथ रीना लेतिया से जाने की विदा, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह और करेंगे क्या जी, धमाल बवाल, बवाल मचाएंगे जी आरजे रीना के साथ, बस करने के लिए। चलिए जी बाय। अब फिलहाल तो न्यूज का टाइम हो गया है श्रोताओं, इसी न्यूज के साथ मैं लूंगी इजाजत जाने के लिए। और अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी में देखिए ख्याल रखना अपना बहुत जरूरी है, समय समय पर पानी पीते रहिए क्योंकि पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम यही कहते हैं कि भैया फेस पर झुर्री आ गई है, यानी कि समझ नहीं आ रहा कि क्या होते जा रहा है, हमारे बॉडी में अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं। बहुत से कहते हैं कि भैया जब देखो सिर में दर्द हो जाता है, तो सर का दर्द और फेस पर झुर्रियां आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाती है, वो सिर्फ एक ही कारण से होता है, पानी की कमी। अगर आप समय पर पानी पियेंगे तो आपके अंदर कोई भी कमी नहीं होगा और साथ ही साथ वेट कम भी होता है जी, क्योंकि जितना आपकी बॉडी पानी से एकदम फुल मस्त रहेगी ना, उतने आप भी मस्त रहेंगे, वेट अपने आप कम होएगा, ठीक है जी। चलिए, लेकिन फ्रीज की ज्यादा ठंडी पानी आपने नहीं पीनी है, वरना वो बॉडी को भी फ्रीज कर देती है जी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है
0: जी, आकाशवाणी से सुनते हैं न्यूज
2: समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
4: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
4: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
3: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात
5: जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या चीज है?
3: हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: हाँ, तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाक देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। जी, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज कहते हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि आपने देखा है कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है यूरिया, तो इसके लिए हेल्प होगी फार्मर्स की।
1: सो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले सारे आज डिसीजंस थे, जिसमें दो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रेलवेज के भी शामिल हैं उड़ीसा और झारखंड में, जिनसे जो रोड पर भार है वो कम होगा, रेलवेज की तरफ डाइवर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, एनवायरमेंट को फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, आप आई और आपने इन अहम फैसलों पर, उनकी बारीकियों पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सांझ ढले का। सांझ ढले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।
1: नमस्कार, लखनऊ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 15 जुलाई 2026 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 16, 17, 18, 19 और 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर है मैनपुरी, मथुरा, एटा, हाथरस, मऊरानीपुर, औरैया, इटावा, प्रयागराज, खागा और कौशाम्बी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, फतेहगंज पश्चिमी, रायबरेली, रामपुर, फूलपुर, फिरोजाबाद, गोरीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, आगरा, फतेहपुर बाराबंकी, महमूदाबाद, बरेली, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़, जौनपुर, बिलारी, पिनाहट, फर्रुखाबाद, जरवल, ललितपुर, कटरा शाहजहांपुर और मुंगरा बादशाहपुर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये शहर हैं जालौन, हमीरपुर, बिजनौर, बाराबंकी, फतेहगंज पूर्वी, भदोही, मोहम्मदी, सीतापुर, अयोध्या, कटघर लाल।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
2: थैंक यू सर,
3: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
2: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
3: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
2: क्या बात है।
3: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
2: जी जी, प्लीज।
3: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
2: ब्यूटीफुल।
3: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
2: वाओ।
3: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
2: क्या बात है।
3: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
2: जी।
3: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
2: हाँ जी।
3: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
2: हाँ जी।
3: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
2: Alright.
3: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
2: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
3: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
2: जी, जी।
3: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
2: जी,
3: हैं।
2: जी, जी, जी।
3: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
2: जी, जी, जी, जी।
3: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
2: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
3: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
2: हाँ जी,
3: तो
2: हाँ
3: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
2: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक।
3: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग.
2: ऑलराइट.
3: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है.
2: अच्छा, okay,
3: जो
2: okay.
3: कम वजन के बच्चे होते
2: हाँ,
3: हैं.
2: जी, हाँ जी,
3: ठीक है. इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन
2: रहता है.
3: बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
2: जी.
3: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है.
2: ओके.
3: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है. कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है तो
2: जी, जी.
3: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह. अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं.
2: ओके.
3: ठीक है. बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी.
2: ओके. डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए.
3: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं. जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: उनको नहीं पता
2: नहीं
3: होता
2: पता
3: है
2: होता
3: वो क्या
2: है.
3: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
2: जी.
3: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले.
2: ओके.
3: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है. जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं
2: हाँ जी,
3: उसमें
2: हाँ
3: हमारे फैट्स होते हैं बाकी चीजें होती हैं.
2: ओके.
3: तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है. तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा. और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है. फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है. फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है. तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं.
2: बहुत ही बढ़िया. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं. डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
3: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना. अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: है ना.
4: के नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यार है.
2: कोई रीजन कोई कारण मतलब जिससे पता.
3: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं. मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं. हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड. कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है. मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है. सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं. तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है. ठीक है. कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है. कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है. कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है. नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
3: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती. तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है. मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है.
2: ठीक है.
3: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
2: जी,
3: है
2: जी, जी,
3: ठीक है. तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें. पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है. मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो. डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को. बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो. ठीक है. और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है. हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं. ठीक है. और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
3: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
2: जी,
3: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: ठीक है,
2: हाँ
3: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 2.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
2: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
3: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
3: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
2: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
3: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
2: हाँ जी,
3: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
2: जी जी,
3: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
2: हाँ जी हाँ,
3: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
2: क्योंकि
3: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से

0: एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है, साथ ही बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तक लगाया जा सकेगा। हालांकि किसी भी अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा। एक रिपोर्ट।
4: इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। साथ ही आवेदक से लेकर सेवा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील के रूप में पहुंच जाएगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण नियुक्त किए जाएंगे और एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी और लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून राजधानी में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, प्रभावी तथा तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2011 के दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदान का अधिकार अधिनियम का स्थान लेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
3: गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है।
5: इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मीनेश सी शाह ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन बसों को PME ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बसें अंतिम गंतव्य तक संपर्क सुविधा बेहतर करेंगी और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
6: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप

0: एक जिज्ञासा, स्वच्छनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवाचार, संवर्धन, कटाई के बाद की तकनीक, सस्टेनेबल पैकेजिंग, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए लंबे समय की साझेदारी बनाना है। साथ ही देश के औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों के सतत प्रयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है। ये पहल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के दैनिक यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें शहर के सबसे व्यस्त रास्तों पर सुबह और शाम के व्यस्ततम समय के दौरान बिना किसी रुकावट के आरामदायक सफर की सुविधा मिल सके।
2: इस प्रस्तावित नेटवर्क के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 समर्पित इलेक्ट्रिक बस सर्विस शामिल हैं। इनमें राजधानी के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर महिलाओं के लिए 30 विशेष बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना और रेगुलर बस सेवाओं में भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि इन रूटों की पहचान उन कॉरिडोर के आधार पर किया गया है जहां महिला यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, जिससे उनकी दैनिक यात्रा और रोजाना आने जाने की जरूरतों को सही और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सीधे जुड़े हुए पैनिक बटन, दिव्यांग जनों के लिए लो फ्लोर रैंप और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया।
1: दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करना शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल से स्कूल तक का सफर आसान होगा, नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी लड़की की शिक्षा दूरी के कारण बाधित न हो। दिल्ली सरकार हर बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जुलाई महीने को पॉक्सो जागरूकता महीने के रूप में मना रही है। इसके अंतर्गत 25 जुलाई को पहली बार बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी दी। श्री सूद ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीधा संवाद होगा। साथ ही पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और संवाद के माध्यम से सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 वर्ष पूर्व शुरू किए गए साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स को अभी तक 2000 से अधिक विद्यार्थी अपना चुके हैं। इस मूल्य संवर्धन कोर्स को DU के 17 कॉलेजों और एक विभाग द्वारा अपनाया गया है। इस अवसर पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में इन सभी संस्थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों ने कोर्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कुलपति ने पाठ्यक्रम की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रसन्न रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विकास टांक आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उपस्थिति में श्री टांक ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं का कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित दिल्ली की नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रदान करने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को यूथ फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम, विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, आईटीआई को अपग्रेड करने, एआई और रोबोटिक्स आधारित लर्निंग और सीएम श्री स्कूलों में आईसीटी लैब्स जैसी पहलों के जरिए सशक्त बना रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत टेक्स के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मथुरा रोड, भैरव मार्ग और आसपास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रोकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। इन सड़कों पर गलत तरीके से पार्किंग करने और निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ISBT, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यातायात पुलिस ने नागरिकों से रिंग रोड का उपयोग करने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली के हौज खास में कल आयोजित होने वाले 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुमचंद मार्ग और गौतम नगर रोड पर यातायात बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से मुख्य सड़कों और जुलूस के रास्ते के पास गाड़ियां पार्क करने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान कल 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में हरियाणा ई वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई वाहन नीति 2022 में दिल्ली की तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने में मुफ्त साइकिल मिलेगी। और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टैक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहित चौहान।

0: कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
1: हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे आरजे आनंद को, और आज का सेशन बहुत ही खास है, बिकॉज आज स्टूडियो में ना मैं अकेला नहीं हूँ। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग है ना वो बड़े हैपनिंग है, उन्होंने आते ही माहौल को जो है बड़ा कूल बना दिया। वेल, आज की बातों को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आज बड़ी स्पेशल होगी। उनमें से एक ऐसा है जिसको ऑफकोर्स आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने कभी सुना ही नहीं होगा मुरादाबाद में। आज पहली बार आप सुनोगे हमारे रेडियो के थ्रू, ऑफकोर्स यार, क्योंकि जब नई नई चीजें रेडियो पे आती है तो बहुत मजा आता है। और आज इसमें सबसे बड़ा योगदान इन भाई साहब का है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन है ये, इनकी आवाज ऑफकोर्स आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए ताली, और अपने लिए भी आप बजा लो ताली। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू?
2: आरजे आनंद जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
1: मैं बहुत ही फैंटास्टिक हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, नो डाउट, वो आपको देख के लग ही रहा होगा। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है मैं कितना हैंडसम हूँ, वो तो इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, भले ही आजकल फिल्टर लगा के बैठते हैं, नो डाउट। खैर एनीवे,
2: ठीक है, देखिए आपका तो वर्किंग शेड्यूल है उसके अलावा कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक्साइटेड थे।
1: चार बार मैसेज भेजते हैं, पांचवी बार में ही आते हैं, कमाल की बात है। चलिए कोई नहीं, राघव जी थैंक यू सो मच, आप आए बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ में एक मैडम भी पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हेलो मैम, हाउ यू डूइंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
0: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप कैसे हैं ये बताएं?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी वेल, और इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। प्लीज क्रेडिट इनको दीजिए जो आपको यहाँ लेकर आए। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपको FM मुरादाबाद के स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ही वेलकमिंग माहौल था, आप लोगों ने बिल्कुल आते ही मुझे बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल कर दिया कि माहौल अच्छा था,
1: चला देता हूँ माहौल और कंफर्टेबल वाला हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: मैम आपने जो है अभी थोड़ी देर पहले ऑफ ईयर मैम कह रही थी कि मेरा अंदाज थोड़ा शायराना वाला होता है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ उस स्टाइल में अपना इंट्रो आप दें।
0: जी जी, मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी।
1: डेफिनेटली,
0: कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है, रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, दिल से शायरी है, ये आपका इंस्टाग्राम प्रमोट करने का तरीका था ना?
0: अरे बिल्कुल, इसी से ही तो हम यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पहुंचे हैं।
1: वेरी नाइस, बट एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है राघव जी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है आज। देख लीजिए आपके सामने चेयर पे है, बिल्कुल कट्टू-कट वाली बात होगी आज।
2: नहीं, हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है तो हम भी ग्रो करेंगे ना।
1: क्या बात है, ऐसी सोच अगर हमारे यूथ की हो तो भैया मुझे लगता है फिर तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन क्या 100 मिलियन भी हो जाएंगे,
0: सब फॉलो करने लगेंगे।
1: एब्सोल्युटली, अच्छी बात है ना, रेडियो भी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में फॉलो कोई करता नहीं है वैसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सच बात है,
2: नहीं ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में फॉलो करता है। आरजे आनंद को कौन फॉलो नहीं करेगा?
1: अरे भैया हम भी राघव जी को फॉलो कर रहे हैं, आजकल फॉलोवर इतने बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहे हैं आजकल,
0: हर वीडियो पे 1 मिलियन।
2: अरे नहीं, हर वीडियो पे नहीं, लेकिन दूसरी वीडियो
1: सच हो जाए यार, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल डेफिनेटली। तो गाइस आप सुन रहे हैं ना माहौल कितना हैपनिंग वाला हो रहा है, तो आज का ये सेशन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने देगा। वेल मैम आपने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैं राघव भाई से डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहूंगा। राघव भाई पहले तो ये बताओ आप इतने दिन पहले कहाँ थे? जब मैं आपको बुला रहा था आप तब आए नहीं, अब अचानक से आपका जो है यहाँ पे आवागमन हो गया।
2: थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, और ऐसे नहीं है कि
1: हमारे लिसनर यार आपसे नाराज हो जाएंगे, आप ऐसे नाराज मत किया करो।
2: मैं पंक्तियां लाया हूँ उनको मनाने के लिए,
1: जरा दो पंक्तियां मैं चाहूंगा जरूर।
2: आपने कभी इंट्रोडक्शन की बात की तो उसमें मैं बस 2 लाइन है उसको कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर, जितने मुझे सुन रहे हैं उनके लिए खास, आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है।
1: वाह क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ मैम आपके बारे में थोड़ा सा जानने चाहेंगे हमारे लिसनर्स भी, और मैं भी जानना चाह रहा हूँ आप क्या करती हैं अभी, प्रोफेशनली क्या चल रहा है, आप मुरादाबाद से हैं कहीं और से बिलोंग करती हैं?
0: नहीं नहीं, मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और मैं फिलहाल मुरादाबाद में पढ़ाई के सिलसिले में आई हुई हूँ। फिलहाल मेरा 3rd ईयर चल रहा है MBBS का, बट अगले महीने में फाइनल ईयर में होंगी MBBS के, क्योंकि फिलहाल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हाँ जी, मैं इसी चक्कर में मुरादाबाद से आई हुई हूँ।
1: अच्छा, मुरादाबाद आके कैसा लगा आपको?
0: यार शहर तो बढ़िया है आपका मुरादाबाद, रायपुर से तो हम क्या कहें, थोड़ा
2: मुरादाबादी दाल जलेबी खाई कि नहीं आपने?
0: खाई okay. अच्छी थी, अच्छी थी, बाहर ही खाई क्योंकि मैस में तो समझ नहीं आई थी तो बाहर जरूर ट्राई की थी। नहीं बढ़िया है, हर संडे हम आते हैं बाहर,
2: मैस के तो दाल क्या वो तक खाना भी समझ नहीं आता।
0: मैस छोड़ ही देते हैं ना, मैस की क्यों बात करनी, बाहर इसलिए हम हर संडे आते हैं।
2: मैंने सुना है कि MBBS का मैस बाकी अदर कोर्सेज के मैस से थोड़ा बेस्ट होता है।
0: हाँ थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, थोड़ा पनीर वनीर ज्यादा मिलता है।
1: क्या बात है, तभी मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा हो जाता है।
2: नहीं, इनके नोट की गड्डियां भी मोटी होती है,
1: मानना पड़ेगा भाई ये बात। मुझे लग रहा है कि राघव जी ना नोट की गड्डियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं,
0: उनका थोड़ा अलग
1: है ना फोकस। थोड़ा मैं चाहूंगा फोकस अपना शेरो शायरी की तरफ रखे आज तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं सिलसिला यहाँ पर शुरू करूंगा गाइज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस एंट्री करेंगे एंड फिर उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: चाहिए।
1: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, सुन रहे हैं आप आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ऑफ कोर्स आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, मुझे भी लग रहा है यार, क्योंकि इतने प्यारे लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आप उनको सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आपको भी। मुझे भी आ रहा है, स्पेशली मजा इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि वो बैठे बैठे हंस भी रहे हैं और अपने दिल की बात कहने के लिए बेकरार भी है। तो बिना किसी देरी के माइक जो है उनकी तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। तो माही जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे लिसनर्स को आप कुछ सुना दें ताकि उनकी शाम और खूबसूरत हो जाए।
2: तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी शायरी सुना चाहूंगी और ये
1: प्यारी सी है,
2: प्यारी सी है, जैसे मैं प्यारी सी हूँ, शायरी प्यारी सी है।
1: राघव जी,
2: तो मैं कह दूं अगर तो मान जाओगे क्या,
3: मान जाओगे क्या,
2: मैं चुप भी रहूं अगर तो जान जाओगे क्या, मैं कह भी दूं अगर तो मान जाओगे क्या, मैं चुप भी रहूं अगर तो जान जाओगे क्या। और माना हम मिलते नहीं है अक्सर, मगर कर दूं आंखें बंद पीछे से तो बिना सुने बिना देखे पहचान जाओगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है आपका इतना खूबसूरत अंदाज है कौन नहीं आपको पहचानेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी राघव जी।
3: कर दूं आंखें बंद पीछे से
2: तो बिना सुने बिना देखे पहचान जाओगे।
1: क्या बात है, ये मैम आप खुद ही लिखते हैं?
2: मोस्टली खुद ही लिखती हूँ, जो नहीं लिखी होती हूँ मैं बता देती हूँ कि ये मैंने।
1: ये है असली कॉन्टेंट क्रिएटर जो डिजर्व करते हैं बिग शाउट आउट। बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आया आपको ये लिखने वाला थॉट और कब से आप कर रही हैं?
2: मैं लिख तो 7-8 साल से रही हूँ। पहले मैं सिर्फ देखा करती थी जो राइटर्स आते थे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना बढ़िया लिख रहे हैं, मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने बस उन्हें देखकर सोचा कि ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करा, खुद ही सीखा, खुद ही थोड़ा गड़बड़ भी की बहुत सारी, बट फिर करते करते अब तो 7.5 साल हो चुके हैं लिखते हुए। तो हाँ जी, तो अब आ चुका है, एक लय बन चुकी है कि हाँ क्या करना है क्या लिखना
1: है। अब आंख मीच के भी लिख सकते हो।
3: आंख मीच के सोच सकते हैं, लिखेंगे तो आगे।
2: चलो आप भी शब्द शब्द बोलने लगे, क्या बात है।
1: राघव जी ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गाइस आप जो है इनसे अलर्ट रहिएगा, मुझे ज्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। वेल मैम, डेफिनेटली आपके पास वापस कम बैक करेंगे। राघव भाई मैं चाहूंगा आप भी जो है इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें। आप भी वो एक चुटकी सिंदूर कुछ सुना रहे थे मुझे, तो उसको आप ऑन ईयर सुना डालो।
3: एक चुटकी सिंदूर, ओके। तो वैसे तो मैं हार्ट ब्रोकन पीस ही लिखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ये कह लिए जीवन में एक मोड़ आया था, तो तब लिखा था कि कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना।
1: वाह,
3: कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल के जुबान पे रखना। कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल कर जुबान पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना।
1: वाह,
3: बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना। ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, तुम बस मेरे नाम का सिंदूर लगा के रखना।
2: क्या,
3: तुम
2: क्या,
3: बस मेरे नाम का सिंदूर लगा के।
1: अब ऐसा ना हो कि इस बार जो सुन रहे हैं वो सब सिंदूरी लगा के बैठ जाए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
3: ये सबके लिए नहीं है, बस किसी के लिए।
1: मैजिकल लाइन है, बट बहुत ही बढ़िया, आपने मजेदार सुना दिया।
3: थैंक यू,
1: शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है यार, मुझे लग रहा है कि सेशन भी कितना बढ़िया होगा ये। तो मैं चाहूंगा कि दो आमने सामने ऐसे धाकड़ लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब कुछ बातचीत भी होती रहनी चाहिए, ये शेरो शायरी का माहौल तो बना ही रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा राघव जी, आप हर बार 2-3 बार यहाँ मेरे साथ तो 2-3 बार अकेले आए हो, आज मैम को कैसे बुलाए, कहाँ आपसे इनकी मुलाकात हुई?
3: नहीं, एक्चुअली हम एक जगह परफॉर्म कर रहे थे, तो वहीं पर ही मैम से मिलना हुआ था और जस्ट दिमाग में आया कि हम कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे इंस्टा के लिए। और कुछ पोइट्री पीसेज ऐसे होते हैं ना कि जिनको सुनकर लगता है कि इस पोइट्री के साथ शायद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों ना पोइट्री के साथ साथ जो पोएट है उनके साथ भी कनेक्ट किया जाए, उनके साथ जुड़ा रहा जाए। और अब आप एक ही शहर में है तो चाहेंगे कि एक कम्युनिटी में है तो जुड़े रहें।
1: Absolutely.
3: तो बस इसी वजह से मैम से मिलना हुआ था और आज हम यहाँ पर हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना उसको आर्टिस्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज आपकी जब एक कम्युनिटी होगी, एक यूनिटी होगी, तो वो काम और भी बेहतर लेवल पे पहुंच पाएगा। तो गाइज अगर आप भी इनके ग्रुप में आना चाहते हैं तो कैसे आप पहुंच सकते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैं इनके ग्रुप में नहीं हूं, बिकॉज मेरा इज ऑनर नहीं।
2: इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा हम दोनों को और हम बता पाएंगे।
1: मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैम को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जल्दी से फॉलो कर लो उनको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आज की डेट में, मुझे ऐसा लग रहा है आपका। आप इंस्टाग्राम बता डालो।
3: एक बात मैं और बता दूं, इंस्टाग्राम तो मैं ही बता देता हूँ, दिल से शायरी, ठीक है।
1: अरे वाह, आपके लिए
3: मैं आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने लिसनर्स सुन रहे हैं और सिर्फ जो आज माही जैन है सामने बैठी है या हम जो बैठे हैं, हम ही इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, इसके अलावा आरजे आनंद जी हैं, काफी इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं। दूसरा ये कि और कम्युनिटी के साथ भी जुड़कर काम करते हैं, तो वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आपने
1: हाँ
3: बिल्कुल आप किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हुए, आप चाहे वो सोशल हेल्प हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उनके साथ हो, आप पोएट्री से रिलेटेड प्रोग्राम हो, सिंगिंग से रिलेटेड प्रोग्राम हो, ठीक है, तो आप काफी एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है, तो ये बहुत जरूरी है आप अलग अलग लोगों के साथ, एक्चुअली आपकी फील्ड भी ऐसी है ना, तो वो आपको थोड़ा पुश भी करती है इस तरफ।
1: अब देखो राघव कुछ खाने पीने की चीज तो लेकर आता नहीं है, तो सोचा बातों से ही जो है थोड़ा सा कवर अप किया जाए आनंद के सेशन को, तो इन्होंने जो है वो बटरिंग कर दी है, वो मतलब जिसे कह सकते हैं कि 2-4 किलो खून बढ़ा दिया मेरा ये बोल के। सो वेल थैंक यू वेरी मच भाई कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे खुद को भी लगता है कि यू नो हम जैसे जो आज के यूथ है वो कुछ ना कुछ करते रहे यार, है ना, और मेरा मेन पर्पज ये होता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं है, वो इसलिए हम डालते हैं ताकि और भी लोग इंस्पायर हों, जो मेरे जैसे यंगस्टर हैं जो सिर्फ दिल तोड़ते हैं या सिम तोड़ते हैं वो ये ना करें, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, क्यों मैम,
2: है
1: ना, ये सब कुछ करते रहना चाहिए। और बाकी राघव जी से तो हम कुछ ना कुछ आज खा के रहेंगे, आप चिंता ना कीजिएगा। एंड अभी आगे बढ़ेंगे एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद वी कम बैक, आप कहीं मत जाना, सुनते रहिए आरजे आनंद को, ये जो माहौल है वो ऐसे ही बना रहेगा। अगर आप भी कुछ शेरो शायरी करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे डीएम करो फटाक से, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, डू फॉलो मी, फटाफट आओ अपना टैलेंट मुझे मेंशन करो, मुझे डीएम करो, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। फिलहाल एक अच्छा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। थैंक यू सुनने के लिए यार, आगे भी सुनते रहना, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी।

0: Once again, welcome back. You are listening to FM Moradabad 89.6 FM आनंद के साथ हैं आप, जहां पर माही जैन और राघव जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो माहौल को और भी ज्यादा अमेजिंग बना रहे हैं अपनी बातों से, अपनी शेरो शायरी से। और ये धाकड़ तो लिखती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सुनाते भी बढ़िया और बोलते भी बढ़िया, और कभी कभी वक्त इनको मिलता है तो बटर पॉलिश भी बढ़िया कर देते हैं, नो डाउट। वेल, आगे बढ़ते हुए राघव जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। आपने अभी वो सिंदूर वाला तो मेरे को सुना डाला। आप जब भी आते हैं अपनी डायरी लेकर आते हैं, बट आज आप डायरी नहीं लेकर आए, वाई?
1: डायरी नहीं,
0: क्या कह रहे हो आप, सब कुछ फोन में है
1: अब? हाँ बिल्कुल, अब
0: जमाना एडवांस हो गया, मैंने भी एडवांस प्रिपरेशन करके रखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल साहब, डायरी जो है वो अगर हम एक बैठक में बैठे तो ज्यादा अच्छा लगता है,
0: लेकिन तो ये बैठक से कम है क्या यार? स्टूडियो है, चेयर है, चार लोग है, पूरा सेटअप है, और क्या चाहिए आपको?
1: थोड़े से लोग और ज्यादा होते हैं ना, जो पोएट्री भी करते हैं ना।
0: ऑल राइट,
1: अच्छा कनेक्ट होता है।
0: मुझे लगता है आज जी मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा जो इनके माहौल को थोड़ा सा और स्पेशल बनाएंगे। मेरी जरूरत है नहीं, अब ऐसा लग रहा है।
1: नहीं, आरजे आप तो बेस्ट हैं, लेकिन एक बेस्ट आदमी जो हमारे बीच है अभी तो नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा जो पोइट्री करी है एफएम में वो आरजे राज भाई के साथ।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: उनको
0: है,
1: तो हमेशा मिस करेंगे।
0: तो राजी है, नो डाउट यार, हर इंसान का ना अपना एक कहते हैं ना, अपनी यूएसपी होती है हर एक इंसान के अंदर, है ना? तो वो हर कोई तो नहीं ले सकता यार, है ना? वे आगे बढ़ते हैं जी। माही जी, आप अपनी बातों को जरा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकर आइए। एंड आप कुछ चाय कॉफी के ऊपर बात कर रहे थे अभी ऑफ एयर, तो हम उसकी तरफ जो है रुख करेंगे। तो हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी मखमली आवाज में कुछ अच्छा सुनने का, सो प्लीज कुछ सुना दीजिए।
2: हाँ जी हाँ जी, तो अक्सर होता है ना कि लड़कियां कॉफी की शौकीन ज्यादा होती हैं और लड़के चाय के दीवाने ज्यादा होते हैं।
0: नो डाउट।
2: तो उसी पे दो लाइन लिखी थी कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी,
0: वाह,
2: तू पिलाने वाला तो बन।
0: क्या बात है
2: ना, कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी, तू पिलाने वाला तो बन। अरे मैं हर वो वादा मान जाऊंगी, तू निभाने वाला तो बन।
0: क्या बात है यार, फैब्यूलस। ये मतलब दिल से निकली बात बोलती, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट वाली बात जो सीधा जाके टच करने वाली है अभी सारी लड़कियों को। मैडम एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए। ये आपने बोला लड़कियां अक्सर कॉफी की दीवानी होती है और लड़के चाय के, नो डाउट लड़के चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन लड़के इतनी कॉफी की दीवानी क्यों होती है? क्योंकि चाय इतनी ज्यादा पसंद की जाती है हमारे भारत में, तो फिर चाय क्यों नहीं पसंद करती लड़कियां?
2: वो तो आपको उनसे
0: चाय पीती है,
2: हो गई ना चाय की दीवानी, तो अब क्या
1: मेजोरिटी जो है वो गर्ल्स की वो कॉफी को पसंद करती है।
2: एस्थेटिक बोल लो, आई थिंक आधी लड़कियों को एस्थेटिक्स की वजह से भी वो कॉफी बहुत पसंद होता है, बाकी बारिश आने पे तो चाय, नो डाउट।
1: मैं भी अपनी वाली से पूछ के बताऊंगा।
0: भैया मुझे ये बेटर होगा,

0: मैं पक्का इस पे जो है और रिसर्च
1: करूंगा। कॉफी पे चर्चा एक बार करनी पड़ेगी
0: मुझे। चाय पे चर्चा बहुत सुना है,
1: बहुत हो गया, अब कॉफी पे चर्चा करनी।
2: लेकिन जो मैडम ने बात करी ना कॉफी वाली, उसके रिगार्डिंग भी मैंने लाइन लिखी थी, वो भी था कि
0: क्या बात, आज हमें कॉम्बिनेशन मिला के लाया लड़का।
2: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे
0: जी,
2: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
0: वाह,
2: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे। मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे। और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे।
1: क्या बात,
2: तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे।
0: गजब, कमाल है। हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे जहां आरजे राघव को हम आरजे बनाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनकी आवाज फिर आपको और अच्छे से सुनवाएंगे। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा बोला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जन्मदिन हालांकि इनका जा चुका है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रहे माही जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसके
2: रिगार्डिंग एक मेरा थॉट था, हाँ, वो ये था कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे। तो मैंने काफी लोगों को देखा है जिनको जन्मदिन पसंद नहीं आते अपने, मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। लेकिन जन्मदिन का असली मजा तभी है जब आपके जन्मदिन जब सामने वाला खुशी मनाए, तो वो एक स्पेशल होता है। तो वही मेरा एक थॉट था इसके पीछे।
0: आजकल तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है, किसी को अपना बर्थडे याद होना हो दूसरे का तो जरूर रहता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: मुझे ऐसा
1: बिल्कुल
0: लगता है। मैम आप क्या निकाल रहे हैं, कुछ स्पेशल निकाल रहे हैं आप?
1: मैं वही देख रही थी कि कुछ मैं अगर बोल पाऊँ इस मोमेंट में तो।
0: ये तो एक बहुत अच्छी चीज है गाइस कि देखिए यहाँ पर जो है एकदम स्पेशल मोमेंट को और ज्यादा स्पेशल बनाया जा रहा है। सेम चीजें जो है की जा रही है कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा सुना है तो वो भी उसमें कुछ अच्छा सुना रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा।
1: जरूर है, अरे कलाकार लोग हैं ना हम, तो कलाकारों का यही होता है कि वो वही बात हो गई। कलाकारों पे मैं कहूंगी कि दुनिया के लिए मैं नाकारा बेकार हूँ, वजह ये है कि मैं एक
2: कलाकार।
1: हाँ, सबको समझती हूँ, हाँ सबको समझती हूँ, शायद समझदार हूँ, वजह ये है मैं एक कलाकार हूँ।
2: बहुत बढ़िया।
1: और तुम्हारे गम और खुशी दोनों की जानकार हूँ।
0: वाह,
1: सबको जानते हैं हम, समझ आ जाता है ना शायरों को कि अरे अब क्या लिखना है, अब क्या बोलना है, कि तुम्हारे गम और खुशी दोनों के जानकार हूँ, वजह ये है कि हाँ मैं एक कलाकार हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, मजा ये है कि मैं एक कलाकार हूँ और तभी आप यहाँ बैठी हैं क्योंकि आप एक कलाकार हैं, नो डाउट। क्यों राघव?
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया। तो गाइस ये जो सिलसिला है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी अगर आप इन लोगों की शेरो शायरी को और इंजॉय करना चाहते हैं, इन लोगों के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ ये लोग एक्टिव हैं, तो वो तो मैं इनसे पूछ ही रहा हूँ। आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स प्लीज एक बार बताएं अगर कोई आपको फॉलो करना चाहे।
1: जी, मेरा हर जगह अकाउंट एक ही है, @dilseshayari, dil_se_shayari, तो हर जगह YouTube, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट,
0: क्या जहाँ देखना चाहो गाइज हर जगह पे फॉलो कर लो। उन्होंने सब जगह की आईडी बता दी, बाकी राघव भी आप भी बता दो।
2: हमारा तो बहुत सिंपल है, आप अगर सर्च करते हैं इंस्टा पे एडवोकेट राघव गुप्ता, और अगर यूजर नेम की बात करें @adv.raghavgupta।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए गाइज आप इनको फॉलो करते रहिए और अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक ही गाइज, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। यहाँ पर आज बहुत सारी हैपनिंग चीजें चल रही हैं। ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है लोकल फॉर वोकल, अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं ना उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म आरजे आनंद हमेशा आपको देता है ना। अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं, अगर आप कुछ अच्छा बोलते हैं या आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है व्हाटएवर, आप उसको हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना टैलेंट 9837896896। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप अपना टैलेंट बताइए। हो सकता है नेक्स्ट वीक आप हमारे साथ हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए है। जरूरी नहीं है कि आज यहाँ पर सिर्फ माही है या राघव है, आप में भी बहुत सारी ऐसी माही होंगी, बहुत सारे राघव होंगे जो चाहते तो हैं कि हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, बट एक्चुअली मिल नहीं पाता है। तो एफएम मुरादाबाद है ना आपके शहर का लोकल देसी रेडियो जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ आके अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। एक अच्छा गाना भी आपने सुना, यहाँ पे राघव और माही मेरे साथ हैं। एक और बहुत प्यारी सी लड़की है बट वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, अभी सिर्फ बोलने के लिए दो ही लोग यहाँ पर है। तो आप सभी का वंस अगेन वेलकम। आई होप आप लोगों को एंजॉय लगा होगा। कैसा लगा टेलेस आप ये बताओ?
1: अरे बहुत मजा आ रहा है सर, पता भी नहीं चला कि आधे घंटे हो गए। जब आपने बताया आधे घंटे हो गए तब पता चला कि अरे इतना टाइम हो गया।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, वक्त का पता नहीं चलता।
0: मजा तब आता है ना जब जहाँ पे आप हो वहाँ पे माहौल किस तरह का है।
1: हाँ।
0: वो बहुत मैटर करता है। राघव जी आप बताएं।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज ऑलवेज कि मैं तो काफी बार आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार इस बार न्यू गेस्ट हैं तो उनके साथ भी काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा हम पहली बार मिल रहे हैं।
0: और मुझे ऐसा लगता है चीज होनी भी नहीं चाहिए, आपकी वाइब भी तभी मैच होती है जब आपको ऐसा लगे कि यार हम कितने टाइम से जानते हैं दूसरे।
2: बिल्कुल,
0: वो चीज एक अलग ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेशन जो है ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है जहाँ पर हम सभी को बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ स्पेशल हम सुन के जाएंगे जो आप हमारे लिसनर्स को जाते जाते सुनाना चाहती हो, या राघव जी जो आप लास्ट में कुछ कहना चाहें स्पेशल। पहले आप ही से शुरू करेंगे मैम माही जी, मैं चाहूंगा आप कुछ स्पेशल सुनाएं।
1: बहुत ही अभी प्यारी प्यारी बातें हो गई थी तो अब मैं उस बात पे आऊंगी कि अब बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी की किसी ना किसी से अब बात नहीं होती है, तो उस पे ही है अब बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। कभी शाम याद आती है तो कभी यादों में मेरी रात नहीं होती। अब जिक्र भी तेरा खुद से मैं कम ही करती हूँ। अब जिक्र भी तेरा मैं खुद से कम ही करती हूँ। हर दर्द को लफ्जों की सौगात नहीं होती। जो टूट के बिखरे थे, जो टूट के बिखरे थे वो भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे खैरात नहीं होती। हम इश्क में हारे थे, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, मगर माही हर हार इतनी आसान नहीं होती। और कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, हर मोहब्बत की मंजिल आखिर मुलाकात
0: मुलाकात क्या बात
1: बहुत ही
0: बढ़िया। लेकिन हमारी मुलाकात बैक टू बैक होती रहेगी, डोंट वरी मैम। आप जब भी आपको लगे कि हमें कुछ स्पेशल सुनाना है और पूरी मुरादाबाद को सुनाना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल यहाँ पर पहुँच सकती हैं। स्टेशन आपको पता है, एड्रेस आपको बता ही दिया है राघव जी ने, तो अब तो आप डेफिनेटली पहुँच सकती हो। वेल आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। राघव जी आप क्या सुनाना चाहेंगे?
2: एक पोइट्री पीस है, काफी टाइम मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि अपने दिल को और नहीं दुखाएंगे, अपने दिल को हम और नहीं दुखाएंगे, हम अपनी आंखों को दरिया नहीं बनाएंगे।
0: क्या बात है?
2: रोज दिन गिन गिन कर काट देंगे मगर तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे।
0: क्या बात है?
2: तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे, शहर भर में तेरी जान पहचान हुई तो फिर किसी शख्स से ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, और दबी हुई बात मैं जुबान पर नहीं लाता, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे।
0: बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत यार।
1: पे एक लाइन में कहना
0: चाहूंगा,
1: किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम, किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम, अरे मुलाकात की बात छोड़ो मेरे मैयत पे तो आओगे ना।
0: कमाल कर दिया भाई, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। क्या शेरो शायरी करी है इन लोगों ने, मतलब बहुत ही मजा आया। मैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सेशन किया। एंड गाइज जाते जाते अगर कोई आपकी तरह ऐसे लिखना चाहता है जिसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ कहाँ से शुरुआत, आप उसको क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगे?
1: पहले तो मेरा टिप यही रहेगा कि आप जो भी फील कर रहे हो वो डायरी में लिखो, डज नॉट मैटर कि वो राइम कर रहा है या उसका मतलब किसी और को समझ आ रहा है कि नहीं, आप बस जो आपके दिल में आ रहा है वो आप पन्नों पे उतार दो, जरूरी नहीं है कि सही है कि नहीं है। और फिर जब आप उतार चुके हो तो उसे रीड करके एक बार समझो और उसे कोशिश करो कि आप फॉर्मेट मिलाओ एक, तो आप जब पहले कुछ से शुरू करोगे ना तो उससे होते होते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो मेरा सजेशन इतना ही रहेगा कि लिखो जो आप फील कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, राइम अपने आप आ जाएगा वक्त के साथ।
0: क्या बात है, लिखने के साथ साथ बोलना भी मुझे लगता है जरूरी है।
1: बोलना तो पहले, हाँ कॉन्फिडेंस का वो बात आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस
0: क्योंकि कैमरे पे हर इंसान आने में थोड़ा डरता है, मतलब बहुत से लोग शाय होते नहीं आ पाते।
1: बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए भी मैं तो पहले यही करती थी, मिरर पे प्रैक्टिस, जो हमेशा से हमारे बड़े कहते आ रहे हैं कि थोड़ा पहले मिरर पे देख कर बोलो, अकेले कमरे में बोलो, फिर किसी एक दोस्त को सुनाओ, फीडबैक लो, फिर ऑडियंस पे आओ, जरूरी नहीं है। और हो सकता है ऑडियंस पे आके भी आप एक बार फंबल कर जाओ, लेकिन एक फंबल एंड ऑफ द डे नहीं है, आप करते रहो प्रैक्टिस और यू विल डू गुड।
0: वेरी नाइस।
2: लेकिन आर्टिस्ट की एक खूबी होती है ना, बहुत सपोर्टिव होते हैं।
0: क्या बात है?
2: अगर आप फंबल कर जाते हैं कहीं या आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो आर्टिस्ट, मैंने देखा है कि सपोर्टिव आर्टिस्ट होते हैं तो वो एक काफी अच्छी चीज है हमारी कम्युनिटी में, मैं ये मानता हूँ।
0: और अगर आपकी तरह कोई अपने अंदर एक चुटकी सिंदूर वाला थॉट छुपा के बैठा है बट वो बाहर नहीं ला पा रहे तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, अगर वो लेखक है और मतलब ये है कि ओपन तो होना ही पड़ेगा, आपको बोलना आना चाहिए चीजों, अपने मन में रख के कुछ, कोई किसी भी चीज का मतलब नहीं है। अभी मैडम जो बात कर रही थी उसमें एक बात ये भी है कि आप बहुत सी चीजें ना खुद के लिए लिखते हैं, लेकिन वो जो आप खुद के लिए लिखते हैं लेकिन आप जब पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो हो सकता है दूसरे को मीनिंगलेस लगे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखना पड़ेगा जो दूसरे को कनेक्ट भी कर रहा
0: है। एब्सोल्युटली,
2: ठीक है। तो इसी थॉट के साथ आपको लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आप ये समझिए कि मैं अगर 3 पोइट्री पीस लिख रहा हूँ तो उसमें से एक ही होगा, या हो सकता है वो एक का भी आधा ही पीस हो जो दूसरे को रिलेट कर रहा हूँ, बाकी वो सिर्फ आपके लिए है, आपके थॉट है वो, ठीक है। तो इस अगर आपको पब्लिक में स्पीक करना है, पब्लिक में बोलना है, ठीक है, तो वहां पर आपको उनके लिए जो वो चाहते हैं वो आपको डिलीवर करना होगा।
0: क्या बात है, ट्रू, 100% बिल्कुल सही बोला। और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ओपन माइक्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इनफैक्ट अब तो सोशल मीडिया हमारा खुद का हमारे हाथ में है, आप जब चाहे जब शुरू कर सकते हैं। तो आजकल मुझे लगता है टैलेंट दिखाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपके अंदर वो होना भी चाहिए, है ना। अगर आपके अंदर है तो आपके पास ऑप्शन है, बस आप अपना कैमरा खोलो, शुरू कर दो। जरूर थोड़ी किसी को पसंद आए, अपनी संतुष्टि के लिए तो कर ही सकते हैं राघव जी।
2: बिल्कुल,
0: क्यों?
2: बिल्कुल सर।
0: अब राघव जी भी यही करते थे, फिर उनके पास एक आइडिया आया, फिर उन्हें वो आइडिया ऐसी जगह ले गया कि अब उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, उनका काम भी बढ़ रहा है और वो काम भी सही दिशा में कर रहे हैं।
2: कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, बस आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाना है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाइज, आप लोग चलते चलते कुछ और कहना चाहते हो? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, कोई मैसेज और जो तुम्हें लगता है रेडियो के थ्रू जाना चाहिए, एक ऐसा मैसेज?
2: हाँ, मैं कह देता हूँ उसे कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो।
0: वाह,
2: उनके लिए है कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी तुम जिसके साथ में रहो। मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी तुम जिसके साथ में रहो। वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम फायदे में रहो। मैं तो यही चाहूंगा,
0: फायदा अच्छा खासा होना चाहिए राघव जी, है ना
2: जी? बिल्कुल, चलिए, एक मैसेज था मेरा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मैसेज नहीं था, एक थॉट था जो जहां तक पहुंचना चाहिए शायद वहां तक पहुंच जाए, तो अच्छी बात है, उड़ते उड़ते। एंड आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली फिर से आएंगे, हमें इंतजार रहेगा। और बाकी थैंक यू फॉर कमिंग गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के हुनर को ना बाहर निकालने का टाइम है, उसे अंदर मत रखो, अंदर रखो रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उसे बाहर निकालो। जैसे कि माही जी ने कहा, अगर आप कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो उसे पन्नों पे उतारना बहुत जरूरी है। पन्नों पे उतारो, फील करो, समझो, उसके बाद कैमरे पे धड़ल्ले से रिकॉर्ड कर दो। क्यों माही जी, है ना? बिंदास करो, आप किसी के लिए मत करो, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करो। बाकी थैंक यू फॉर कमिंग माही जी, थैंक यू राघव जी, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा ब्रो। एंड फिर से जल्दी मिलेंगे, फिर वेरी वेरी सून कुछ नया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इस बार हम कॉफी पे चर्चा करते हैं, अच्छा टॉपिक है, नो डाउट। चलिए, जाते जाते लास्ट में कोई एक गाना जो आप अपनी अपनी पसंद का हमारे मुरादाबादी को डेडिकेट करना चाहते हो, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। देखते हैं लोग कितने फाउंटेन यूज है, कितनी जल्दी अच्छा गाना डिलीवर करेंगे। एक गाना राघव जी जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे चलाऊं,
2: एक गाना मुझे खत जो सॉन्ग है वो
0: खत
1: मैं जस्ट खत बोलने वाली थी, इन्होंने बोल दिया, बट चलो दरखास्त।
0: क्या बात है, तुम लोग की सिमिलैरिटी बड़ी मैच कर रही है, वाओ वेरी नाइस।
1: खत गाना बहुत प्यारा है,
0: मतलब खाली खत इसका नाम है।
1: हाँ जी,
2: खत इसका नाम है,
0: पंजाबी सॉन्ग।
2: उसमें एक लाइन है, कागज के फूल में लाऊं तेरे लिए।
0: कौन सा सिंगर ने गाया
1: है?
2: सिंगर का नाम तो नहीं पता है।
0: ओके, खत न्यू ट्रैक है।
2: हाँ, इट इज अ न्यू ट्रैक और काफी फेमस है।
0: अच्छा, वायरल है। चलो गाइस, ये गाना मैं भी सुनता हूँ।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: आपने सुना है गाना?
1: हाँ जी।
0: कौन सा सिंगर का है?
1: नवजोत नाम है शायद,
2: नवजोत सिंधु।
0: ऑल राइट, तब तो बढ़िया गाना होगा आई एम श्योर। चलिए गाइस, इसी ट्रैक के साथ हम छोड़ के जा
2: नवजोत
0: भाई, मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। एनीवेज, अब जो भी, हाँ हाँ,
2: खत बाय नवजोत
1: आहूजा।
0: ऑल राइट, चलो ठीक है, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे. नो फिल्टर, ये एकदम ओरिजिनल जाने वाला है. जो भी आप लोगों ने बोला है वो सब कुछ आप लाइव सुनेंगे. सो गाइस, अभी के लिए हम लेते हैं यहाँ से.
2: आई एम बिग फैन ऑफ आरजे आनंद.
0: यार आई एम बिग फैन ऑफ यू. मैं भी आप लोग बहुत बड़ा फैन हूँ. और अभी ये फैन फॉलोइंग जो ऐसी चलती रहेगी गाइस, ये मजे ले रहे हैं. फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, खिसकता हूँ. जल्दी मिलूंगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. कुछ अच्छे गाने और आएंगे, आप कहीं मत जाइए. रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. और हाँ, अगर मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाला आनंद के नाम से, प्लीज फॉलो कीजिए. वहां पर भी अच्छी अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ. ऑफिशियल आईडी मिलेगी एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से, वो भी फॉलो कीजिए. वहां पे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहता है. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं एक नए सफर पे कुछ और नए अमेजिंग शोज के साथ. तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. बाय बाय.

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कम्प्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कम्प्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति

0: प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
1: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, तो सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़ाहरीएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
8: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं मुरादाबाद FM 89.6, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, दिल से दिल तक, अखिल के संग। तो हाँ, आज हम लेके आए हैं आपके साथ फिर से वही मस्ती के पल बिताने के लिए कुछ नया चटपटा सा टॉपिक। तो वो टॉपिक तो अभी बताते हैं क्या है, मगर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो कुछ इस तरह की हमारे साथ घटनाएं होती हैं जो हमारे पास दिल से हमारे दिल में आ बैठ जाती हैं, और उन्हीं घटनाओं में से और उन्हीं चीज़ों में से एक बहुत पसंदीदा चीज़ें होती हैं, वो होते हैं हमारे इंडोर गेम्स। तो वो इंडोर गेम्स, हाँ, क्लिक तो कर गए, जैसे लूडो। आजकल तो आपके अपने मोबाइल में भी लूडो और कहते हैं सांप सीढ़ी, या फिर आप कैंडी क्रश के दीवाने, तो बहुत से हैं जो हम इंडोर गेम्स खेल लेते हैं, कैरम बोर्ड हो गया। तो अपने अपने इंडोर गेम्स हमें ज़रूर बताइए और मैसेज करें 9837896896 पे, या कॉल करके भी बता सकते हैं। कोई ना कोई तो स्टोरी होगी जो आपकी इन गेम्स के साथ जुड़ी होगी। इन इंडोर गेम्स की कहते हैं ना, बचपन में जो जो हम शैतानियाँ कर लेते हैं या जो जो गेम्स खेल लेते हैं, वो हमेशा हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी याद में जुड़े रहते हैं। एक शायरी है जो इसी के ऊपर है। कभी लूडो की चाल में प्यार छुप जाता था, कभी कैरम के स्ट्राइकर से दिल टकरा जाता था। आज यादों की बिसात बिछा देते हैं, आज यादों की बिसात बिछा देते हैं, चलिए एक बार फिर बचपन को जी लेते हैं। तो हमारे साथ एक लिसनर हमारे जुड़े हैं अभी, और हमारे पहले लिसनर हैं, और बहुत ही कल भी जुड़े थे, तो आज आप जब हम सब बात करेंगे और जिसने हमारा कल शो सुना था, तो वो ज़रूर बता देगा कि कौन सा लिसनर है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। और ये आज वो नहीं बताएंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर सुना होगा ना कल, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? तो धैर्य धैर्य, एक बात बताना, आज ना आपको ये नहीं बताना है कि आप कौन से स्कूल से हो, ठीक है? आज हमारे जितने भी श्रोता जो सुन रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें जिसने कल ये सुना था हमारा शो, उसे पता चल जाएगा आज हमें भी कि हाँ, इन लोगों ने शो सुना था। तो आज आपके स्कूल का नाम वो लोग बताएंगे हमें मैसेज करके, ठीक है? तो आज बताओ हमारा कौन सा इंडोर गेम आपको बहुत पसंद है, किस गेम के लिए? आप कहते हैं ना कभी कभी अगर घर में बंद होते हैं तो मैं ये गेम खेल लेता हूँ भैया। एक बात बताऊं धैर्य, या तो तुम कुछ खा रहे हो, तुम्हारी एक बात भी पूरी पता समझ में नहीं आई, पता ही नहीं चला कि तुमने फटफट फटफट क्या बोल दिया। थोड़ा सा अपना मोशन स्लो करना पड़ेगा, आराम से फिर से बताओ क्या क्या कहा था। चेस जीतता कौन है? आप जो ये गेम खेलते हो उसमें जीतता कौन है? फिर सबसे ज्यादा जीतता कौन है? आप जिसके साथ ये गेम खेलते हो, सबसे ज्यादा चेस का गेम खेलते हो, तो उसमें जीतता कौन है? आप जीतते हो या आपके साथ जो खेल रहा होता है वो ज्यादा जीत जाता है? मतलब चेस के चैंपियन नहीं हो भी आप? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: कभी अच्छा मिला, कभी अच्छा।
0: क्या तूने किया जादू, क्या बात है। अभी कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था ये तो बता दो आपका पहले। कल तक कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका?
1: जो लोगों को पसंद नहीं है, हिस्ट्री और मैथ।
0: चलो सही है, सही है। आज इस गाने पे ना एक छोटी सी वीडियो बना के भेज देना फिर हमें, डांस करते हुए। गाना बहुत अच्छा है, डांसिंग सॉन्ग है ये पूरा। ठीक है, ओके धैर्य, खेलते रहो, खूब मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों हमारी पहली कॉल ही ऐसी थी जिसमें हमारे दोस्त ने बता दिया कि उसको इंडोर गेम्स बहुत पसंद है, तो आपको भी पसंद ही होंगे, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें या कॉल करें फटाफट और बताएं कोई ना कोई एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है आपके साथ, ताश के पत्तों के साथ या फिर लूडो के साथ। कभी कभी हो जाती है ना, हो एक बाजी हो जाती है, कोई तो बाजी ऐसी होगी जो याद रही होगी। 9837896896 पे। तब तक हम प्यारा सा गाना सुन के आते हैं जल्दी से वापस।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, शहर में चल रही हैं बहुत सारी फेयर्स, तो उनमें से एक फेयर लगने वाली है फ्यूजन्स एंड फैशंस के नाम से, तीज और रक्षाबंधन एग्जीबिशन कम सेल ऑन 9 अगस्त 2026 एट मिगलानी सेलिब्रेशन। आपके पास मौका है एक स्टॉल लेने का और अपनी कहते ना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं गुंजन महेश्वरी जी से, जिनका कांटेक्ट नंबर है 7017150307, या फिर प्रिया अग्रवाल जी से, जिनका नंबर है 7055168585। तो अभी बातें चल रही थी हमारी इंडोर गेम्स की, और हमारे साथ हमारे श्रोताओं के भी मैसेजेस आने चालू हो गए हैं। उनमें से सबसे पहले एक मैसेज आया है अदिति का। अदिति कहती हैं, अखिल जी मुझे लूडो बहुत पसंद है, लॉकडाउन में पूरी फैमिली रोज़ लूडो खेलती थी और आज भी जब भी संडे को मौका मिलता है तो हम सब मिलकर लूडो ज़रूर खेलते हैं। तो क्या बात है अदिति जी, और फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त ही असली जीत होती है, चाहे आप लूडो में कैसे भी हारें या सेकेंड नंबर पे आ जाए, मगर जो आपने टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया ना, वही टाइम आपको हमेशा याद रहने वाला है। जीतना ज़रूरी नहीं था उस खेल में कभी, जीतना ज़रूरी नहीं था उस खेल में कभी, बस सामने तुम बैठे रहो वही काफ़ी है। तो कहते ना, कितनी अजीब बातें हैं कि इंडोर गेम्स सिर्फ गेम्स ही नहीं होते, ये रिश्तों को और भी मजबूत बनाते थे। कभी भाई बहन की नोकझोंक हो जाती है, तो कभी दोस्तों की चीटिंग आपस में चलती रहती है, और कभी किसी खास इंसान के साथ जोड़ी बनाई जाती है कि हाँ भाई तू मेरा लूडो पार्टनर बन जाए या तू मेरे पत्तों में पार्टनर बन जाए। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि अपने फेवरेट पार्टनर के साथ ही खेलते हैं कोई गेम, अगर कोई हमें ताश के पत्तों का गेम खेलना होता है, या फिर कोई भी एक इंडोर गेम में कैरम बोर्ड में अगर हमें अपने साथ पार्टनर बनाना होता है तो कोई ना कोई हम ढूंढ ही लेते हैं कि हाँ यार अगर ये है आज साथ में तो उसके साथ तो ये गेम खेलना ही है। कई बार कोई मेहमान भी ऐसा आ जाता है कि अगर आज ये आएगा तो आज हम पत्तों का या प्लेइंग कार्ड्स का गेम अपना खेलेंगे, तो होते हैं सभी के साथ स्पेशल होते हैं। आप भी मैसेज करें, आप भी अपने साथ की कोई ना कोई ऐसी कहानी बताएं हमें कि जो इंडोर गेम्स के साथ जुड़ी हुई हो। चलिए, हमारे एक लिसनर है जिनसे हम बात करते हैं जो अभी हमारे साथ लाइन पर, छोटी सी बेटी है, एक बच्ची है, और आज देखते हैं क्या कहती है। हेलो दिल से दिल तक, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। क्या कर रही हो आप इस समय?
1: कुछ नहीं, बस बैठी हूँ।
0: बैठी हुई? अच्छा, ये बताओ कि आपको फेवरेट गेम कौन सा, इंडोर गेम आपका?
1: लूडो।
0: लूडो खेलती हो आप?
1: यस।
0: कौन से रंग की गोटी से खेलती हो, कौन से रंग की गोटी रखती हो अपने पास हमेशा? रेड कलर। क्या बात है। और लूडो में जीतती भी हो या हार जाती हो हमेशा?
1: कभी जीत जाती हूँ, कभी हार जाती हूँ।
0: तो किसके साथ खेलती हो, मम्मी पापा के साथ?
1: हाँ।
0: या दोस्तों को बुला लेती हो घर पे?
1: नहीं, पापा के साथ या मम्मी के साथ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बताओ क्या खाया आज, खाना हो गया, डिनर हो गया आपका?
1: अभी नहीं, अभी पापा मिनी मैगी चला के आएंगे तो खाऊंगी।
0: उसके बाद खाना खाओगे आप? चलो वेरी गुड है, पापा के साथ खाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहोगी आप?
1: दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें मेरी मौत
0: याद है। ये पूरा पूरा गाना याद है आपको?
1: कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ।
0: सही है, सही है। अब टेस्ट कब से चालू होने वाले हैं स्कूल में? उसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूंगा, जैसे आप मुझे कॉल करती हो ना एफएम पे, भैया मेरा गाना प्ले कर दो, उसके बाद मैं आपको एक बार कॉल करके कहूंगा बताओ आज कितने मार्क्स आए। ठीक है, बताने पड़ेंगे फिर सच सच में। चलो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी ऑफिस के बाहर से आ रही थी आप? सुबह जा रही थी ऑफिस के बाहर से? चलो ठीक है, एक दिन हम जब हम ओके ओके चलिए, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारी ऑफिस को आप बाहर से देखते हैं तो हमें भी लगता है कि ठीक है भैया, कोई तो हमारे ऑफिस को देख ही रहा है। पक्का पूरा सुनाऊंगा मैं गाना आपको। ओके थैंक यू। देखिए जी, इन्होंने कितना प्यारा सा वेलकम कर दिया और कह दिया गाना पूरा सुनाना। आप पहचान ही गए होंगे, कुछ लिसनर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही करीब हैं और कहते हैं हमेशा गाना जी पूरे सुनाना। तो हाँ जी, हम गाना तो आपका पूरा ही सुनाएंगे और आप ऐसी ही खेलते खेलते गाना भी सुने। और गाड़ी में बैठे तो ज़रूर हमें ट्रैफिक अपडेट्स भी दें, अगर कहीं ट्रैफिक जाम है लोको शेड का पुल पे या फिर स्टेशन के पास या फिर MDA में चटोरी गली में, तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं आज कहाँ पे आपकी गाड़ी फंस गई है। और गाने का एंजॉयमेंट करते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं।

0: तेरा आना लिखा है मैंने, तेरा जाना लिखा है मैंने, मोहब्बत लिखी है मैंने, नफरत लिखी है मैंने, कुछ गीत लिखे हैं, कुछ अल्फाज लिखे हैं, कुछ होश में लिखा है, कुछ बेहोश लिखा है, मगर देख दीवानगी मेरी, खुदा ने तू नहीं तो तेरे जैसा मेरे नाम लिखा है, तेरे जैसा मेरे नाम लिखा है।
1: Ready to master?

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो खूब सारी बातें हुई हैं आज हमारी गेम्स के ऊपर, और सबने बताया भी है कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है इंडोर गेम। हमारे पास मैसेज आया है उन्होंने, अमन जी का। अमन जी कहते हैं रामपुर से कि मेरा फेवरेट गेम जो है इंडोर गेम चेस है, और पापा ने बचपन में सिखाया था और आज उनके साथ खेलना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो होता है कि कभी कभी कुछ गेम्स अपने साथ, जैसे चेस भी उन्हीं से है कि हमें कोई अपना बड़ा सिखाता है, हमें मम्मी या पापा सिखाते हैं, और सीखते सीखते एक लेवल ऐसा आ जाता है कि हाँ, बाद में जब उनके साथ वो शतरंज की चालें चलते हैं, गेम खेलते हैं उनके साथ वो प्रो बन के, तो वो बहुत ही अच्छा फील होता है। और मतलब अमन जी, मैं यही कहूँगा आपसे कि जब आपने बात बोली मैं भी उसमें खो गया कि हाँ, मुझे भी पापा ने थोड़ा सा गेम खेलना सिखाया, इंडोर गेम, और वो इंडोर गेम अगर मैं पापा के साथ बड़े होकर खेलता हूँ तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी। तो सेम, मतलब कहते हैं ना, ये पापा के साथ बिताए हुए आपके पल, ये भी आपको बहुत ही अच्छे लगते होंगे। और ये ना, ज़िंदगी में किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। हमारे पास कहते हैं कि एक समय, ये समय ही जो होता है, कभी कभी इतना समय नहीं मिल पाता कि हम लोग उस गेम को, किसी भी गेम को अपने इंडोर, जो वहाँ फेवरेट इंडोर गेम है, उसे इतना टाइम दे पाएँ या उसके साथ हम इतना एंजॉय कर पाएँ। मगर हाँ, जब वो गेम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़े से भी समय में खेलने को मिलता है, तो वो लगता है कि हाँ यार, आज का तो पूरा दिन बन गया है हमारा। और वो पूरा दिन, मतलब मस्ती ऐसी हो जाती है, वो पूरा पल ऐसा याद रह जाता है कि हाँ, आज हमने कुछ अच्छा ही किया है। हमारी एक कॉलर हैं जो हमसे जुड़ते हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका आशीर्वाद है सर।
0: और क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा।
0: तो आप बताइए, हमारे प्रोग्राम में आज कौन से गेम आपने बचपन में खेले हैं? लूडो ज्यादा खेला है इंडोर गेम में या कैरम बोर्ड?
1: लूडो भी खेला है हमने, मंजे भी खेला है, और हमने फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है। जब चोट लग गई तो हमने छोड़ दिया।
0: चोट लग गई? ज्यादा गहरी चोट लग गई थी?
1: कौन लगी थी ना मुंह पे,
0: तो ज्यादा गहरी चोट लग गई।
1: खेलते थे।
0: तो इंडोर गेम कौन सा ज्यादा पसंद है आपको, ये बताइए?
1: ये
0: लूडो ज्यादा पसंद है या कैरम ज्यादा पसंद है आपको?
1: लूडो बहुत पसंद है, आसान पड़ता
0: है। सही है, सही। तो दोस्तों के साथ खेलते हैं, परिवार के लोगों के साथ ज्यादा खेलते हैं या दोस्तों के साथ? जैसे ही बैठे दोस्त, तब
1: दोस्तों के साथ में भी घर पर आ जाते थे तो परिवार में खेलते थे, पढ़ाई करने के बाद में जब खेलते थे।
0: आज कोई शायरी सुनाएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, आप तो जरूर बुलवा लेते, मन से खुलवा दे आप, ऐसी बात करते हैं वो खुद ही शायरी करेगा इंसान।
0: क्यों नहीं, तो सुनाइए आज अपने मन की।
1: पिक्चर का नाम है दिल।
0: दिल?
1: हाँ।
0: अच्छा।
1: मुझे नींद ना आए,
0: मुझे चैन ना आए,
1: मुझे चैन ना आए, ये गाना है।
0: चलिए ये गाना भी जरूर आपका आज पूरा कराएंगे, मगर आप उससे पहले एक शायरी सुनाइए।
1: अच्छा, शायरी जरूर सुनेंगे साहब।
0: हाँ जी,
1: आप बहुत दिल से जरूर शायरी सुनते हैं, खुलवा लेते हैं दिल से उसकी शायरी, क्या दिल में
0: है। हमारे प्रोग्राम का नाम ही यही है, दिल से दिल तक, तो कम से कम दिल की बातें सुनेंगे।
1: तो दिल के ऊपर ही आज मैं शायरी बोल देता हूँ सर।
0: हाँ जी, बताइए।
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, और शाह गुप्ता शाकिब उल्ला की चारत के पीछे डाले पे थे, और जिला मुरादाबाद से बोल रहे हैं।
0: जरूर बताइए सर।
1: दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी बाबा है तू, क्या है तुझे चाहत से बढ़कर,
0: क्या बात है,
1: मेरी चाहत और चाहत की चिंता है तू।
0: गजब, बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। ये साहब आपने कब की लिखी हुई है, कितनी पुरानी है? अभी अभी ताजा ताजा।
1: हम लोग हमारे शायर थे मास्टर।
0: अच्छा,
1: तो उनके जरिए से हम सीख लेते थे, उनसे ट्यूशन भी पढ़ते थे। में
0: बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी आपने शायरी लिखी।
1: बहुत शायर थे वो, बहुत अच्छे,
0: बहुत ही
1: नाम था और मास्टर थे, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है। तो आज आपने हमारी शायरी ये सुना के आपने हमारा भी अच्छा शो अच्छा बना दिया आज।
1: अच्छा साहब,
0: पक्का पक्का पक्का साहब, दिल के ऊपर ही गाना सुनाया जाएगा उस्मान जी। आज
1: गाना सुना देना, आपकी मेहरबानी होगी।
0: धन्यवाद साहब,
1: बहुत बढ़िया। आप गाना जो है ना प्रोग्राम अच्छा करते हैं।
0: धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कॉल आती है और आप अपने कहते हैं ना दिल से निकली हुई शायरी सुनाते हैं।
1: बात करते हैं।
0: धन्यवाद साहब।
1: अच्छा नमस्कार,
0: नमस्कार उस्मान जी। तो श्रोताओं हमसे जुड़े थे उस्मान जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई और ये भी बताया कि लूडो खेलना उन्हें बहुत पसंद है। जब लोग दोस्त घर पर आ जाते हैं तो एक आध लूडो की चाल तो हो ही जाती। तो ये तो है ही साहब, यही चालें जो होती हैं ना ये यादगार रह जाती हैं कि आज तूने, काश मेरे पे 2 नंबर आया था तो मेरी गोटी अंदर पहले चली जाती। हो जाता है ऐसे ऐसे कई बार, बस वेट करते रहते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पे होती है, घर में घुसने वाली होती है, वही नंबर नहीं आगे देता और सामने वाला अपनी पूरी बाजी खेल जाता है। तो साहब पेशेंस तो आपको कई सारी चीज़ें सिखा जाती हैं कि हाँ थोड़ा सा सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, इतना सब्र किया कि सामने वाला फल ले गया। चलिए साहब कोई बात नहीं, तब तक अपना फेवरेट गाना सुनिए और हमें मैसेज करिए 9837896896 पे, कोई सी भी ऐसी बात जो आपकी छुपी हुई हो इस इंडोर गेम के साथ, आपके पसंदीदा गेम के साथ।

0: அண்ணன் யாரு?
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो अभी हम बातें कर रहे हैं आपके प्यार के गेम की, प्यार वाले गेम मतलब इंडोर गेम्स की, कि जो आपको हो बहुत पसंद। और कहते हैं ना कि आज तो मैं बाजी जीत के ही रहूँगा, दिल की हर बाजी तुम्हारे नाम कर दी, दिल की हर बाजी तुम्हारे नाम कर दी, हर खुशी तुम्हारे नाम कर दी, जीत भी तुम्हारी हार भी तुम्हारी, मैंने जिंदगी की हर चाल तुम्हारे नाम कर दी। अगर आप किसी खास इंसान के साथ कोई भी इंडोर गेम खेलना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा, हमें ज़रूर आप मैसेज करें और बताएं 9837896896 पे कि वो कौन सा ऐसा गेम है जो आप अपने पार्टनर के साथ खेलना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि हर बार उस गेम में वो ही जीते। तो हमें मैसेज करिएगा और हमें बताए ज़रूर। तब तक हम जुड़ते हैं अपने एक श्वेता से, कहते हैं, पूछते हैं उनसे दिल से दिल तक कि आज क्या बताएंगे वो बात। नमस्कार दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
2: जी नमस्कार अखिल सर, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या कर रहे हैं इस समय?
2: जी सर कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, मैंने सोचा आपको कॉल लगा ली जाए, काफी टाइम हो गया बात की हुई आपसे।
1: हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताएं और बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं मुरादाबाद से?
2: जी सर मैं आमिर खान बात कर रहा हूँ, गली नंबर 1 से।
1: आमिर खान कौन से, गजनी मूवी वाले आमिर खान?
2: नहीं सर गजनी मूवी वाले तो नहीं है सर, नॉर्मल है, वो तो बहुत बड़े अभिनेता है नॉर्मल ही है।
1: तो आप मुरादाबाद के आमिर खान बोल रहे हैं हमारे?
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो क्या करते हैं आमिर जी आप?
2: जी मैं बॉक्स बनाने की कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में बॉक्स वगैरह बनती है अलग अलग साइज के, तो उनका साइज वगैरह लेके उसको बनाया जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपका मेरे ख्याल से पूरा ऑफिस टाइम तो ऐसी सब बनाने में निकल जाता होगा आपका?
2: जी जी जी, सुबह करीबन 9 बजे हमारे ड्यूटी टाइम है और शाम को 5:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती है करीबन,
1: तो आपको
2: में भी टाइम लग जाता है करीबन 1-1.5 घंटा।
1: तो आपको कम मौका मिलता है कि आप कोई भी अपना इंडोर गेम खेल सके, और कौन सा फेवरेट इंडोर गेम है आप ये बताओ पहले तो अपना।
2: जी सबसे ज्यादा तो वैसे फिलहाल तो अब मैं गेम नहीं खेलता हूँ, गेम का मुझे शौक है देखने का, खास तौर से क्रिकेट सबसे ज्यादा।
1: क्रिकेट
2: जी क्रिकेट के लिए मैं खास तौर से, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है खास तौर से, तो मैं जरूर ये समझ लीजिए ड्यूटी भी जाना कैंसिल कर देता हूँ।
1: तो उस दिन छुट्टी कर देते हो आप?
2: जी जी जी जी,
1: बोले जब तक इन पाकिस्तानियों की छुट्टी नहीं करूंगा मैं तब तक छोड़ूंगा
2: जी,
1: नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये
2: मैं खाना भी जब ही खाता हूँ जब मैच फाइनल हो जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है साहब, ये मैच तो ऐसा है कि हर किसी के साथ फीलिंग के साथ जुड़ा रहता है
2: जी।
1: तो इंडोर गेम के बारे में बताइए, ये तो क्रिकेट मैच है, कल हम जीत भी गए इंग्लैंड से पहला अपना ओवर।
2: जी जी, जी जी,
1: तो आप इंडोर में बताइए कभी लूडो खेलते हैं कभी मोबाइल पे, या मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं कभी कभी मोबाइल गेम्स पे?
2: जी मोबाइल का तो इतना ज्यादा नहीं है, हाँ हमें बचपन में सबसे ज्यादा शौक रहा, सबसे ज्यादा हमने खेला भी है, और लॉकडाउन में लूडो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है हमारा, और ये कैरम वगैरह।
1: लॉकडाउन में तो लूडो सभी का फेवरेट हो गया था, लूडो और एक हाउसी।
2: जी, जी,
1: अगर
2: जी,
1: कोई खेल नहीं रहा था तो लूडो और हाउसी तो ऐसा चल रहा था लॉकडाउन में कि हर कोई मोबाइल पे लूडो किंग डाउनलोड करके अपने अपने कहते हैं ना पार्टनर्स के साथ लूडो खेलने में व्यस्त था।
2: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर।
1: तो आज कौन सा गेम आप सॉरी कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
2: कोई बात नहीं जी सर, आज मैं अपने फादर की पसंद के लिए उनके गाना सुनना चाहूंगा, फादर का नाम है हमारे राशिद खान, और उन्हीं की आज खास तौर से पसंद पे मैं दोस्ताना मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगा पुरानी, शत्रुघ्न सिन्हा जी का, और उनको आज मेरी तरफ से बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, आज उनका जन्मदिन भी है और सभी लोग उन्हें विशेष कर रहे हैं,
1: तो
2: प्यार दे रहे हैं
1: पूरे मुरादाबाद की तरफ से और हमारे आमिर खान की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी चाहते हैं कि आप ऐसी ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें भी मूवी में दिखते रहें।
2: जी
1: तो सही है साहब आमिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
2: जी ओके सर, धन्यवाद आपका।
1: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे आमिर साहब, जो कहते हैं कि मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है और अगर खेलता हूँ तो मैं लूडो खेल लेता हूँ, और मैंने लॉकडाउन में लूडो खेल खेल के ही अपना समय बताया है। तो चलिए, ये कहते हैं ना कि कुछ गेम्स आपके पास सच में बहुत आपके दिल के करीब होते हैं, उन गेम्स में से ये लूडो और कैरम सच में आज भी कई लोगों के दिलों के करीब बना रहता है और अपना फेवरेट पास टाइम भी कहलाता है। तो दोस्तों, इंडोर गेम्स सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं बल्कि यादें बनाने का एक खूबसूरत बहाना भी होता है। आज ही अपने घर वालों के साथ एक गेम ज़रूर खेल के देखिएगा और फिर हंसिएगा और कहिएगा कि हाँ, कुछ तो कहा था और कुछ अखिल के साथ आज बातें हुई हैं दिल से दिल तक। तो गेम तो एक छोटा सा बनता ही है। जाने से पहले एक फाइनल शायरी आप सभी के लिए। रिश्तों की बिसात पर मोहब्बत की चाल चलना, हर जीत से पहले अपनों का ख्याल रखना, जिंदगी खूबसूरत खेल है दोस्तों, बस दिल से हर पल को जीना और मुस्कुराना। तो आज हमने खूब सारी बातें करी इंडोर गेम्स पे, और कहते हैं ना फेवरेट अपने उस गेम की कुछ यादें अपने साथ हमने शेयर करी। हमारे पास मैसेजेस भी आए और खूब कहते हैं ना, एक मैसेज हमारे पास अभी भी आया है जेठालाल जी का, रणवीर सिंह जेठालाल जी कहते हैं, मुझे अपने दिल पे नाज है, पता है क्यों, बहुत लोगों ने इसे तोड़ा है, दुखाया है, फिर भी मस्त चल रहा है, ओरिजिनल है, चाइना का थोड़ी है। तो हाँ जी साहब, रणवीर जी हमें पता है आप ओरिजिनल हो और हमेशा जब भी हमसे बात करते हो बिल्कुल ओरिजिनल ही बात करते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कल ठीक 9 बजे दिल से दिल तक अखिल संग। मैं हूँ आपका अखिल, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे यही कहूँगा, अपनों का और अपना ज़रूर ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे, खूब मस्ती के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स।

0: छम शराबर से
1: सांवरी घटा से शराबर से
0: बूंदों की बजी पायल घटा।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077